0: नदी के जल में प्राणवायु ऑक्सीजन की मात्रा को बनाए रखने की असाधारण क्षमता है, किंतु इसका कारण अभी तक अज्ञात है।
1: इसका कारण अभी तक अज्ञात है, मतलब क्या है राजेंद्र जी?
0: अज्ञात है मतलब अभी तक लोग जान नहीं पाए हैं। अज्ञात मतलब न जानना,
1: न जाने,
0: अभी जान न पाएला।
1: ओके।
0: हाँ, एक राष्ट्रीय सार्वजनिक रेडियो कार्यक्रम के अनुसार इस कारण हैजा और पेचिस जैसी बीमारियां होने का खतरा बहुत ही कम हो जाता है। एक रेडियो का कार्यक्रम में इस जानकारी दी गई है।
1: हाँ,
0: राष्ट्रीय रेडियो के कार्यक्रम के अनुसार
1: कि भारत के रेडियो,
0: हाँ भारत के रेडियो में,
1: हाँ,
0: खतरा बहुत कम ही हो जाता है, जिससे महामारियां होने की संभावनाएं बड़े स्तर पर टल जाती है। लेकिन गंगा के तट पर घने बसे औद्योगिक नगरों के नालों की गंदगी सीधा गंगा नदी में मिलने से प्रदूषण पिछले सालों में भारत सरकार और जनता की चिंता का विषय बना हुआ है। औद्योगिक कचरे के साथ साथ प्लास्टिक कचरे की बहुतायत ने गंगा जल को बेहद प्रदूषित किया है, बहुत प्रदूषित कर दिया है। ले वैज्ञानिक जांच के अनुसार गंगा का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन स्तर 3 डिग्री सामान्य से बढ़कर 6 डिग्री हो चुका है। गंगा में 2 करोड़ 10 लाख लीटर प्रदूषित कचरा प्रतिदिन गिर रहा है। विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की 12% बीमारियों की वजह प्रदूषण की है। लेकिन अभी इसमें सुधार हुआ है कि इस नदी की सफाई के लिए कई बार पहल की गई, लेकिन कोई भी संतोषजनक स्थिति तक नहीं पहुंच पाया। प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने गंगा नदी में प्रदूषण को नियंत्रण करने और इसकी सफाई का अभियान चलाया। इसके बाद उन्होंने 2014 में भारत के आम बजट में नमामि गंगा नामक एक परियोजना आरंभ की। इसी परियोजना के हिस्से के रूप में भारत सरकार ने गंगा के किनारे स्थित 48 औद्योगिक इकाइयों को बंद करने का आदेश दिया। भारत में 2020 के 22-25 मार्च से 3 मई तक कारण गंगा नदी के किनारे सभी फैक्ट्रियां बंद हैं, जिसके कर उन पर गंदा पानी गंगा में नहीं जा रहा है और गंगा का जल बहुत अधिक साफ हुआ है। पिछले 10 वर्षों में पहली बार हर की पौड़ी में गंगा का पानी पीने लायक बताया गया है।
1: दोस्तों, हम सब और एक सुंदर से गीत की ओर बढ़ रहे हैं और सभी सुनने वालों को बस ये कहना चाहूँगा कि काफ़ी जानकारी जो हमारे साथ यहाँ पर विशेषज्ञ लोग खोज करके रखे हुए हैं, जो भी देश में ये कार्यक्रम को सुन रहे हो, आप सड़क पे हो, सफ़र कर रहे हो, तो आपको भी हार्दिक से स्वागत किया जाता है। और फिर भी मत भूलना, क्योंकि हम सब एक गीत की ओर बढ़ रहे हैं और अभी माँ गंगा का जानकारी आप जरूर सुनते रहना।

0: दे। गंगा तेरा पानी अमृत, बहुत ही अच्छा भजन जो आपने भी सुना। अब हम चाहेंगे कि शांता जी कुछ डच में इस बारे में बात करें।
1: शांता जी जो तैयार हो गए हैं कि नीदरलैंड्स में कुछ कहने के लिए। तो दोस्तों, आप सभी इस समय जो ये ज्योति का प्रकाश कार्यक्रम चल रहा है, इसमें बस लक्ष्य यही है कि हमारे जीवन का ज्योति जो जल रहा है उसमें थोड़ा से और प्रकाश आए। इसी प्रकार से हम सब अलग अलग जगहों से और अलग अलग स्थानों से भी कुछ संदेश आपके लिए रखने की कोशिश करते हैं। और यहाँ शांता जी,
2: हाँ प्यारे सुनने वालों, तो आपने जैसे सुना कि यहाँ के प्रसंग जो चल रहा है गंगा के बारे में, तो गंगा के बारे में हम थोड़ा से आप सब तक पहुँचाएँगे डच भाषा में, यानी कि नीदरलैंड्स भाषा में। गंगा इस इन द हिंदुइज्म मेथियोलॉजी द रिवर गॉडिन फन द गंगास में द फंक्शन फन एन मदर गॉडिन। इन हेट हिंदुइज्म वर्ड द गंगा रिवर ऑफ गंगास आज सक्राल गसीन सै वर्ड फॉर एयर en gepersonificeerd als de godin Ganga, die een belangrijke plaats inneemt in het hindoe-geloof. Hindoes geloven dat baden in deze rivier bij bepaalde gelegenheid de zonden wegwast en bevrijding vergemakkelijkt. De Ganga is 2510 kilometer lange rivier die door India en Bangladesh stroomt. Hij begint op de Gangotri Gletscher in de Indiase stad Uttarakhand, nabij de grens met de Chinese autonomie regio Tibet en mondt uit in de golf van Bengalen. Voor de Hindoe is de Ganga's een heilige rivier. Hindoes vereren de riviergodin Ganga, waarom de 12 jaar een festival van 55 dagen wordt gevierd. Ook buiten dit festival ook trekken jaarlijks miljoenen Hindoes naar steden aan de Ganga's om hun ziel te reinigen door zich te wassen in de rivier. Als Hindoes sterven worden zij gecremeerd. Hun as wordt daarna als het kan in de Ganga's gestrooid. तो यहाँ तक हम थोड़ा से आपको बताएं हमारे गंगा माता के बारे में।
0: बहुत बहुत अच्छा जानकारी आपने दिया शांता जी, डच में भी। हम आगे बढ़ते हैं। संजय जी, आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं?
1: जरूर राजेंद्र जी, क्वेश्चन तो ये है कि ये बताइए कि गंगा का धर्म के ओर से उसका महिमा क्या है?
0: आप धार्मिक महत्व पूछना चाह रहे हैं?
1: धार्मिक महत्व,
0: ठीक है। भारत की अनेक धार्मिक अवधारणाओं में गंगा नदी को देवी के रूप में निरूपित किया गया है। बहुत से पवित्र तीर्थ स्थल गंगा नदी के किनारे पर बसे हुए हैं, जिनमें वाराणसी, हरिद्वार और प्रयागराज, उत्तरकाशी प्रमुख हैं। गंगा नदी को भारत की नदियों में सबसे पवित्र माना जाता है, एवं यह मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से मनुष्य के सारे पापों का नाश हो जाता है। मरने के बाद लोग गंगा में राख विसर्जित करना मोक्ष की प्राप्ति के लिए आवश्यक समझते हैं।
1: तो राजेंद्र जी, मोक्ष क्या होता है?
0: मोक्ष यानी इनलाइटमेंट। इनलाइटन जब होता कोई व्यक्ति, मतलब उसी को मोक्ष कहते हैं। इनलाइटन तो आप समझते हैं
1: ना? नहीं समझता।
0: इनलाइटन का मतलब होता है,
1: में बोलना।
0: हाँ, इनलाइटन का मतलब होता है कि जो हमारी लाइफ है इसके बाद हम किसी भी जीव के रूप में इस पृथ्वी पे ना आए, बल्कि हम चले जाएं विष्णु लोक
1: या विष्णु लोक भगवान के लोक,
0: भगवान के लोक। तो इसके बाद उसी को इनलाइटन बोलते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति पृथ्वी पे आता है, इस धरती पे आता है, तो वो अनेक प्रकार के कष्ट भोगता है, दुख सुख ये सब प्रकार का रहता है।
1: अरे आज तो जो संदेश हम सबको आप सुनाए, तो उसे सुन करके थोड़ा से, या ये नहीं कहना चाहूँगा कि डर गया, पर
2: डरना नहीं चाहिए, पर के चेतना जगाना चाहिए, करके आपसे सावधान हो जाए कि आपसे
1: इन चीजों से हमें और ध्यान देना है।
2: बिल्कुल
0: हाँ।
1: तो राजेंद्र जी, अगर आप वैसे तो आप जैसे कह रहे हैं, पर ये तो हमने सुना है कि शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से और बुद्धि ज्ञान से, और आत्मा धर्म से।
0: जी, यहाँ तक कि कुछ लोग गंगा के किनारे ही प्राण विसर्जन करने विसर्जन या अंतिम संस्कार की इच्छा भी रखते हैं। इसके घाटों पर लोग पूजा अर्चना करते हैं और ध्यान लगाते हैं। गंगा जल को पवित्र समझा जाता है तथा समस्त संस्कारों में उसका होना आवश्यक है। पंचामृत में भी गंगा जल को एक अमृत माना गया है। अनेक पर्वों और उत्सवों को गंगा में सीधा संबंध है। उदाहरण के लिए मकर संक्रांति, कुंभ और गंगा दशहरा के समय गंगा में नहाना या केवल दर्शन ही कर लेना बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है। इसके तटों पर अनेक प्रसिद्ध मेलों का आयोजित किया जाता है और अनेक प्रसिद्ध मंदिर गंगा के तट पर ही बने हुए हैं। महाभारत के अनुसार मात्र प्रयाग में माघ मास में गंगा यमुना के संगम पर 3,10,000 तीर्थयात्रियों का संगम होता है। ये तीर्थ स्थल संपूर्ण भारत में सांस्कृतिक एकता स्थापित करते हैं। गंगा को लक्ष्य करके अनेक भक्ति ग्रंथ लिए गए हैं।
1: तो राजेंद्र जी, ये बताइए कि लोग को हौसला होता है वहाँ जाने के क्योंकि इतना ज़्यादा तादाद में क्यों माघ मास में?
0: हाँ, लोगों का इच्छा होती है जाने की और गंगा माँ भी स्वयं उनको बुलाती हैं।
1: ओ, जैसे कि पिछले बार के कार्यक्रम में शांता जी ने ये कहे थे कि आपका पहुँच जब होगा, जब आपको निमंत्रण मिलेगा तभी आप पहुँचेंगे।
0: जी,
1: तो अपना हौसला बढ़ता है और वहाँ जा कर के और लोग दर्शन करते हैं।
0: हाँ, तो इतने प्रकार के ग्रंथ लिखे गए हैं जिनमें श्री गंगा सहस्त्र नाम स्त्रोत्रम और आरती सबके सबसे लोकप्रिय है। अनेक लोग अपने दैनिक जीवन में श्रद्धा के साथ इनका प्रयोग करते हैं। गंगोत्री तथा अन्य स्थानों पर गंगा के मंदिर और मूर्तियाँ भी स्थापित हैं, जिनके दर्शन कर श्रद्धालु स्वयं को कृतार्थ समझते हैं। उत्तराखंड के पंच प्रयाग तथा प्रयागराज जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, गंगा की वे प्रसिद्ध संगम स्थल हैं जहाँ वहाँ अन्य नदियों से मिलती है।
1: पर राजेंद्र जी, आप इतना जल्दी जल्दी चला रहे हो और जरूर हमें अपना घड़ी का रफ्तार देखना, पर कृतार्थ इस पे थोड़ा से दृष्टांत डाल दीजिए ना।
0: किस चीज़ पे?
1: कृतार्थ, क्योंकि वहाँ पर मूर्ति आदि है, तो अभी आपने ये शब्द प्रयोग किए।
0: हाँ,
1: कृतार्थ।
0: हाँ, अभी मैंने बोला कि दर्शन करने श्रद्धालु स्वयं को कृतार्थ समझते हैं,
1: तो उसका मतलब कि श्रद्धालु यानी कि भक्त लोग जो जाते हैं
0: वो अपने आप को धन्य समझते हैं।
1: धन्य, तो कृतार्थ। तो दोस्तों, ये कुछ अच्छे सुंदर सुंदर शब्दों, इसे हम सब भी और प्रयोग कर सके, क्योंकि हम ये सुंदर शब्दों से भी ये कार्यक्रम इकट्ठा बनाया जाता है, और आशा ये रखते हुए कि इसमें से कुछ कुछ शब्दों हम सब के लिए भी अपने जीवन में प्रयोग कर सके ना।
0: जी, गंगा के वे प्रसिद्ध संगम स्थल है जहाँ वह अन्य नदियों से भी मिलती हैं। ये सभी संगम धार्मिक दृष्टि से पूज्य माने गए हैं।
1: धार्मिक दृष्टि से पूज्य यानी कि जहाँ पर संगम हुआ।
0: हाँ,
1: तो ये भारत के कहाँ पर है राजेंद्र जी?
0: पंच प्रयाग हैं, जहाँ पे पांच प्रयाग की अभी गीता जी बात कर रही थी, और इसके बाद फिर वहाँ पे इलाहाबाद में संगम बना है, वहाँ की बात हो रही है।
1: इलाहाबाद तो गुजरात में, तो वहाँ शांता जी गए थे ना?
0: नहीं, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में।
1: ओ, उत्तर प्रदेश में।
0: हाँ,
1: ओ, अहमदाबाद है गुजरात में।
0: हाँ,
1: और पर वहाँ भी कुछ संबंध है ना?
0: हाँ।
1: ओके ओके। और शांता जी, ये बताइए कि आप वो संगम के पास गए कि नहीं, क्योंकि आप तो काफी, और
2: त्रिवेणी गंगा जमुना सरस्वती के संगम जहाँ हो रहा है,
1: वो वाला कहाँ पे है राजेंद्र जी?
0: वही तो इलाहाबाद में है,
2: प्रयागराज
0: जिसका प्रयाग। नाम हो गया है,
1: उसका नाम है प्रयागराज
0: जी।
1: और आप गए वहाँ, तो आपका कैसा महसूस हुआ शांता जी?
2: वहाँ पे दर्शन होता है, तीन नदियों का जो एक में मिलन होता है। ये सरस्वती नदी जो है उसका रंग दूसरा है ना राजेंद्र जी?
0: अभी पंडित जी ने बताया ना आपको कि वो एकदम बुद्धि की देवी है, और उन्होंने कितना अच्छा से आप नीचे से ऐसे वो बीच में दिखती है, किसी किसी को दिखती है
2: जी,
0: क्योंकि वो विद्या की देवी है, और वो विद्या एकदम अंदर ही रहती, दिखाई नहीं देती, लेकिन उसका ज्ञान है, ज्ञान की देवी है।
2: हाँ, तो तीन नदियाँ ऐसे स्पर्श दिखते देखने को मिलती है
0: जी।
1: तो राजेंद्र जी, क्या आप कोई गीत रखने वाले हैं? हाँ, या मैं कुछ और कह
0: गंगा
1: सकता
0: मैया में जब तक पानी रही, ये वाला गीत अभी रखते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे।

0: मैया ओ गंगा मैया, बहुत ही अच्छा आपने लोगों ने अभी जो सुना है गाना, बहुत ही अच्छा था गंगा का। संजय जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
1: जरूर कहना चाहूँगा राजेंद्र जी, क्योंकि परमात्मा कभी भाग्य नहीं लिखता है। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार एवं हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखता है। तो राजेंद्र जी ये हमें बताइए कि कार्यक्रम जो चल रहा है माँ गंगा के, तो पौराणिक प्रसंग इसमें क्या है?
0: हाँ, इसमें जो पौराणिक प्रसंग हैं वो ये हैं, गंगा नदी के साथ अनेक पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। मिथकों के अनुसार ब्रह्मा ने विष्णु के पैर के पसीने की बूंदी से गंगा का निर्माण किया तथा पृथ्वी पर आते समय शिवजी ने गंगा को अपने सिर जटाओं में रखा। त्रिमूर्ति के तीनों सदस्यों के स्पर्श के कारण यह पवित्र समझा गया। एक अन्य कथा के अनुसार राजा सगर ने जादुई रूप से 60,000 पुत्रों की प्राप्ति की। एक दिन राजा सगर ने देवलोक पर विजय प्राप्त करने के लिए एक अश्वमेघ नामक यज्ञ किया। यज्ञ के लिए घोड़ा आवश्यक था जो ईर्ष्यालु इंद्र ने चुरा लिया था। सगर ने अपने सारे पुत्रों को घोड़े की खोज में भेज दिया। अंत में उन्हें घोड़ा पाताल लोक में मिला जो एक ऋषि कपिल मुनि के समीप बना था। सगर के पुत्रों ने यह सोचकर कि ऋषि के ही घोड़े के गायब होने की वजह है, उन्होंने सोचा कि ऋषि ही इसकी वजह है कि घोड़ा गायब हो गया, उन्होंने ऋषि का अपमान किया। तपस्या में लीन ऋषि ने हजारों वर्ष बाद अपनी आंखें खोली और उनके क्रोध से सगर के सभी 60,000 पुत्र जलकर वहीं भस्म हो गए। सगर के पुत्रों की आत्माएँ भूत बनकर विचरने लगी क्योंकि उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया था। सगर के पुत्र अंशुमान ने आत्माओं की मुक्ति का असफल प्रयास किया और बाद में अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी, भगीरथ राजा दिलीप की दूसरी पत्नी के पुत्र थे, उन्होंने अपने पूर्वजों का अंतिम संस्कार किया। उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर लाने का प्रण किया जिससे उनके अंतिम संस्कार कर राख को गंगा जल में प्रवाहित किया जा सके और भटकती आत्माएं स्वर्ग में जा सके। भगीरथ ने ब्रह्मा की घोर तपस्या की ताकि गंगा को पृथ्वी पर लाया जा सके। ब्रह्मा प्रसन्न हुए और गंगा को पृथ्वी पर भेजने के लिए तैयार हुए और गंगा को पृथ्वी पर उसके बाद पाताल में जाने का आदेश दिया ताकि सगर के पुत्रों की आत्माओं की मुक्ति संभव हो सके। तब गंगा ने कहा कि मैं इतनी ऊँचाई से जब पृथ्वी पर अवतरित होंगी तो पृथ्वी इसका वेग कैसे सह पाएगी। तत्पश्चात भगीरथ ने भगवान शिव से निवेदन किया और उन्होंने अपनी खुली जटाओं में गंगा के वेग को रोककर एक लट खोल दी। लट मतलब एक बाल
1: खोल दिया।
0: एक बाल नहीं, मतलब लट मतलब जो बालों का एक गुच्छा, ऐसे जो लटक देते थे उसने ऐसे खोल दिया।
1: आपने यहाँ दिखा दिया स्टूडियो में कि ऐसा खोल दिया, पर हमारे सुनने वालों तो कुछ देखा नहीं।
0: हाँ, तो समझ लेंगे कि जैसे आपने तीन लट बनी होती है लेडीज की बालों की, तो इतने बाल इकट्ठे होकर एक लट बोली जाती है, तो वो भगवान शंकर के इस प्रकार से जटा में बंधी होती है
1: जी।
0: तो जब गंगा उसमें घूमने लगी तो उन्होंने थोड़ा सा इसको बाल की एक लट खोली तो वहां से गंगा नीचे आ गई, जिससे गंगा की अविरल धारा पृथ्वी पर प्रवाहित हुई। वह धारा भगीरथ के पीछे पीछे गंगा सागर संगम तक गई जहाँ सगर पुत्रों का उद्धार हुआ। शिव के स्पर्श से गंगा और भी पावन हो गई और पृथ्वी वासियों के लिए श्रद्धा का केंद्र बन गई। पुराणों के अनुसार स्वर्ग में गंगा को मंदाकिनी और पाताल में भगीरथी कहते हैं। इसी प्रकार एक पौराणिक कथा राजा शांतनु और गंगा के विवाह तथा उनके 7 पुत्रों के जन्म की भी है।
1: तो राजेंद्र जी, जब से मैं कार्यक्रम गंगा को और इसमें सम्मिलित हूँ और सुन रहे हूँ और अपना अपना संदेश हम सब जरूर दे रहे हूँ, पर मन में सिर्फ यही उठता है, बस यही गीत का मन करता है सुनने को कि तेरे मन का गंगा मेरे मन का जमुना। शांता, इस पे क्या कहेंगे आप? तेरे मन की गंगा और मेरे मन की जमुना। मैं और कुछ कहना चाहता था पर कहूंगा नहीं क्योंकि आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं। तो राजेंद्र जी क्यों ना ये गीत को चला देते हैं।
0: हाँ जरूर।

0: बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं? होगा जरूर संजय जी, संगम होगा, होगा होगा, आपका संगम जरूर होगा।
1: होगा होगा होगा,
2: तो हो गया संगम। सुनने वालों, संगम हो गया राधा और किसका हुआ?
1: किशन का,
0: कृष्ण का, भगवान कृष्ण एंड राधा का,
2: राधा और कृष्ण का संगम हो गया। दोस्तों, ये आज के कार्यक्रम जो हम सब उसमें संदेश ये लेकर आए थे कि गंगा का दर्शन और कैसे किया जा सकता, गंगा माता के बारे में काफी और संदेश सुनाया गया, और कैसे राजेंद्र जी संदेश को रखे और हमारे साथ जुड़े ब्रॉडकास्ट में, और गीता नेगी जी जो भारत देश से। तो हम कार्यक्रम के धीरे धीरे समाप्ति की ओर चल रहे हैं। राजेंद्र जी, कौन सा गीत अब रखने वाले हैं आप?
0: हर सप्ताह की तरह जो हमारा गीत होता है वो यही होता है कि लागी छूटे ना सनम अब तो। तो इस गीत से ये पता चल जाता है कि हम लोगों का जो समय है वो अपने चरण सीमा तक पहुंच चुका है, और अब हम उसी को सुनाएंगे और सब लोग सुनेंगे।

फाहून हिंदुस्तानी रेडियो को सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा यानी राजेंद्र सिंह का हार्दिक नमस्कार। आज का जो हमारा विषय था, मुझे लगता है कि सब लोगों को अच्छा लगा होगा और इसके लोग गंगा का दर्शन करने भी जाएंगे। भारत में बहुत सारे लोग तो गए हैं, जो नहीं जा पाए वो भी जाने की कोशिश करेंगे। और बहुत बहुत प्यार और नमस्कार सबको मेरी तरफ से, हार्दिक अभिनंदन। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते किसी नया विषय को लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।

जिन्हें आप खुश देखना चाहते हो, जिन्हें आप खुश देखना चाहते हो तो उन्हें यहीं पर सुख देना। इसी वाणी के साथ आपसे इजाज़त लेती हूँ। धन्यवाद सुनने के लिए और स्वीकार कीजिए मेरी यानी कि शांता की प्यार भरी राम राम प्रणाम।

जिंदगी छोटी नहीं होते है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है, बस यही जिंदगी है। फाहुन रेडियो के सभी सुनने वालों को हार्दिक से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो कि आज का कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश सुने। आज के कार्यक्रम में सहयोग देने वाले गीता नेगी जी जो भारत से हम सब के साथ दिए, शांता जी और हमारे पैनल के पीछे जो हर सप्ताह की तरह राजेंद्र सिंह जी, और मैं हूँ आपका सेवक संजय। आशा यही है कि अगले सप्ताह के कार्यक्रम आप इंतजार करते रहना, हम सब फिर मिलेंगे। नमस्कार।

मित्रों, आज जो बतलाने जा रहा हूँ उसे आज भी सुनना और जीवन में जरूर उतारिए। इसलिए तो हम बार बार ये बतलाते हैं ना, हम भी सुनते हैं, हम भी अपने जीवन में उतारते हैं मित्रों। तो ज्ञानी व्यक्ति, ध्यान करना, ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि वो जानते हैं जो मर गया वो फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है वो एक दिन जरूर मरेगा। आप भी मरेंगे, हम भी मरेंगे, सभी मरेंगे। आप तो रोज देखते हैं मित्रों, तो शोक किस बात की। अच्छा ही इंसान के नाते रोना पीटना हो जाता है। केवल ज्ञानी ही मित्रों, केवल ज्ञानी ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ता है मित्रों। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव है, ठीक उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। युद्ध हो या जीवन सफलता, केवल तीन शास्त्रों से प्राप्त होती है मित्रों, धर्म, धैर्य और साहस। धर्म, धैर्य और साहस मित्रों, यही तीन चीजों से प्राप्त होता है।

मित्रों, कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि ध्यान करना मित्रों, हम क्या बोलते हैं अपने देश में, कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। किससे? अपने कर्मों से महान बनता है, जैसे आप, और ना जैसे बगल वाले घूसखोरी देकर डिग्री ले लेते हैं वगैरह, बोले हम महान हो गए। खबरदार, पास हो गए मित्रों। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, अपने आप पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो, साथ छोड़ ही जाते हैं, साथ छोड़ ही जाते हैं। शायद इसका अनुभव है आपको, हैं, जिस पे आप बहुत भरोसा करते थे। अमन दिमानी फ्यूर खदरादी प्रसोद है मित्रों। तो धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, हिसाब तुम्हारे कर्म का होगा, जरूर होगा। और धर्म का नहीं मित्र, गरीब है या अमीर, ये मायने नहीं रखता है, मतलब नहीं रखता है, बल्कि वह आपकी बुरे समय में आपका साथ कितना देता है, दिशन अतोरी साथ कितना देता है और कहाँ तक मित्रों, ये मायने रखता है और ना कुछ और है। दोस्तों, इन सब बातों पे ध्यान रखते हुए आगे सुनिए भजन को।

मित्रों, जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरा में चमकती है, ठीक उसी प्रकार मित्रों, उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है। को आप भी कोसते हो ना? नहीं तो ठीक है। तो मनुष्य अपने भाग्य को कोसता है हमेशा ही, तो ये जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। आपका कर्म आपके हाथ में है मित्रों, और ना किसी और के हाथ में है।

मित्रों, जीवन बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत बनाने के लिए हम खुद हैं, खुद ही हम जीवन को खूबसूरत बनाते हैं और बिगाड़ भी देते हैं। और जब बिगड़ जाता है तो हम उंगलियां दिखाते हैं किसी और के, वो करे कारण भैल है, वो कराई से, वो एक न कराई से, तू अपने कर लो। मित्रों, खबरदार, उंगली मत दिखाया करो। सत्य से कमाया धन, मित्रों, सत्य से कमाया धन हर प्रकार से सुख देता है, और छल कपट से कमाया धन दुख ही दुख देता है। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरा नहीं होते तो रास्ता बदलिए, अपने रास्ता को बदलिए, अपने तरीका को बदलिए, सिद्धांत नहीं। क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं, पेड़ भी बदलते रहते हैं अपने पत्तों को। जरिया थोड़ो बदले है, तो तू कहे कि अपना जरिया, अपने तरीका को बदल दो जीने के, उस साइड ठीक नहीं होगा ना, तो उसे बदलो, बदलो मित्रों।

दोस्तों, किसी के संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे, ध्यान करना, किसी के संगत से आपका विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना मित्रों कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बनाता है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनके विशेषताओं से सीखता है। मगर आप तो नहीं, आप सीखते नहीं, आप तो जलन करते हो। ऐसे बात नहीं है तो बहुत अच्छी है, तो देखकर उनको विशेषताओं को सीखो, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करो, जलन मत करो, क्योंकि जलन में क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मित्रों, कुछ नहीं मिलेगा।

यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता मित्रों, तो उसे याद कर आज का दिन व्यर्थ ना करें। और जो लक्ष्य में खो गया, समझो वो सफल हो गया। और जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हैं, तो आप जरूर सफल होंगे। जरूर सफल होंगे आप मित्रों, इसमें कोई संदेह नहीं है।

शुक्रतुंडा महाकाया सूर्यकोटी संप्रभा निर्विधिनम कुरुमे देवा सर्वकार्यशु सर्वदा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पार ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।

नमः माता पिता चरणम नमः विद्या प्रदायकम दीक्षम मंत्रम गुरु वंदे वंदे गुरु पद

सभी सुनने वालों को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए आज सुबह के कार्यक्रम में मैं आपके साथ जुड़ गए हैं। सभी जो बीमार है, लाचार है, भगवान से यही विनती प्रार्थना किया जाता है कि आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आए। सभी जिनका आज सालगिरह है उन्हें बहुत बहुत सा बधाई दिया जाता है और आपके एक शुभ दिवस प्रस्तुत है। जिसका घर पे आज कार्य है, भगवान से यही विनती प्रार्थना किया जाता है कि आपके कार्य शुभ शुभ और मंगलमय हो। जो अपने काम के तैयारी में है, अभी निकलने वाले हैं, तो ये मत भूलना गांधी जी का संदेश कि मेरा जो देश हमारे लिए क्या कर सकता है, इस पे चिंता मत करना। चिंता ये करना कि मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ। जो अभी स्कूल के लिए यानी कि अपने पढ़ाई की ओर बढ़ेंगे, तो उनको ये कहूँगा कि सरस्वती माता को भूलना मत। क्योंकि या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपे न संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। माँ सरस्वती जो बुद्धि और ज्ञान का देने वाले हैं, जो हमारे देश में सफर से आए हैं, तो यही कहूंगा कि आपको हार्दिक से स्वागत है हमारे सुंदर सा देश में। और जो सफर पे जाने वाले हैं, यानी कि कहीं और जाने वाले हैं, तो उनको फैन फकांसी तू अंश किया जाता है। जिनके परिवार में एक नया शिशु ने जन्म लिया है, यानी कि एक नया परिवार आया है, उनको बहुत बहुत सा बधाई देना चाहता हूं।

का सेवक संजय और आपके साथ जुड़ गए हैं। और खास करके पहला भाग में शंकर महादेवा जी की आवाज में आप सुनेंगे सुंदर सुंदर भजनों। एक दंताए वक्र तुंडाए, ये गीत से हम शुरू करते हैं।

शंकर महादेवा जी के आवाज़ में हम सब ये सुंदर सा गीत सुना। सुनने वाला एक ऐसा कलाकार जो 7000 से ज़्यादा गीतों को गा चुके हैं, अलग अलग भाषाएं में, तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी। इसी प्रकार से एक व्यक्ति जो अपने जीवन में शायद इंजीनियरिंग के लिए पढ़ा था पर जाकर के कलाकार बने और इतना सुंदर सुंदर गीतों को गाए। कहते हैं

कहते हैं कि संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बातें कभी ना कभी काम आई जाते हैं। आज अपना एक दिन बनाइए जहां आप शायद संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बातें जो कभी ना कभी आप सुने होंगे शायद आज काम में आई जाए।

सुनो लो, हम शंकर महादेवा जी का जो शिव तांडव स्तोत्रम है उनके आवाज में सुनेंगे।

शिव तांडव स्तोत्रम जो रावण रची, शिव तांडव स्तोत्रम जो जाकर के शंकर महादेवा जी की आवाज में हम सब सुने सुने वाले। कहते हैं कि अजीब से रिश्ता है मेरा ऊपर वाले से, कहते हैं कि अजीब रिश्ता है मेरा ऊपर वाले के साथ, जब भी मुसीबत आती है ना जाने किस रूप में आता है, हाथ पकड़कर पार लगा देता है। मैं उसके सामने सिर झुकाता हूँ, वो सबके सामने मेरा सिर उठा देता है।

सुनने वालों आपको एक शुभ दिन प्रस्तुत है। और कहते हैं कि मेरे साथ वो खड़ा है, मेरा साथ वो खड़ा है जो जगत में सबसे बड़ा है।

कहते हैं जीवन बहुत छोटा है, जीवन बहुत छोटा है, इसे गुस्सा, पछतावा, शिकायत और चिंता करने में बर्बाद ना करे। हमेशा प्रसन्न और सकारात्मा रहे। जरूरी इन बातों पे ध्यान देना सुनने वालों कि जीवन बहुत छोटा है, गुस्सा, पछतावा और शिकायत कहते हैं कि चिंता करने में बर्बाद ना करे। हमेशा प्रसन्न और सकारात्मक रहे। सुनने वालों हम अगला भजन की ओर बढ़ेंगे और शंकर महादेवा जी कृष्ण महामंत्र के और संदेश हम सबको सुनाने वाले हैं।

रहे हे सरकार तेरे मेहरबानियां में, जी रहे सरकार तेरे मेहरबानियां में, पल रहे परिवार कान्हा तेरे पहरेदारी में।

कहते हैं कि यूं ही बनाए रखना कृपा मेरे जिंदगी में, यूं ही बनाए रखना कृपा मेरे जिंदगी में, यूं ही बनाए रखना कृपा मेरे जिंदगी में, लिख लेना मेरा नाम तेरी खातिरदारी में।

किसी ने अच्छा कहा है। दिए हुए जुबान और काम आया इंसान, ये दो चीज कभी नहीं भूलना चाहिए। जिसे जुबान दिए हुए हो तो ये बात को ध्यान देना चाहिए, और जो तुम्हारे काम आए हैं ऐसा इंसान को कभी भूलना नहीं चाहिए। ये दो चीज है कभी नहीं भूलना चाहिए।

जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय श्री राम, जय हनुमान। शंकर महादेवा जी के आवाज में हम सब हनुमान चालीसा का सुने सुने वालों, आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करते हुए

और ये जरूर कहना चाहूँगा कि जिंदगी की राह चुनते समय अपने माता पिता के राय अवश्य ले, क्योंकि क्योंकि कहते हैं कि जितनी आपकी उम्र नहीं होती है जितनी आपकी उम्र नहीं होती है उतना उनका अनुभव होता है।

संदेश जरूर आपके लिए रखना चाहूँगा कि उम्मीद हमारी वो शक्ति है जो हमें उस समय भी प्रसन्न बनाए रखती है जब हमें मालूम होता है कि हालात बहुत खराब है।

सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करते हुए माता पिता के साथ बिताए हुए पल, माता पिता के साथ बिताए हुए पल संभाल कर रखना, क्योंकि ये पल आपको याद तो आएंगे पर वापस नहीं आएंगे। तो जरूर इस बात पे ध्यान देते हुए आज समय निकालिए अपने माता या पिता के अंतर्गत। एक संत ने अच्छा ही कहा है कि चाहे आप सुबह पूजा मत करो पर अपने माता पिता के साथ बिताए हुए पल वो पूजा के समान हो जाता है।

सेवक संजय। और आपके साथ जुड़े हुए हैं जो इस समय ये कार्यक्रम को सुनते हैं, हार्दिक से स्वागत किया जाता है। जो इंटरनेट द्वारा अपने घर पे सुनते हैं, बहुत बहुत सा और अभिनंदन। जो अपने मोबाइल से सुनते हैं, उन्हें भी इंटरनेट द्वारा हार्दिक से अभिनंदन। और जो इस समय अपने गाड़ी से सफर कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत सा और शुभ दिवस।

कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगे। और कहते हैं अपने माता पिता जो माता पिता के चरणों में स्वर्ग कहलाते हैं,

माता पिता को सुन लेने से कितने सारे सवाल सुलझ जाते हैं और किसी ने अच्छे कहा है कि माता पिता के बात सुन लेने से कितने सारे सवाल सुलझ जाती है और सुना देने से हम फिर से वही उलझ जाते हैं।

माता पिता के लिए उनके बच्चे भी सब दिन कितना प्यारे होते हैं, ये तो हम मेरा राजा मेरा लाल ये सुंदर सा गीत से पता चलेगा।

किसी के दिल में जगह बना लेना जीवन की सबसे बड़ी कामयाबी है, क्योंकि यही एक जगह है जहां पैसों से घर नहीं बनते।

सुनो आज के लिए हम अपने माता पिता पे और जरूर ध्यान देते हुए माँ तो कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है।

तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, भोली भाली है माँ। ये सुंदर सा गीत हम सुने और सुनने वालों आज ये कहते हैं कि मुझे पता नहीं है कि पाप और पुण्य क्या है, मुझे पता नहीं है कि पाप और पुण्य क्या है। बस इतना पता है कि जिस कार्य से किसी का दिल दुखे वो पाप है, और जिस कार्य से किसी के चेहरे पर हंसी हुए वह पुण्य है।

घर से जब शिशु जन्म लेता है तो माता पिता कितना खुश होता है, उस अंतर्गत में हम एक सुंदर सा गीत सुनेंगे।

सूरज कहो या चंदा, ये सुंदर सा गीत एक फूल दो माली से निकाला गया फिल्म जो मन्ना दे के आवाज में और हम सब सुने। तो आपको इस बात को भी पता चल गया होगा कि जब हमारा जन्म होते हैं तो माता पिता कितना खुश होते हैं, समस्त परिवार कितना खुश होते हैं, और प्रकृति क्या करते हैं। जैसे पंछियों अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाकर नहीं देते हैं, वे तो बस उड़ने की कला सिखाते हैं, इसी तरह से हमारे माता पिता हमें चलना सिखाते हैं, दौड़ना सिखाते हैं, पढ़ना सिखाते हैं, और समय आने पे हम अपना अपना घर बसा लेते हैं ना। तो हम शायद इस बात पे कभी ध्यान नहीं दिए होंगे कि हमारे भाग्य, हमारे स्वभाव और हमारे रूप, ये तीन चीजें है जो हम सबकी अलग अलग होती है, कि हमारे भाग्य, हमारे स्वभाव, हमारे रूप, यही वो तीन चीजें है जो हम सबकी अलग अलग होती है।

औलाद वालो फूलो फलो, कहते हैं कि ना सुख खरीदने पता हूँ, ना दुख बेचने पता हूँ, फिर भी ना जाने क्यों हर रोज कमाने निकल जाता हूँ।

इन गीतों को सुन करके आज समय जरूर निकालना, अपने माता पिता के लिए, कि वो नहीं होते तो हम कैसे होते।

ये सुंदर सा गीत जो हम सुने कि पप्पा जल्दी आ जाना, और ज्यादा ख्वाहिशें नहीं बस जिंदगी का अगला लम्हा पिछले से बेहतर हो काफी है।

बेटे सुन मेरा कहना, चाहे दुख होए हंसते ही रहना। यही संदेश होते हैं हमारे माता पिता के।

जन्म के रिश्ते ईश्वर का प्रसाद जैसा है, लेकिन खुद के बनाए रिश्ते आपकी पूंजी है। इन्हें बहुत स्नेह कर रखिए। यहाँ तक जो मैं आपके साथ जुड़े रहे, आशा रखता हूँ कि कुछ न कुछ आपको जरूर अच्छा लगे होंगे। और हमारे कार्यक्रम जो आगे हमारे कोलेखा साथी लेकर बढ़ाएंगे।

वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विधिनम कुरु मे देवा सर्व कार्यशु सर्वदा। रूबरू मिलने का मौका नहीं पा रहा, अतः शब्दों से अपनों को नमन कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसलिए आपकी श्रेष्ठता को हृदय से नमस्कार करता हूँ। फाहुन रेडियो के सभी सुनने वालों को हार्दिक से अभिनंदन करता हूं, और हम सब फिर एक बार ज्योति का प्रकाश लेकर उपस्थित हो गए हैं। हमारे साथ बबली जी भी उपस्थित हो गए हैं, अभी अनुराधा जी भी एंट्री डालने वाले हैं, और एक नया कोलेखा हमारा साथी जो हमारे साथ और सहयोग देने वाले हैं।

स्वयं के लिए समय निकालना व स्वयं को खुश रखना जीवन की श्रेष्ठतम उपलब्धि है। जो स्वयं को खुश नहीं रख सकता वह किसी और को खुश रखे ऐसा कदापि संभव नहीं है। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।

अपनत्व का कोई रूप नहीं होता। जब जिसकी अनुभूति स्वयं से भी अधिक अच्छी लगी वही अपनत्व है, वही अपना है। इन्हीं शुद्ध विचारों के साथ आप सभी को मेरा सादर नमस्कार, शुभ संध्या।

सुनने वालों, जैसे कि अभी आपने सुने हमारे नया कोलेगा साथी मनीषा जी को, और हर सप्ताह की तरह हम सब वही गीत की ओर बढ़ने वाले हैं।

0: राम जी करे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डड़े। सुनने वालों, हम अपना दूसरा कोई खास साथी को संदेश जो रखना है तो अनुराधा जी को और आग्रह करेंगे कि आप इस समय लाइन पे आ चुके हैं। अनुराधा जी
1: नमस्कार। सभी सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत ज्योति के प्रकाश में स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। संजय जी, मैं आशा करती हूँ कि हमारे सभी सुनने वालों को यह कहानी पसंद आएगी। इसका नाम है सबसे बड़ा पुण्य। कहानी इस प्रकार है। एक राजा बहुत बड़ा प्रजापालक था, हमेशा प्रजा के हित में प्रत्यंतशील रहता था। वह इतना कर्मठ था कि अपना सुख ऐशो आराम सब छोड़कर सारा समय जल कल्याण में ही लगा देता था। यहां तक कि जो मोक्ष का साधन है अर्थात भगवत भजन, उसके लिए भी वह समय नहीं निकाल पाता था। एक सुबह राजा वन की तरफ भ्रमण करने के लिए जा रहा था कि उसे एक देव के दर्शन हुए। राजा ने देव को प्रणाम करते हुए उनका अभिनंदन किया और देव के हाथों में एक लंबी चौड़ी पुस्तक देखकर उनसे पूछा, महाराज आपके हाथ में ये क्या है? देव बोले, राजन यह हमारा बही खाता है जिसमें सभी भजन करने वालों के नाम है। राजा के निराशायुक्त भाव से कहा, कृपा देखिए तो इस किताब में कहीं मेरा नाम भी है या नहीं। देव महाराज किताब का एक एक पृष्ठ उलटने लगे, परंतु राजा का नाम कहीं भी नजर नहीं आया। राजा ने देव को चिंतित देखकर कहा, महाराज आप चिंतित ना हो, आपके ढूंढने में कोई भी कमी नहीं है। वास्तव में ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भजन कीर्तन के लिए समय नहीं निकाल पाता और इसलिए मेरा नाम यहाँ नहीं है। उस दिन राजा के मन में आत्मग्लानी सी उत्पन्न हुई, मतलब उसको राजा को बुरा लग रहा था, दुख हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया और पुनः परोपकार की भावना लिए दूसरों की सेवा करने में लग गए। उन्होंने कहा, जाने दो, कोई बात नहीं, ये बात वो भूल गए और लोगों का भला करने में लग गए। कुछ दिन बाद राजा फिर सुबह वन की तरफ टहलने के लिए निकले तो वहीं उन्हें वही देव महाराज के दर्शन हुए। इस बार भी उनके हाथ में एक पुस्तक थी। इस पुस्तक के रंग और आकार में बहुत भेद था और वह पहली वाली से काफी छोटी भी थी। राजा ने फिर उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा, महाराज आज कौन सा बही खाता अपने हाथों में लिया हुआ है? देव ने कहा, राजन आज के बही खाते में उन लोगों का नाम लिखा है जो ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय हैं, जो ईश्वर सबसे ज्यादा उनको प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। राजा ने कहा, कितने भाग्यशाली होंगे वे लोग, निश्चित ही वे दिन रात भगवत भजन में लीन रहते होंगे। क्या इस पुस्तक में कोई मेरे राज्य का भी नागरिक है? देव महाराज ने बही खाता खोला और ये कहा, पहले पन्ने पर राजा का ही नाम लिखा हुआ था। संजय जी, ये अब मैं कहानी आगे बढ़ाऊं तो सब जानना चाहेंगे, तो इसमें आगे क्या होगा? क्यों ना एक गाना हो जाए और फिर मैं कहानी आगे सुनाऊंगी।
0: जरूर अनुराधा जी, जरूर एक गीत की ओर बढ़ेंगे और कार्यक्रम में हम सब संदेश को आगे रखेंगे।

0: सुने वालों, ये सुंदर सा गीत जो निकाला गया फिल्म देश रंगीला, ये गीत और जो निकाला गया है फिल्म जिसमें आमिर खान और काजल ने अपने कला से प्रदर्शन दिए हैं। प्रश्न रखते हैं अनुराधा जी आपके ओर कि संदेश में और संदेश क्या है।
1: तो सुनने वालों, चलिए जाने आगे कहानी में क्या होता है। तो आपने जैसे जाना कि बही खाते में सबसे पहला नाम राजा का ही निकला। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, महाराज मेरा नाम इसमें कैसे लिखा हुआ है? मैं तो मंदिर भी कभी कभार ही जाता हूं। देव ने कहा, राजन इसमें आश्चर्य की क्या बात है? जो लोग निष्काम होकर संसार की सेवा करते हैं, जो लोग संसार के उपकार में अपना जीवन अर्पण करते हैं, जो लोग मुक्ति का लोभ भी त्याग कर प्रभु के निर्मल संतानों की सेवा सहायता में अपना योगदान देते हैं, उन त्यागी महापुरुषों का भजन स्वयं ईश्वर करता है। उन्होंने कहा, जो भगवान का भले ही भजन ना करे, पर जो भगवान के बनाए हुए लोग हैं, जीव जंतु हैं, जो उनकी सेवा करता है, भगवान उन्हें बहुत प्रेम करते हैं। बोला, हे राजन तू मत पछता कि तू पूजा पाठ नहीं करता, लोगों की सेवा कर, तू असल में भगवान की ही पूजा करता है। परोपकार और निस्वार्थ लोक सेवा किसी भी उपासना से बढ़कर है। देव ने वेदों का उदाहरण देते हुए कहा, इस संसार में कर्म करते हुए ही मनुष्य को 100 वर्ष जीने की इच्छा करनी चाहिए। हे मानव, तेरे लिए इस प्रकार का ही विधान है, इससे भिन्न किसी और प्रकार का नहीं है। इस प्रकार कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा करने से मनुष्य में कर्म का लेप नहीं होता। उन्होंने बोला, राजन भगवान दीन दयालु हैं, उन्हें खुशामत नहीं भाती बल्कि आचरण भाता है। आप कैसा व्यवहार रखते हैं, आप कैसे व्यक्ति हैं, सच्ची भक्ति तो वही होती है। और सच्ची भक्ति तो यही है कि परोपकार करो, दीन दुखियों का हित साधन करो, अनाथ बच्चों, बड़ों, विधवा, किसान व निर्धन जैसे लोग होते हैं जो, या अत्याचारियों से सताए वाले लोग होते हैं जो उनकी देखरेख करता है, उनकी सहायता करता है और सेवा करता है, वही भगवान का परम भक्त होता है। और भगवान भी ऐसे ही इंसान को, ऐसे ही प्राणी को भगवान भी पूछते हैं और प्रेम करते हैं। राजा को आज देव के माध्यम से बहुत बड़ा ज्ञान मिल चुका था और अब राजा भी समझ गया कि परोपकार से बड़ा कुछ भी नहीं, और जो परोपकार करते हैं, लोगों का भला करते हैं, वही भगवान के सबसे प्रिय होते हैं। तो मित्रों, हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है? तो हमें शिक्षा ये मिलती है, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने के लिए आगे आते हैं, परमात्मा हर समय उनके कल्याण के लिए यत्न करता है। हमारे पूर्वजों ने कहा भी है, परोपकाराय पुण्याय भवति, अर्थात दूसरों के लिए जीना, दूसरों की सेवा को ही पूजा समझकर कर्म करना परोपकार के लिए अपने जीवन को सार्थक बनाना ही सबसे बड़ा पुण्य है। और जब आप भी ऐसा करेंगे तो संभवतः ही आप वह ईश्वर के प्रिय भक्तों में शामिल हो जाएंगे। तो सभी सुनने वालों, आपने सुना कि देखिए सबसे बड़ा पुण्य क्या होता है, जब आप किसी की निस्वार्थ बिना कोई फल की, आप कोई लालच के बिना निस्वार्थ भाव से जब इंसान दूसरे की सेवा करता है और भले ही आपको मंदिर जाने का समय ना मिले, ईश्वर की पूजा करने का समय ना मिले, पर आप अगर दूसरे इंसान को, दूसरे किसी व्यक्ति का भला करते हैं, तो वो भी कोई भक्ति से कम नहीं है और वो सबसे बड़ी भक्ति होती है और बहुत उसमें पुण्य का काम होता है। संजय जी, मैं आशा करती हूँ सभी सुनने वालों को मेरी ये कहानी पसंद आई होगी और क्यों ना हम भी अपने जीवन में अच्छा काम करें, लोगों का भला करें और अपने जीवन में ऐसे ही पुण्य कमाएं।

0: राधा जी, जैसे आपने कहे कि हम सब अपने जीवन में इसी प्रकार से पुण्य का काम करते चले, जरूर, क्योंकि आज का विषय भी यही रखा गया है कि मैं कौन हूं, को हम संस्कृत में कहा जाता है, हमारी अपना महत्व और हम कैसे सेवा में औरों का सेवा कैसे कर सके। मनीषा जी, इस पे आपका क्या संदेश है?
1: किसी ने मुझसे पूछा दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है। किसी ने मुझसे पूछा दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है। बड़ा कठिन सवाल है, मैंने मुस्करा कर कहा। बड़ा कठिन सवाल है, मैंने मुस्करा कर कहा। फिर कुछ सोचकर मैंने जवाब दिया, मेरी नज़र में दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अपनी आँखों के सामने अपने माँ बाप को बूढ़ा होते देखना। ये वो समय होता है जब हम कुदरत के इस लेखे को टाल नहीं पाते। माँ बाप के वो खूबसूरत से चेहरे जब छुरियों से भर जाते हैं तो दिल भर आता है।

मनीषा जी रुलाएगा क्या। सुनियो ना, ये फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो है।

0: संदेशों में संदेश जो मनीषा जी हमारे लिए रख रहे हैं, तो मनीषा जी आगे और अपना संदेश को रखिए।
1: माँ बाप हमारी जिंदगी में क्या मायने रखते हैं? कहने वाले कह गए हैं कि भगवान हर जगह नहीं हो सकता, इसीलिए उन्होंने माँ को हमारे पास भेज दिया। सुनने में सुंदर है, हम जिंदगी भर माँ का आंचल पकड़ के चलते हैं, माँ की गोद में बैठकर विश्राम पाते हैं, लेकिन उसी माँ को बूढ़ा बीमार होते देखना कब किसको भाता है? जिसके पिता के कंधे पर चढ़कर हमने मेले हाट घूमे हो, उस पिता के कंधे झुके हुए कब अच्छे लगते हैं? लेकिन समय है, सबके साथ होता है। आज हम देख रहे हैं, कल हमारी संतानें हमें भी बूढ़ा होते देखेंगी, तो क्या समय का यह भाव कभी पलट सकता है? क्या मैं दोबारा अपने माँ बाप के साथ बचपन के पलों को जी सकती हूँ?

उंगली पकड़कर चलने वाले जब खुद चलने के काबिल नहीं रहते तो दिल भर आता है। सहारा देने वाले जब खुद सहारे की तलाश में घूमते हैं तो दिल भर आता है। रास्ता दिखाने वालों को जब अपने ही रास्ते वीरान नजर आते हैं तो दिल भर आता है। हाँ, दिल तब भी भर आता है जब कोई पुत्र अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम तक छोड़कर आता है। कैसे उसका मन मानता है जिन माता पिता ने आपको पैदा किया, आपको पाल पोस कर इस लायक बनाया कि आप आज समाज में सर उठाकर चल पा रहे हैं। उन माँ बाप को बेसहारा छोड़ने में क्या आपका मन नहीं भरता? लगता है ना बुरा? सोचें, विचारें कि कल को अगर हमारी संतानें हमें उसी वृद्धाश्रम के दरवाजे पर छोड़कर आती हैं तो हमारे दिल पर क्या बीतेगी? क्या अपने संतान की हर अच्छी बुरी आदत हमें याद नहीं आएगी? क्या उसके लिए किए हुए हमारे सारे त्याग हमारी आंखों के सामने नहीं आएंगे? वही त्याग तो हमारे माँ बाप ने भी हमारे लिए हमारे बचपन में किए, तो आज उनको छोड़ते जाते आपके मन में कष्ट नहीं होता? विचारें और विचार कर स्वयं इसका उत्तर अपने मन में रखें।

0: मनीषा जी, अभी आपने सुंदर सा संदेश को रखे, जरा ये बताइए कि अपने माँ बाप के लिए कितना सुंदर संदेश जो आपने रखे। अब बबली जी, इस पे आप क्या कहने वाले हैं?
1: इस पे तो मैं यही कहूंगी सुनने वालों कि माँ बाप सबके लिए अनमोल हैं और माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप हमें जन्म देते हैं, हमें बड़ा करते हैं, पालते हैं, और कल को हम भी माँ बाप बनेंगे तो जैसा हम करेंगे वैसे ही हमें मिलेगा। कैसे? जैसा हम बीज बोते हैं वही लौट के फिर वापस आता है। तो इसीलिए हम अपने माँ बाप के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे बच्चे भी हमारे साथ अच्छा करेंगे। अगर हम अपने माँ बाप के साथ बुरा करेंगे तो हमारे बच्चे वही देख के, वही सीख के, वही हमारे साथ करेंगे।
0: सुनने वालों, जैसे कि हमारी खोजी सेना जो होते हैं तो हमारे लिए और ऐसे विषय, ऐसे सुंदर सुंदर विषय को रख देते हैं, और जैसे कि मनीषा जी ने शुरुआत किया जो ये संदेश से कि दुनिया में सबसे भारी और काम क्या है, सबसे मुश्किल चीज़ क्या है, ना मनीषा जी?
1: जी।
0: तो आपने अपने ओर से संदेश रखे कि कितना मुश्किल, कि अपने पिता को देखते हुए जिसके पीठ पे बैठकर, जैसे आपने और संदेश रखे थे कि जाकर मेला में, हमें भी अपना पिता का ख्याल आता है कि हम बचपन में और अपने पिता के कंधे पे बैठकर के, और सूरीनाम देश में वहाँ रामलीला हुआ करते थे ना?
1: जी।
0: तो रामलीला हुआ करते थे तो हमें अभी बहुत साल के बात है, पर हमें इस बात को आपने ख्याल करा दिया कि किस प्रकार से कंधे से बैठ करके और रामलीला को देखते थे, और रामलीला में कुछ बनाया जाता था राक्षस आदि, तो उन्हें देख करके हम बच्चे थे तो बड़े डरते थे। तो पता नहीं इंडिया में आप लोगों ने ऐसे, वैसे तो फिल्मी में देखा जाता है कि ज़्यादा तादाद में लोग मेला जाता है ना?
2: जी संजय जी, ये बिल्कुल सही बात है कि हिंदुस्तान में अभी मेले बहुत वृहद स्तर पर नहीं लगते जैसे कि हमारे बचपन में लगा करते थे, लेकिन फिर भी छोटे छोटे एग्जीबिशन और ख़ासतौर से नवरात्रों के टाइम पर जो मेले लगते हैं जिसमें रामलीला होती है और रावण दहन होता है, उन मेलों में आप प्रायः देखेंगे कि आज भी छोटे छोटे बच्चे अपने पिता के कंधे पर बैठकर रावण दहन देख रहे हैं। शायद वो अपने बचपन की यादें सजो रहे हैं और उनके माँ बाप अपने बच्चों के बचपन की यादें सजो रहे हैं। तो शायद वो बच्चे जब बड़े होंगे तो उनके पास अपने पिता की सबसे खूबसूरत याद यही होगी जो हमारे पास हमारे पिता की है।
0: जैसे आपने सभी को इस बात पे ख्याल रखवा दिया, बबली जी क्या आप भी अपने पिता के कंधे पे बैठ करके रामलीला देखे हैं?
1: नहीं, मेरे पापा तो इतने काम में बिजी थे कि मैंने कभी उनके कंधे पे बैठ के नहीं रामलीला देखी। हाँ, ये है कि हमें स्कूल वो गाड़ी से छोड़ने जाते थे, लेने जाते थे और हमारे साथ घूमने जाते थे।
0: घूमने जाते थे दोस्तों, शायद आपके भी इस बात को, मनीषा जी के बातों पे कुछ पुराने बातें ख्याल आ गया होंगे। मैं देख रहा हूँ बबली जी उंगली उठा चुके हैं, तो सुना दीजिए बबली जी।
1: हाँ, मेरे को ये वेल ध्यान आया है कि मेरा भाई जब अपने नानी के घर जाते थे गांव में, तो वो मेरे को कंधे पे उठा लेते थे। गाँव इतना दूर था हमारी नानी का कि मैं छोटी थी, मैं थक जाती थी।
0: तो मनीषा जी, इस पे आप क्या कहने वाले?
2: हाँ, भाई का कंधा बहन के लिए, भाई की पिट्ठी कौन नहीं, बहन नहीं चढ़ना चाहती। बिल्कुल सही कह रहे हैं बबली जी आप। और गांव देहात में इतने दूर दूर घर होते हैं तो हाँ, वहाँ छोटे छोटे बच्चे कहाँ ही चल पाएंगे।
1: मनीषा जी, हमारी नानी का घर दिल्ली से पंजाब, पहले हम जाते थे बठिंडा, हमारी फूआ रहती थी, वहाँ से आगे मुक्तसर, वहाँ से आके फिर हमारी नानी का। उस समय ना बस चलती ना कुछ नहीं था, हमने जब चिट्ठी लिखनी कि छुट्टियाँ हम आ रहे हैं, हमने वापस दिल्ली भी आ जाना तब चिट्ठी वहाँ पहुँचती थी।
2: क्या बात है बबली जी, चिट्ठी लिखना, ये तो आपने अगले मीटिंग का विषय दे दिया। कितने लोग होंगे हमें जो चिट्ठी लिखना जानते भी होंगे, क्योंकि आजकल तो सब ईमेल या व्हाट्सएप मैसेज करना पसंद करते हैं।
1: सही बोला।
0: इस प्रकार से आजकल चिट्ठी तो ये बिल्कुल पुराने बात लगता है ना, पोस्ट कार्ड आदि कुछ नहीं अब भेजा जाता है।
2: जी, बचपन के अंतर्देशी और पोस्ट कार्ड वो अब कहाँ मिलते हैं।
1: सही बात, अब तो देखने के लिए भी नहीं मिलते हैं। जिनके पास पुराने पड़े होंगे पड़े होंगे, और नए तो है ही नहीं।
2: हम में से कितने खुशनसीब होंगे जिनके पास उनके माता पिता के लिखे हुए खत होंगे।
1: बहुत सही बोला मनीषा जी आपने।

जरूर इस बात पे हमें आपने रख ही दिया है मनीषा जी कि हम में से कितने लोग हैं जिनके माता पिता के खत अभी आपके पास है, और कितने लोग होंगे जो उसे छुपा छुपा करके रखे हुए होंगे, पर कितने लोग हैं जो उसे कागज जान करके और छुपा कर रखा नहीं होगा ना, और कितने लोग भी हो जो जिसके पास उनके दादा दादी पर दादा वृद्ध दादी का और कुछ लिखन यानी कि लिख लिपि में होगा, ऐसा कभी कोई इसके बारे में सोचते हैं या नहीं? चलो हम न्यूज़ और कमर्शियल की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। और आज के जैसे कि आपको पता है कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश, और जिसमें मनीषा जी हम सबके और गहराई में ले जाने वाले हैं। पहले न्यूज़ और कमर्शियल।

0: राजेंद्र जी जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारत से, हम उसे और कनेक्ट करते हैं। राजेंद्र जी, आपको हार्दिक से स्वागत किया जाता है और इस समय आप कनेक्ट हो चुके हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, फाउन हिंदुस्तानी के रेडियो के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। ज्योति का प्रकाश, उसको सुनने के लिए 128 देश के लोग उत्सुक रहते हैं। यानी उत्सुक का मतलब है कि वो इंतजार करते हैं कि कब ये प्रोग्राम आए और हम सुने और नई नई जानकारी हमको मिले। इसी उपलक्ष्य में हम ये प्रोग्राम लोगों तक पहुंचाते हैं और मुझे लगता है कि लोगों को अच्छा भी लगता होगा। तो आज का जो विषय है वो सुरमा सन्यासी का है। सुरमा सन्यासी जो है सदैव ही सुरमा है, किंतु सुरमा का मतलब होता है कि जैसे आंख में सुरमा लगाया और वही दिखता है, फिर कुछ और दिखता नहीं, मतलब आंखों का तारा। किंतु अखाड़ों के सन्यासियों का रुआब इससे भी पता चलता था किस अखाड़े के पास कितने शस्त्र हैं। हमारे ऋषि मुनि और संतों ने समय समय पर आम जन और राष्ट्र के लिए अतुल्य कार्य किए हैं, पर आम जन और राष्ट्र अखाड़ों के मुख्य कार्य अपने लोगों को शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण भी देना होता था। पहले जमाने में क्या करते थे कि जो अखाड़े होते थे वो शस्त्र विद्या सिखाते थे, जिससे कि अपने भी और दूसरों की भी रक्षा हो। अखाड़ों का मुख्य कार्य जो होता था वो स्वतंत्रता संग्राम में, अगर मैं बोलूं तो प्रथम आरंभ सन्यासियों ने कैसे आए जानते हैं, जो पर आक्रांत आए उस कैसे आए। सबसे लंबे काल तक चला विद्रोह 1557 के प्लासी के युद्ध के बाद, जीत के बाद अंग्रेज आगे बढ़ना आरंभ हो गया। 1764 यानी 1764 के वक्सर के युद्ध में एक बार फिर से बाजी अंग्रेजों के हाथ में लगी। पंजाब का नवाब गोरों का टट्टू बन गया और उत्तर पूर्व भाग में अंग्रेजों ने शोषण शासन आरंभ कर दिया। इसी शोषण और कुचक्र के विरुद्ध सन्यासियों ने विद्रोह करना आरंभ कर दिया, जिससे सन्यासियों का विद्रोह की संज्ञा दी जाती है। सन्यासी विद्रोह मुख्यतः बंगाल और बिहार की धरती पर हुआ था, क्योंकि अंग्रेजों से सबसे पहले पांव यही जमाए थे बंगाल में और बिहार में। अंग्रेजों ने सबसे पहले यही शुरुआत की थी अपने राज्य की। सबसे पहला विद्रोह सन्यासियों ने किया, जैसे कि अंग्रेजों ने शासन करना आरम्भ कर दिया था। संभवतः यह विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम के सबसे लंबे काल तक चलने वाला विद्रोह था, जो लगभग 30 वर्ष तक चला, 1770 से 1800 तक चला। ईस्वी का है, 1770 ईस्वी से 1800 यानी 30 वर्ष तक चला। उसी समय भयंकर अकाल से बंगाल कांप उठा। वर्ष 1770 की बात है, बंगाल अंग्रेजों के शासन से इतना कंगाल हो चुका था कि 6 माह भी सूखा न सह सका। हजारों लोग भूख से काल यानी भूखों से जो भूख लगती है लोगों को उससे कलावित हो गए, और प्रत्यक्ष दर्शियों के अनुसार तो जिंदा लोग मुर्दों का मांस खा रहे थे। कुछ लोग जो मर गए वो जिंदा लोग उन्हीं का मांस खा रहे थे, कुछ लोगों ने जो प्रत्यक्षकारी उन्होंने बताया, तो तब कुछ लोग जीवित रह रहे थे। बस इसी स्थिति से निपटने के लिए गोल घर का निर्माण 1784 से 86 करना पड़ा और सन्यासी उठ खड़े हुए। बिहार और बंगाल के सन्यासियों ने ताबड़तोड़ अंग्रेजों की कोठियों पर, उनके खजानों पर हमले करने आरंभ कर दिए। दोनों के मध्य जबरदस्त खूनी संघर्ष के दृष्टांत इतिहास के पन्नों में भरे पड़े हैं। सन्यासियों ने जनता को प्रेरित करने के कार्य किए, जो जनता ने प्रेरित करने का कार्य भी किया, जैसे उनका उद्घोष था, तुम तो घी और दूध खाकर बड़े हो, सांप के शरीर और पैर रख देने से वह फन काट लेता है,

तुम लोगों का धैर्य किसी तरह भी नष्ट नहीं होता, किंतु भारतीय जनमानस तब भी समग्र रूप से खड़ा नहीं हुआ। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल बना, सबको मना किया गया कि सन्यासियों को कोई भी अपने आना आने दे, किंतु जल या जंगल के रास्ते सन्यासी आ ही जाते थे। तो क्यों ना एक सुंदर सा नगमा की ओर बढ़े और सन्यासी ने क्या आक्रांताओं को क्या किया, इसको बाद में फिर लोगों के उत्सुकता बनी रहे।

0: कार्यक्रम की ओर बढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। बात चल रही थी सन्यासियों की कि 1976 में जो घटना हुई है उस बारे में बात चल रही थी। तो सन्यासियों ने बहुत, जो सन्यासी थे उनको मुक्त भूमि पर भी कर लगा दिए गए। अंग्रेजों ने क्या किया कि जो जमीन जायदाद रहा उसमें भी कर लगाया अंग्रेजों ने। और अंग्रेजों के साथ प्रथम संघर्ष सारण जिले का है जो 1967 में घटित हुआ। 1967 सन्यासी ने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया और बहुत से गोरों की जान गई। गोरे रोकने में असमर्थ हो रहे थे। गुप्त सूचना देने के लिए बहुत बड़ा जाल बिछाया गया। वर्ष 1776 यानी 1776 सन्यासी विद्रोह का मुख्य केंद्र पटना के अंचलों के आसपास भी था, जहां और विद्रोहियों की एक बड़ी सेना गठित की गई थी। इस सेना में पटना में गोरों की कोठियों पर हमले बोल दिए गए। गोरे के कुत्ते जमींदारों को लूट लिया। गोरे कर वसूली में फेल होने लगे। सारण जिले में 5,000 विद्रोही सन्यासियों की संगठित सेना ने आक्रमण कर भयंकर युद्ध किया और गोरे को मुंह की खानी पड़ी। अंग्रेज जो थे गोरों उनको मुंह की खानी पड़ी इंग्लिश लोगों को। 1770 ईस्वी से 71 में पूर्णिमा के दिन भी इसी तरह हमले हुए। गांव के लोग सन्यासियों की मदद करते थे और उनकी सुरक्षा और भोजन का प्रबंध भी करते थे। इससे तंग आकर हेस्टिंग ने 1773 में तंग आकर घोषणा की थी कि जिस गांव में किसान विद्रोहियों की खबर देने से इनकार करेंगे उन्हें गुलामों की तरह बेच दिया जाएगा। इसके पश्चात झूठा आरोप लगाकर अनेकों ग्रामीणों को फांसी पर लटका दिया गया। 18वीं सदी आते आते विद्रोह मंद पड़ गया, क्योंकि तत्कालीन राजाओं ने दबाव में आकर किसी भी तरह से सहायता नहीं की। यह विद्रोह तब आरंभ हुआ जब गोर आरंभिक स्थिति में थे। अगर उस समय संगठित होकर कार्य किया जाता और योजना से तो भारत उसी समय स्वतंत्र हो सकता था, लेकिन उस समय संगठित होकर हिंदुओं ने कार्य किया नहीं और गोरे उसमें थोड़ा पॉजिटिव हो गए और राजा और लोगों ने उनकी मदद नहीं करी, इसलिए स्वतंत्र नहीं हो पाया, नहीं तो उसी समय स्वतंत्र हो जाते। पर षड्यंत्र रचने में सन्यासी गोरों से पर नहीं पा सके। अंततः कमजोर हो गया विद्रोह, किंतु अदम्य साहस से भरे सन्यासियों के विद्रोह के साथ समुचित न्याय नहीं किया गया और इतिहास की पुस्तकों में षड्यंत्र के तहत इस विद्रोह को स्थान नहीं दिया गया कि तो आम जनमानस के हृदय पर बहुत गहरा असर पड़ा था। यही कारण रहा कि इस कालजयी घटना के लगभग 100 वर्ष के बाद बंकिम चंद्र चटर्जी ने सन्यासियों के विद्रोह पर आधारित आनंद मठ नामक उपन्यास की रचना की, जो कालजयी साबित हुई। यह लेख उनके लिए है जो साधु संतों और सन्यासियों पर कटाक्ष करते हैं। यहाँ एक प्रश्न आप सबसे कि आपका आज भी क्या योगदान है राष्ट्र और धर्म और प्रकृति के लिए? अगर नहीं तो आओ, मेरा आह्वान है आप सबसे कि आओ विश्व गुरु भारत निरोगी भारत के हमारे संकल्प एवं शस्त्र में जयते के साकार करें और अधिक जानकारी के लिए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से संपर्क करें। तो जो सन्यासियों का मैसेज है वो बहुत ही स्पष्ट है कि किस प्रकार भारत को दोबारा विश्वगुरु बनाना है। जैसे कि भारत विश्वगुरु की ओर अग्रसर है, पहले भी भारत विश्वगुरु था और अभी भी जो हमारा वैदिक धर्म है वैदिक सिद्धांत के आधार पे भारत विश्वगुरु ही है। और जो हम लोगों का टीचर ऑफ इंडियन कल्चर है योग, उससे अभी भारत दोबारा से विश्वगुरु पर आधारित बढ़ रहा है। तो इस प्रकार सन्यासियों ने उस समय और जो योग है ये भी सन्यासियों का ये सबका है अग्रसर रहे और जो स्वतंत्रता की आज़ादी की लड़ाई लड़ी सब लोगों ने, सन्यासियों ने स्पष्ट रूप से अपने चिमटा और उस त्रिशूल लेके लड़ी। तो क्यों ना संजय जी एक फिर एक नगमा भी हो जाए और फिर हम अपना कार्यक्रम लेके आगे बढ़ते रहेंगे।
1: जरूर राजेंद्र जी, एक सुंदर सा नगमा हमने चुन करके रख चुके।

0: सुंदर सा गीत हम सब सुने और ये देशभक्ति गीत। पर राजेंद्र जी, जो आपने सन्यासी के बारे में, सन्यासियों के बारे में और संदेश सुनाए, क्या अभी तक सन्यासी इसी प्रकार से अपना और हक के लिए, उसे भी अपना हक के लिए और मांग करना पड़ता है?
1: हाँ, जैसे सन्यासियों की, संजय जी बहुत ही बड़ा बढ़िया आपने प्रश्न किया है कि हमारे जो कार्यक्रम है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का, इसका लक्ष्य यही है कि 128 देश के लोग जो हमारा कार्यक्रम सुनते हैं, और इस समय सूरीनाम के लोग, खास करके हॉलैंड के लोग, भारत के लोग और गयाना के लोग, वो तो एक कान लगा के सुनते हैं कि कौन कार्यक्रम कब ये लोग करने वाले हैं और हमको क्या जानकारी मिले। तो जो प्रश्न है आज का सन्यासियों का, वो बहुत ही अच्छा है। जो सबसे पहले की बात करते हैं सन्यासियों की, बहुत पहले की बात है, जब परशुराम भी एक सन्यासी थे और उन्होंने पूरा अपने जो अकेले ही उन्होंने पूरे पृथ्वी पे एक सन्यासी होने के नाते युद्ध करते थे और जीत जाते थे। और उसके बाद बहुत सारे सन्यासी हुए जिन्होंने पूरा देश को एकत्रित किया और आगे बढ़े। अभी भी जो हमारे देश में है वो सन्यासी, जैसे योगी आदित्यनाथ जी हैं और मोदी जी भी सन्यासी हैं, ये मेन हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं और उधर से योगी जी हैं, तो दोनों ऐसे सन्यासी हैं कि देश को बहुत आगे की तरफ ले जा रहे हैं। अभी हमारे जो मनीषा जी हैं भारत से, वो उनको भी जानकारी होगी इस मामले में, वो भी इस बारे में कुछ बता देंगी कि भारत सन्यासियों से ही इतना आगे बढ़ता है, क्योंकि हमारा जो देश है ये सन्यासी, जो योगी आदित्यनाथ जी भी कहते हैं कि सन्यासी शुरू से लेके अगर देश की तरक्की करनी है तो सन्यासियों को आगे आना ही पड़ता है। तो इस प्रकार जो कार्यक्रम और हमारे देश के सन्यासी लोग, पूरे देश की बागडोर सन्यासियों के हाथ में है और हमारा देश बहुत आगे बढ़ गया। पहले 11वें नंबर पे था, आज 4थे नंबर पे आ गया। तो ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि एक बागडोर जब सन्यासी के हाथ में होती है तो बहुत ही अच्छा मोई, हेल मोई से चलता है। संजय जी, आप इस विषय में कुछ, आपकी तरफ से क्या प्रक्रिया है और जो हमारी मनीषा जी हैं वो क्या कहती हैं?
0: मनीषा जी कहते हैं कि संजय जी आप कहो, पर कहूँ तो क्या कहूँ, मनीषा जी आप ही सुना दीजिए।
2: नमस्कार राजेंद्र जी, मैं जिस भूमि से आती हूँ, भारत उसका नाम है, और आई एम प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन, प्राउड इंडियन। और हाँ, ये बात आप सही कह रहे हैं, संतों का भारत के जीवन दर्शन में बहुत प्रमुख स्थान रहा है। श्री राम के ज़माने से ले उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा का पालन किया उम्र भर, और उन्हीं के दिए हुए ज्ञान के अनुसार, और आगे उनके विश्वामित्र जी ने उनको जो शस्त्रों का ज्ञान दिया उसी पर आधार रखकर उन्होंने रावण जैसे राक्षस का वध किया। श्री कृष्ण ने अपने गुरु संदीपिनी जी का हमेशा मान रखा और उनके पुत्र को पुनर्जीवन दिया। आज के युग में मोदी जी और योगी जी जैसे संत जब हमारे भारतवर्ष को नई दशा और दिशा दे रहे हैं, तो छोटा सा योगदान हमारी तरफ से यही है कि हम उनको यहाँ बैठकर भी प्रणाम करते हैं और हर तरह से उनको नमन करते हैं।
1: देखिए, जो अभी मनीषा जी ने बोला है वो बहुत ही बढ़िया, सुंदर शब्दों में उन्होंने त्रेता युग से और कलयुग तक की बात बता दी सन्यासियों के बारे में। तो जो सन्यासी अभी हमारे योगी जी और मोदी जी हैं, अभी राम मंदिर जैसे जब से बना है तब से पूरा विश्व में बहुत ही, वहाँ पे बहुत भीड़ है, मैं गया भी था राम मंदिर में, मार्गदर्शन है इसमें, आप क्या कर सकते हैं।

0: सुनने वाला, जैसे कि अभी आपने सुने राजेंद्र सिंह जी की ओर से और मनीषा जी जो अपने ओर से संदेश रखे, बबली जी जो इस समय तैयार हो चुके हैं, और मनीषा जी जरा जैसे कि अभी आपने आज जो चर्चा किया है कि अपने जो माता पिता का अंतर्गत में, तो उसके बारे में आप कुछ और कहने वाले हैं?
1: जितना कहा जाए
2: इस रिश्ते के बारे में उतना कम होगा, बस कुछ चंद पंक्तियों के साथ अपनी चर्चा को विराम देना चाहूँगी कि माता पिता का रिश्ता जीवन में कभी खत्म नहीं होता। माता पिता का रिश्ता जीवन में कभी खत्म नहीं होता, हाथों से छूटता है तो आँखों में रह जाता है, हाथों से छूटता है तो आँखों में रह जाता है, और आँखों से जो छूटता है तो यादों में रह जाता है, और जो रिश्ता यादों में रह जाए बस यादगार जीवन भर के लिए बन जाता है। तो सेवा करें अपने माँ बाप की जब तक वो साक्षात आपके सामने हैं। श्री चरणों की सेवा के जैसा ही पुण्य और उतना ही प्रताप माता पिता के चरणों की सेवा से मिलता है। अपनी चर्चा को यहीं विराम देते हुए एक खूबसूरत सा गाना माता पिता की ओर से हम सभी के लिए।

परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साये से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज

0: सुनो वाला ये सुंदर सा गीत जो हम सब अभी आपके लिए चलाए, जिनका और चूज करने वाले हैं जो मनीषा जी, जो इस गीत को मांग रखे और हम चलाए। मनीषा जी, ये गीत कितना सुंदर रूप से और किसका गाया हुआ है ये गीत?
1: अमिताभ जी ने अपनी आवाज़ में दी है, फिर ऋचा शर्मा जी ने इस गाने को अपनी मधुर आवाज़ में संजोया है। भावनाएं बहुत अच्छी हैं, बहुत खूबसूरत बन पड़ा है, जब भी सुनो रोना जरूर आता है।
0: ये सुंदर सा गीत जो ऋचा शर्मा जी के आवाज में, और जैसे कि अभी आपने कहा कि अमिताभ बच्चन का शुरुआत में है ना, बबली जी इसमें आप क्या रखने वाले हैं, क्योंकि आज भी आज कुछ लेकर आप आए हैं ना?
2: मैं ये कहने वाली थी कि सुनने वालों को आज मैं सुनाने वाली हूँ एक वृत्तांत, जिंदगी की कीमत।
0: तो सुना दीजिए।
2: हाँ जी जरूर। एक बार एक व्यक्ति अकेला उदास बैठा कुछ सोच रहा था कि तभी उसके पास भगवान प्रकट हुए। भगवान को अपने समक्ष देखकर उस व्यक्ति ने पूछा, मुझे जीवन में बहुत असफलताएं मिली, अब मैं निराश हो चुका हूँ, हे भगवान मुझे बताओ कि मेरे इस जीवन की क्या कीमत है। भगवान ने उस व्यक्ति को एक लाल रंग का चमकदार पत्थर दिया और कहा, जाओ इस पत्थर की कीमत का पता लगा लो, तुम्हें अपनी ज़िंदगी की कीमत का भी पता चल जाएगा, लेकिन ध्यान रहे कि इस पत्थर को बेचना नहीं है। वो व्यक्ति उस लाल चमकदार पत्थर को लेकर सबसे पहले एक फल वाले के पास गया और कहा, भाई ये पत्थर कितने का खरीदोगे। फल वाले ने पत्थर को ध्यान से देखा और कहा, मुझसे 10 संतरे ले जाओ और यह पत्थर मुझे दे दो। उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैं ये पत्थर बेच नहीं सकता। फिर वो व्यक्ति एक सब्जी वाले के पास गया और उसे कहा, भाई ये लाल पत्थर कितने में खरीदोगे। सब्जी वाले ने कहा कि मुझसे 1 बोरी आलू ले जाओ और यह पत्थर मुझे बेच दो। लेकिन भगवान के कहे अनुसार उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैं ये बेच नहीं सकता।

सुनने वालों, मैं आज सबको आज बता रही हूँ एक वृत्तांत जिसका शीर्षक है जिंदगी की कीमत। अब हम आगे चलते हैं सुनने वालों। फिर वह व्यक्ति उस पत्थर को लेकर एक सुनार की दुकान में गया जहाँ कई तरह तरह के आभूषण पड़े हुए थे। उस व्यक्ति ने सुनार को भी वो पत्थर दिखाया और उस सुनार ने बड़े गौर से उस पत्थर को देखा और फिर कहा, मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा, यह पत्थर मुझे बेच दो। फिर उस व्यक्ति ने सुनार से माफ़ी मांगी और कहा कि यह पत्थर मैं बेच नहीं सकता। सुनार ने फिर कहा, अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हें 2 करोड़ दूंगा, यह पत्थर मुझे बेच दो। सुनार की बात सुनकर वो व्यक्ति चौंक गया, लेकिन सुनार को मना कर वो आगे बढ़ गया और हीरे बेचने वाले की दुकान में गया। हीरे के व्यापारी ने उस लाल चमकदार पत्थर को पूरे 10 मिनट तक देखा और फिर एक मलमल का कपड़ा लिया और उस पत्थर को उस पर रख दिया। फिर उस व्यापारी ने अपना सर उस पत्थर पर लगा कर माथा टेका और कहा, तुम्हें ये कहाँ मिला, यह इस दुनिया में सबसे अनमोल रत्न है, अगर इस दुनिया की पूरी दौलत भी लगा दी जाए तो इस पत्थर को नहीं खरीद सकता। यह सुन वह व्यक्ति बहुत हैरान हुआ और सीधा भगवान के पास गया और उन्हें आप बीती बताई और फिर उसने भगवान से पूछा, हे भगवान आप मुझे बताइए कि मेरे इस जीवन की क्या कीमत है।

0: इस जीवन की क्या कीमत है। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन ये भी सत्य है कि वे कभी नहीं चाहते हैं कि आप उससे बेहतर करें।
1: सुनने वालों, जब उस व्यक्ति ने भगवान जी से पूछा कि इस जीवन की क्या कीमत है, तो भगवान ने कहा फल वाले ने, सब्जी वाले ने, सुनार ने और हीरे के व्यापारी ने तुम्हें जीवन की कीमत बता दी थी। हे मनुष्य, किसी के लिए तुम एक पत्थर के टुकड़े समान हो और किसी के लिए बहुमूल्य रत्न समान हो। हर किसी ने अपनी जानकारी के अनुसार तुम्हें उस पत्थर की कीमत बताई, लेकिन उस हीरे के व्यापारी ने इस पत्थर को पहचान लिया। ठीक उसी तरह कुछ लोग तुम्हारी कीमत नहीं पहचानते, इसलिए ज़िंदगी में कभी निराश मत हो।

तो सुनने वालों, इस वृत्तांत से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें ये समझना चाहिए कि इस दुनिया में हर मनुष्य के पास कोई ना कोई ऐसा हुनर होता है जो सही वक्त पर निखर कर आता है, लेकिन उसके लिए परिश्रम और धैर्य की ज़रूरत होती है।

सुनो अच्छा संदेश जो बबली जी ने रखे। हर प्रशंसा करने वाला सुखचिंतक नहीं होता है, इस बात पे जरूर ध्यान दे। कोई चाहे जितना समझे, अपने आप को कभी कमजोर मत समझना। हम आखिरी गीत की ओर बढ़ेंगे।

बहुत बहुत धन्यवाद साउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी श्रोताओं को जो हमारी बातों को अपने समय देकर इतने प्यार से मोई से सुनते हैं। और साउन हिंदुस्तानी रेडियो का लक्ष्य यही है कि नए नए कार्यक्रम उन तक सुनाए जाएं। हम लोगों की यही एक इच्छा रहती है, खासकर जो हमारे पनील के पीछे बैठे हैं संजय जी, कि नए नए कार्यक्रम, हमारे खोजी सेना जो है दूर दूर तक पहुंची हुई है और हमको नए नए कार्यक्रम की ओर अग्रसर करती है। और हमारे जो नए मेहमान मनीषा जी भी हमारे साथ जुड़ गई है, वो भारत की है और नीदरलैंड्स में रहती है। तो आगे भी जो हमारे कार्यक्रम होंगे बहुत ही अच्छे होंगे। और सभी लोगों से यही गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय निकाल के फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की कार्यक्रमों को सुने, अच्छी अच्छी जानकारी लेके उसका फ़ायदा उठाएं। तो फिर अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बोनन होते। और जो हमारे मामा जी हैं वो भी कार्यक्रम सुन रहे हैं, तब तक के लिए नमस्कार।

0: तो संजय जी, अंत में मैं सबको ये कहना चाहूंगी, हर कोई महान नहीं बन सकता, लेकिन हर कोई इस समय जहां भी है उससे बेहतर जरूर बन सकता है। और इसी के साथ सब सुनने वालों को अनुराधा का नमस्कार।
1: तुझको पुकारे बन के दीवाना न माने रे।
2: इंसान वही श्रेष्ठ है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं एवं अच्छी स्थिति में उछले नहीं। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।

कह गए कुछ सह गए, कुछ कह गए कुछ सह गए, और कुछ कहते कहते रह गए। मैं सही तुम गलत के खेल में न जाने कितने रिश्ते ढह गए। सभी सुनने वालों से अनुरोध है कि ये चार पंक्तियां याद रखें और अपने रिश्तों को हमेशा संजो के रखें, अपने हाथों में, अपने दिल में और अपने दिमाग के गहराइयों की यादों में हमेशा अपने रिश्तों को संवार कर रखें। इसी के साथ आपसे आगे लेते हैं, नमस्कार, मिलते हैं अगली बार।

जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं, तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। दोस्तों कार्यक्रम में हमारे साथ सहयोग दिए अनुराधा जी, मनीषा जी, बबली जी और भारत से सही राजेंद्र सिंह जी। मैं हूं आपका सेवक संजय और आशा यह रखता हूं कि कुछ न कुछ संदेश आप तक जरूर पहुंचे होंगे। और ये कहना चाहूंगा कि लोग अक्सर कहते हैं कि जिंदगी रहेंगे तो मिलेंगे, मगर एक अच्छे सच्चे दोस्त ने कहा है कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। सभी को नमस्कार।

फर्नमोफी कुरुक्षेत्र से अभी आप सुन रहे थे अलका यज्ञिक और कुमार सानू आपको सुनाने वाले थे। अब तेरे दिल में हम आ गए तो फ्रॉम द मूवी आरसू से आप सुनेंगे कुमार सानू और अलका याग्निक।

0: luisteren.
1: अभी आप सुन रहे थे तेरे दिल में हम आ गए, तो फ्रॉम द मूवी आरसू से हमने पेश किए है कुमार सानू और अलका याग्निक आपको सुनाने वाले थे। जरा सा हम देखे, जी हाँ, उदित नारायण और अलका याग्निक आपको सुनाने वाले हैं तेरा दिल मेरे पास रहने दे।

तेरा दिल मेरे पास रहने दे। अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण और अलका याग्निक आपको सुनाने वाले थे। सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी मुस्कान से आप सुनेंगे वो हो तुम।

सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल जी आपको सुनाने वाले थे वो हो तुम, तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। फ्रॉम द मूवी तुम बिन से आप सुनेंगे, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण आपको सुनाने वाले हैं।

उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी तुम बीन। तुम्हारी नियत की आजमाइश उस वक्त होती है जब तुम किसी ऐसे इंसान की मदद करो जिससे तुम्हें कोई चीज की उम्मीद ना हो, क्योंकि इतना प्यार करते है तुम्हें हम सनम। फ्रॉम द मूवी क्योंकि

है क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम। ऐतराज है फिल्म का नाम और आपको सुनाने वाले हैं अलका याग्निक के साथ में उदित नारायण जी। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ, वो ये है कि हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और खामोश रहने की वजह कोई कोई समझता है। और ये गीत हम पेश करते हैं खास करके शोली जी के वास्ते जो ये प्रोग्राम को भी सुन रही है।

फ्रॉम द मूवी एतराज से हमने पेश किए हैं आंखें बंद करके जो एक चेहरा नजर आया वो तुम ही हो ऐ सनम। अलका याग्निक और उदित नारायण आपको सुनाने वाले थे। वक्त सिखा देता है जीने का हुनर, फिर क्या नसीब, क्या मुकद्दर और क्या हाथ की लकीर है। तशन है फिल्म का नाम और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं उदित नारायण और महालक्ष्मी अय्यर जी की आवाज़ में आप सुनेंगे फलक तक चल साथ मेरे।

0: तबीयत ठीक नहीं है, मुझे सुबह की फ्लाइट से निकलना होगा। होप यू डोंट माइंड।
1: मैं तो समझ जाऊंगा बेटा, पर आई होप तुमने अंजलि को समझा दिया।
0: जी पापा, समझा दिया।
1: अंजलि का ख्याल रखना।
0: जी पापा, आप ऐसे क्यों बोल रहे पापा?

अभी आप सुन रहे थे नी सोनिया नी सोनिया अखा लड़ गईया, फ्रॉम द मूवी शुक्रिया से हमने पेश किए हैं। इंसान का मिजाज भी कितना अजीब है, जो लेकर जाना है उसे छोड़ जा रहा है और जो यही रह जाना है उसे जोड़े जा रहा है। फ्रॉम द मूवी ब्लैकमेल से आप सुनेंगे तुने दी बेकरारी।

0: क्या हुआ तुझे?
1: अभी आप सुन रहे थे तन्हा जी आना जाए फ्रॉम द मूवी तुम दिखें हैरी से हमने पेश किए हैं और आपको सुनाने वाले थे हिमेश रेशमिया जी। सोनू निगम आपको सुनाने वाले हैं जूही बब्बर के साथ में काश आप हमारे होते हैं।

काश आप हमारे होते। अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी काश आप हमारे होते, द टाइटल हमने पेश किए हैं सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में। फ्रॉम द मूवी धूम से हम पेश करते हैं सुनने वालों दिल बोले शिकदुम शिकदुम। शान और श्रेया घोषाल जी आपको सुनाने वाले हैं।

शान और श्रेया घोषाल की आवाज में भी आप सुन रहे थे दिल बोले शिकधूम फ्रॉम द मूवी धूम से हमने पेश किए हैं। जिंदगी की राह में कुछ रिश्ते टूट जाते हैं मगर उनकी यादें हमेशा दिल में बसी रहती है। जरा जरा टच मी फ्रॉम द मूवी रेस से आप सुनेंगे।

मोनाली ठाकुर आपको सुनाने वाले थे जरा जरा तजमी तजमी तजमी फ्रॉम द मूवी रेस से हमने पेश किए हैं योर माय लव फ्रॉम द मूवी पार्टनर से हम पेश करते हैं बहुत मुश्किल होता है दर्द हंसकर बर्दाश्त करना

साउंड मूवी पार्टनर से हमने पेश किए हैं माय लव जाने जा योर माय लव। वक्त बदलता है जिंदगी के साथ, जिंदगी बदलती है वक्त के साथ, वक्त नहीं बदलता अपनों के साथ, अपने बदल जाते हैं वक्त के साथ। हम शकल्स हैं फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते कॉलर ट्यून।

अभी आप सुन रहे थे कॉलर ट्यून। प्रोग्राम को हम आगे में जारी करने वाले हैं और बीवी नंबर 1 से हम पेश करते हैं इश्क सोना है।

अभी आप सुन रहे थे इश्क चांदी है इश्क सोना है। अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं फ्रॉम द मूवी ऐतराज से आप सुनेंगे अदनान सामी और सुनीरी चौहान आपको सुनाने वाले हैं गिला गिला गिला गिल गिला गिला, गिला।

रहे थे गीला गीला गीला गिल गीला गीला मिला मिला मिला कोई मिला मिला फ्रॉम द मूवी ऐतराज से हमने पेश किए हैं। मेरी यार की शादी है इसी फिल्म से हम पेश करते हैं। जाके जाके अरमा है जाके जाके हम

अभी आप सुन रहे थे जागे जागे अरमा है जागे जागे हम। प्रोग्राम को हम और आगे में बढ़ाते हैं सुनने वालों, और अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं आपको सुनाने वाले हैं शान सुनिधि चौहान और के।

0: श्याम सुनिधि चौहान और के आपको सुनाने वाले थे देखो नशे में, मूव योर बॉडी नाउ फ्रॉम द मूवी किस्मत कनेक्शन।
1: Now listen, get up, that's right.

आजा पिया अब तो आजा, उसके बाद आजा पिया तुम्हें प्यार दो। बहारों का सप्ते फिल्म का नाम है, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गीत है दोस्तों। और ये फिल्म में आशा परेख और रजिश खन्ना दोनों इस फिल्म में काम किया। तो आशा परेख रजिश खन्ना बड़े बड़े फिल्मों में काम किया, जैसे बहारों के सपने, कटी पतंग, आन मिलो सजना वगैरह वगैरह, नाइटिंगेल, लता दीदी एंड एडी बर्मन के म्यूजिक पर।

1969 के बाद आपको मालूम है दोस्तों, एक फिल्म था जिसमें धर्मेंद्र काम किया आशा परेख के साथ, फिल्म आया सावन झूम के। वाह क्या फिल्म था दोस्तों, बलराज सानी भी इस फिल्म में काम किया और एक सॉन्ग है पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी एंड नाइटिंगेल लता दोनों के आवाज़ों में आप सुनेंगे आया सावन झूमके का टाइटल सॉन्ग। धर्मेंद्रा और आशा परेख दोस्तों ये दोनों भी बड़े बड़े फिल्मों में काम किए, जैसे आए दिन बहार के, फिल्म शिकार, फिल्म समाधि और आए दिन बहार के, फिल्म शिकार, फिल्म समाधि और बड़े बड़े फिल्मों में ये दोनों काम किया दोस्तों। आपको मालूम है उन दिनों में निखिल शस्त्र के बात है जब धर्मेंद्र एक टॉप एक्टर था और आशा जी भी कुछ पीछे नहीं था, वो भी एक टॉप एक्ट्रेस था। तो दोनों का फिल्म आया सावन झूमका जो मैंने चॉइस करके रखा है, उसी फिल्म का सॉन्ग अभी आप सुनेंगे राफी साहब एंड नाइटिंगेल लता मंगेशकर दोनों के मीठी आवाज़ों में।

आया साउंड झूम के बाद दोस्तों, अब की बार उन दिनों के बाद है कपूर परिवार का सबसे हैंडसम बॉय शशि कपूर का फिल्म आमने सामने का एक सॉन्ग है, नैन मिला के चैन चुराना किसका है ये काम। शशि कपूर इस फिल्म में शर्मिला टैगोर के साथ काम किया दोस्तों, और शशि भी शर्मिला के साथ और कई फिल्में बनाया, बड़े बड़े फिल्में जैसे सुहाना सफ़र, माई लव, अनाड़ी वगैरह वगैरह। तो हम सब मिलकर सुनेंगे नैन मिलाकर चैन चुराना किसका है वो काम, मुझको पता है उस जालिम का नाम।

या आपको भी पता है उस आलिम का नाम, मैं सोचा जरूर पता होगा। दोस्तों, मस्त बहारों का मैं आशिक फिल्म फर्ज, आप ये फिल्म जरूर देखे होंगे। उन दिनों में ये फिल्म कितना हलचल मचाया और जितेंद्र फिल्म में काम किया बबीता के साथ। दोस्तों, बीते हुए दिनों में एक बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म एक्टर्स जब शुरुआत करते थे तब फिल्म फ्लॉप हो जाते थे। ज़्यादा से ज़्यादा एक्टर का फिल्म फ्लॉप हो जाते थे, उसके बाद टॉप एक्टर बन जाते थे। उसी तरह से एक एक्टर भी जितेंद्र है या था, जो जिनका एक दो फिल्म फ्लॉप हुआ फिर जाकर एक टॉप एक्टर बना। तो माइटी मुकेश नहीं है, मैंने सोचा माइटी मुकेश नहीं, राफी साहेब वंस अगेन, मस्त बहारों का मैं आशिक, जितेंद्र एंड बबीता का फिल्म फर्स्ट का सॉन्ग।

ये आप ही का हैप्पी स्टेशन फाह ऑन हिंदुस्तानी रेडियो। आप सुने प्रोग्राम गीतों का संगम राजन के साथ। बहारों ने किए सजदे, बहारों ने किए सजदे, फूलों ने सर झुकाया है। माइटी मुकेश के आवाज़ में आप गीत सुनेंगे। बॉम्बे बाय नाइट फिल्म का नाम है।

ओ मेरे हमराही मेरे बा थामे चलना, ओ मेरे हमराही मेरे बा थामे चलना, बदले दुनिया सारी, बदले दुनिया सारी तुम ना बदलना। दोस्तों फिल्म गाइड, इस फिल्म में देवानंद एक गायक था, हिट्स था, रेस हिट्स, और एक सॉन्ग है जिसने शैलेंद्रा ने लिखा है। शैलेंद्रा का असली नाम है शंकर दास केसरी लाल होना चाहिए, शंकर दास केसरी लाल शैलेंद्रा का असली नाम है। आप जानते हैं दोस्तों, एक गाना जब एक गीत जब बनता है तो लोग गाते हैं, हम हमेशा कहते हैं राफी ने अच्छा से गाया, मुकेश अच्छा से गाया, लता ने अच्छा से गाया, किशोर कुमार ने गीत अच्छा से गाया, लिखी वो शख्स जो एक गीत लिखता है उसका नाम हम नहीं लेते हैं। वो आदमी जो बैठ कर सोच सोच के दिन रात एक गीत लिखते हैं उन्हें हम भूल जाते हैं, ऐसा मत होना चाहिए। शैलेंद्रा का लिखा हुआ गीत है, गाता रहे मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल, किशोरदा एंड लता।

मेरा दिल कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। जैसे मैंने कहा दोस्तों, बहुत से एक्टर्स का फिल्म फ्लॉप हुआ है और सलमान खान का भी 2-3 फिल्म लगातार फ्लॉप हुआ। तो एक रात्रि में लगभग आधे रात को सलमान खान गोविंदा को तार किया। उन दिन गोविंदा उनका दोस्त है, तो उसे कहा कि मैं अब स्टॉप करूँगा, फिल्म फ्लॉप हो जाता, अच्छा नहीं लगता है। तो गोविंदा सलमान खान का हाथ पकड़ा, उन्हें मदद किया दोस्तों। तो सलमान खान आज इतना बड़ा एक्टर है। सलमान खान का एक फिल्म है लकी, और उसी फिल्म का एक सॉन्ग है सोनू अतनान सानी, दोनों की आवाज़ में सुन जरा।

सुन जरा सुनिए सुन जरा, इसी फिल्म का एक दूसरा सॉन्ग मैं सेलेक्ट करके रखा हूँ, लॉकी नो टाइम फॉर लव, फिल्म का नाम अनुराधा एंड उदित नारायण।

वाकया लव सॉन्ग जा मेरी जा रही है सनम। एक दूसरा लव सॉन्ग है दोस्तों शाहरुख खान एंड यूही चावला ने काम किया फिल्म यस बॉस। 90s रोमांटिक सॉन्ग है और ये गीत मैं कोई ऐसा गीत गाओ आप सभी के लिए है।

on Hindustani Ripper aap tune hai. In ho ya raat, subha ho ya sham, subha ho ya sham, din ho ya raat, aap on Hindustani Radio hamesha aapke saath. सॉन्ग में पाकिस्तानी सांगर अतीफ असलम के आवाज़ में आप सभी को लिए पेश करूँगा. एंटीक हिंदी सॉन्ग कलेक्शन से मैं निकाल के आपके घर तक पहुँचाऊँगा. आप जहाँ पर भी रेडियो सुनते होंगे आपके कानों तक मैं पहुँचाऊँगा अतीफ असलम का सॉन्ग.

आतिफ असलम ये न सिर्फ एक सानर लेकिन एक एक्टर भी पाकिस्तानी के पाकिस्तानी फिल्मों में भी आतिफ असलम ने काम किया है। अभी एक दूसरा गीत मैं आतिफ असलम का आपको जरूर सुनाऊंगा, लेकिन मैं चला जाता हूँ बाबुल सुप्रियो के सॉन्ग के ओर। और बाबुल सुप्रियो ये भी एक काफ़ी मशहूर गायक है, उसके आवाज़ में आप सुनेंगे मेरी तरह तुम।

बाबुल सप्रियो और साथियों की आवाज़ में भी आप गीत को सुना। मैं वापस चला जाता हूँ आतिफ असलम के एल्बम के ओर। और आतिफ असलम 2005 में बॉलीवुड का प्रोड्यूसर महेश भट्ट ने उन्हें मौका दिया फिल्म सहर में एक नंबर पेश करने के लिए। और वो था ये गीत दोस्तों, मैं आपको सुनाऊंगा वो लम्हे वो बातें आतिफ असलम के मीठी आवाज़ में आप सुनेंगे।

अभिजीत अभिजीत अभिजीत अभिजीत गुलशन कुमार और एरदे बर्मन के साथ शुरुआत किया दोस्तों, जैसे मैंने कहा तो किशोरदा का गीत गाते थे, उसके बाद अपन सिलेक्शन बॉलीवुड फिल्मों में पेश किया। एक बार फिर अभिजीत के मीठी आवाज में आप गीत सुनेंगे, अभिजीत बच्चाचारिया।

अब की बार दिल में हो तुम। बप्पी लहरी का म्यूजिक है और अरमान मालिक के आवाज में आप एक गीत को सुनेंगे। अरमान मालिक सॉन्ग राइटर, इंडिया से सांगर, म्यूजिकांत, प्रोड्यूसर और एक्टर। ये सिर्फ हिंदी में लेकिन तेलुगु, एंग्लिश, बंगाल, कनाडा, मराठी, तमिल, गुजराती, पंजाबी, उर्दू और मलयालम में भी अपन गीत पेश किया है। अरमान मालिक के आवाज़ में गीत सुनेंगे आप।

अब की बार दोस्तों तू कौन है, तेरा नाम क्या है? साधना सरगम एंड मिस्टर सानू या कुमार सानू, दोनों के आवाज में आप गीत सुनेंगे। अक्षय कुमार, रेखा, रवीना टंडन, खिलाड़ियों के खिलाड़ी में काम किया।

मैं हूँ सीधे साधे राजन, आप सुन रहे फाहन हिंदुस्तान रेडियो राजन के साथ श्रिया घोषाल एंड पद्मश्री उदित नारायण। जमाने की सारी खुशी मिल गई है। जब जमाने की सारी खुशी मिल गया दोस्तों, तो और जमाने में क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, और कुछ कमी नहीं है दुनिया में जब सारी खुशी मिल जाए तो।

में तुम मिले जिंदगी मिल गई, अभी भी किसी ने सीरियो में तार किया कहा, पुराने गाने में जो मजा था अभी के गाने में कहा। दोस्तों लोग है जो पुराने गाना से मजा लूटते हैं, और लोग जो है वो नए गाने भी चाहते हैं, तो पुराने नए गाने सब चलाना चाहिए। इसलिए मैं कभी कभी पुराने गाने चलाते हो, कभी कभी नया गाना आपके लिए पेश करता हूँ। पहली पहली बार मोहब्बत की है, आपको मालूम है वो दिन वो तारीख आपको याद है या नहीं? आपको ज़रूर याद होगा। ये पहली बार जो मोहब्बत होता है वो हमेशा दिल में जाकर समा जाता है और कभी दिल से नहीं निकलता है। ये चीज़ मैं सोचता हूँ जैसे जैसे सभी के साथ होता है। दोस्तों पहली पहली बार मोहब्बत की है, किसी ने ये बात नहीं कह सकता है कि मैंने कभी मोहब्बत नहीं की है। मोहब्बत एक चीज़ है जो हर एक इंसान एक बार जरूर किए होंगे, तो आप भी किए होंगे, मैं भी किया है, वो भी किया है।

अफ्रीका हैप्पी से शिल्फा हूँ हिंदुस्तानी रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम। प्रोग्राम गीतों का संगम में चटनी सोका आप सुनेंगे दोस्तों। एक बार मैं कहता हूँ चटनी सोका, फिर भी छोटे में मैं कह देता हूँ मिक्स म्यूजिक, जिसमें हर एक तरह के म्यूजिक मैं आपके लिए पेश करूँगा। मिस्टर राम नारायण या रीमोन रीमोन राम नारायण के आवाज में नकातिंग नकाटिंग नकसानी

मिस्टर तसीफ बक्स, और तसीफ बक्स आपके लिए पेश करेगा किसरिया एक्स काउंटडाउन।

की बार दोस्तों, ये मोक्सी अलैसी नहीं, ये मिसिक मोक्सी है और मिसिक मोक्सी में ओल्ड चटनी पार्टी फॉली में इनसे मैं निकाल कर आप तक पेश करता हूँ।

फ्लोरी बिना चटनी कैसे बनी? मैं सोचता हूँ आप सभी को मालूम है कि ये चटनी कैसे बनेगा। हाय शोली ग्याल, शोली ग्याल तू का करे है?

दिया और रूबिया। दोस्तों कार्तर कड़मा अनु ताकि मिनो लोबियू, सुमा ताकि मिनो लोबियू, मिलो बयू थ्रू।

मिक्सी मोक्सी पोकू चला है दोस्तों, अब की बार दो दो दो दो पोपो बिलैया टोके काटी, बच के रहना दोस्तों खरबोट लिए भी।

ये सही बात, ये सभी बात आप सूरज और फूलों से जरूर सीखना दोस्तों। जगना और जगाना, राजा सविता सिंह की आवाज़ में।

टोन एक सविता सिंह के आवाज में भी आपने सुना। विशाल हीरा तैयार हो गया है दोस्तों, और विशाल आपको फरमाएगा भैया टेक लड़की।

आपस में देखा तो गए मुस्काए, जरूर मुस्कुराना चाहिए दोस्तों। जब नजर लग जाता है तो वहां पर मुस्कुराने का बात भी होता है। अब की बार इंडियन रॉम शॉप ओल्ड लेडीज।

दोस्तों, प्रोग्राम का शुरुआत तो सदियों से करते आ रहा हूँ, वही शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के साथ। फ्रॉम द मूवी ललकार 1927, कंपोज बाय द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी, और हमेशा की तरह आप सभी को सुनाने को जा रहे हैं भारत देश हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का द किंग ऑफ मेलोडी, सुरों का बादशाह पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी। क्या आज गालो, मुस्कुरा लो, महफिले सजा लो, क्या जाने कल कोई साथी छूट जाएगा। जीवन के डोर तो बड़ी कमजोर है यारो, ये कब टूट जाएगा, ये कब समाप्त हो जाएगा, ये तो सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है। इसीलिए हम लोग तो आप सभी से सदियों से यहाँ से कहते आ रहे हैं कि हैप टू नास्ट आउट एट लीफ है, कांधे से कांधे मिलाकर भिड़ाकर लगाकर आगे को बढ़ना है यारो, खुद को आगे को बढ़ाना है, देश को भी आगे को बढ़ाना है, कौम को भी आगे को बढ़ाना है। तो ये शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के बाद आप सुनेंगे एक अति सुंदर स्पेशल हमारे पुराने जमाने के महान संगीतकार, प्रोड्यूसर, सिंगर, मैस्ट्रो मदन मोहन जी के कुछ नगमे लेकर आया हूँ, और उसके बाद कुछ नगमे आप सुनेंगे जिन फिल्मों में महान अभिनेता द ग्रेट एक्टर दिलीप कुमार साहब जी ने काम किए हैं। बीच में कुछ ज्ञान के बातें हैं, शेर शायरी भी है, तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना, क्योंकि आज हम हैं कल हम तो नहीं रहेगा। रवि साहब जी,

गुरा लो, महफिले सजा लो, रवि साहब जी के मधुर आवाज में हमेशा की तरह प्रोग्राम का शुरुआत। हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, आज का इस हसीन प्रोग्राम का शुरुआत मैं कर रहा हूँ महान संगीतकार द ग्रेट मदन मोहन जी के कुछ नगमे लेकर। और आज का इस हसीन प्रोग्राम में आप सुनेंगे पहला बयान लेकर आ रहे हैं महान गायक हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का पद्मश्री महेंद्र कपूर जी। साथ दे रही है क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल आशा भोसले जी। मुझको तेरी तलाश है, ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी मिनिस्टर 1959।

मुझको तेरी तलाश है, uit de film Minister 1959, composed by maestro Madan Mohan, Mahendra Kapoor, Asha Bhosle, chorus ke awaaz mein. Agla bayan aap sunenge uit de film Sahib Bahadur Devanand ka, ati sundar movie में से ये अति सुंदर बयान को निकाला हूँ, कंपोज बाय मैस्ट्रो मदन मोहन, और सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को महेंद्र कपूर, अंबर कुमार, चंद्रानी मुखर्जी कोरस के साथ, हम पापी तू भक्षण हार।

सुंदर बयान भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी के मधुर आवाज में आप सुने उन आंखों में नींद कहा एक फिल्म मिनिस्टर 1959 अल्फांसो थे राजेंद्र कृष्ण के म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन जी के साथ पर पावन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है अति सुंदर प्रोग्राम आप सुन रहे हैं गीत और गजल और इस गोल संगीतकार का दास्तान नामक कार्यक्रम स्पेशल चल रहे हैं महान संगीतकार आइड यार एंड 40 50 60 70 मैस्ट्रो मदन मोहन जी अगला बयान द मैन विद गोल्डन वॉइस तलत महमूद जी के मधुर आवाज में आप सुनेंगे एक फिल्म मोहर 1959 याद जब आए तेरी अपनी गुजरी

द मैन विद गोल्डन वॉइस तलत महमूद जी के मधुर आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना एक फिल्म मोहर 1959। अल्फा से थे राजेंद्र कृष्ण जी का और कंपोज बाय द ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन जी। अगला बयान एक बहुत ही जबरदस्त सॉन्ग है, जरा अल्फाजे पे जरूर आप ध्यान धरे। सुरों का बादशाह रवि साहब जी के मधुर आवाज में कब तक तू भगवान से अपना मुंह छुपाए फिरेगा यारो, एक दिन तो जरूर सामना होगा। एक फिल्म 50-50 कंपोज बाय मैस्ट्रो मदन मोहन।

सबक और शिक्षा से भरा हुआ अति सुंदर बयान है फिल्म 1956 रिलीज्ड ऑफ 1 जनवरी 1956। शुरू का बादशाह रवि साहब जी के मधुर आवाज में और कंपोज बाय द जीनियस म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन जी। अति सुंदर बयान है ये भी, शिक्षा और सबक से भरा हुआ है। और इस बार बड़े दिनों बाद दादा हेमंत कुमार के मधुर आवाज में कंपोज बाय मदन मोहन जी एड फिल्म छोटे बाबू 1957 कंपोज बाय मदन मोहन जी। ले ले दर्द पराया।

ब्यूटीफुल सॉन्ग, वंडरफुल सॉन्ग, चांद माध्यम है, आसमान चुप है, फ्रॉम द मूवी रेलवे प्लेटफॉर्म 1955, भारत रत्न सुरेखा देवी, लता मंगेशकर जी के मधुर आवाज में, साहिर लुधियानवी के अल्फा से, मदन मोहन जी के साज। तो आज का इस अति सुंदर स्पेशल जो आप सुन रहे हैं, मैस्ट्रो मदन मोहन जी का एक आखिरी बयान आप श्रोताओं के सेवा में मैं पेश करूंगा। एक बार फिर भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी के मधुर आवाज में हाईक्यू ऑडियो साउंड फ्रॉम द क्लासिक मूवी हिंदुस्तान की कसम। मदन मोहन जी के सांच पर है तेरे साथ मेरी वफा।

तेरे साथ है मेरी वफा, ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी हिंदुस्तान की कसम, भारत रत्न सुरेखा देवी, क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी के मधुर आवाज में कंपोज बाय द जीनियस म्यूजिक डायरेक्टर मैस्ट्रो मदन मोहन। हमारे प्रिय श्रोताओं, यहीं तक था आज का ये हसीन स्पेशल मैस्ट्रो मदन मोहन जी का, जो समाप्त होने को आया। अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो ये रेडियो स्टेशन है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। ब्रेक के बाद मिलता हूं यारो, कहीं जाना मत।

वफा हुन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। अब चुन है द प्लस रेडियो पर नतीलक उक्त बुलाइस्टर फिया इंटरनेट के लहरों द्वारा फाउन FM.NL पर ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। हमारे फूड टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में, जहाँ पर भी हो, जिस हाल में हो, घर पे हो या तो मोटर कार में सफर कर रहे हो, दुनिया के जो भी कार्यक्रम में या दुनिया के जो भी कोने में ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुँचे। हमारे फूल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक शुभ दिन प्रकट हो। मैथिल फील लेस्टर प्लेजीर के साथ जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाई से जरूरी खबरें या तो आप एक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवाकर और फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यारो। या तो आप एक ऑर्गामान हो, ऑर्गा वुमन हो, इवेंट ऑर्गनाइजर और तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं तो जरूर उसके बारे में कमर्शियल बनवा कर और फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यारो। तो देखना कैसे चमत्कार पे चमत्कार हो जाएगा। ये बात मैं आप श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुनते रहते हैं। किफायत सस्ते दाम, सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश है और मात पर हम लोग बनाकर जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे, और ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से यही कहते आ रहा हूँ आप सभी से कि फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को हॉलैंड देश भर में नहीं मिलेगा यारो। आप आजमा कर तो देख। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें टेरेंस कंतूर यूरो ओपनल सीवन तक रिफरेंसेस तक 2024 तक। तो जो भी रेडियो का काम हो, डेंकन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना, रिक्लाम बनाते रहना यारो। फुल टीम की तरफ से इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और रो को भी बनाए। आपको तो ढेर सारा फायदा ही फायदा है। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें टेरेंस कंट्रोल यूरो ओपनल सीवन तक 2024 तक। तो आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और रो को भी बनाए। उबेंट फन हार्ट वेलकम। तो प्रोग्राम में कुछ बदलाव लाऊंगा हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं और वादा के मुताबिक अब से लेकर कुछ देर तक आप सुनेंगे सिर्फ बॉलीवुड सॉन्ग्स और कुछ नए नए आवाजें भी है। तो एक अति सुंदर बयान सुनने को जा रहे हैं आप सभी को। काफ़ी दिनों बाद महान फनकार हमारे पाकिस्तान देश का मशहूर गायक डगड़ैत राहत फतेह अली खां के मधुर आवाज़ में आप सुनेंगे उनका बिल्कुल नया सॉन्ग चाल। मिलके सुनते हैं ये अति सुंदर बयान को।

Beautiful song by maestro Rahat Fateh Ali Khan, new Punjabi song, आप श्रोताओं के नाम। अगला बयान सुनने के जा रहे एक और महान गायक इस जमाने का, हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का द ग्रेट अरमान मलिक जी। इसका दादाजी सरदार मलिक भी एक बहुत ही महान कंपोजर था, और इनका चाचा जान अन्नू मलिक

0: Het ding met scamwebsites.
1: Beautiful song bij Arman Malik en Shreya Ghoshal. आजकल का ये कुछ संगीत आप श्रोताओं के सामने मैं पेश कर रहा हूँ। अगला बयान एक और उभरता हुआ कलाकार इस जमाने का आप सुनेंगे। फिर और क्या चाहिए।

0: म्यूजिक बाय सचिन जिगर, और सुनने को जा रहे हैं ब्यूटीफुल वॉइस का मालिक द ग्रेट आशीष कौर जी के ब्यूटीफुल आवाज में, म्यूजिक बाय सचिन जिगर।
1: सुनो

फिर और क्या चाहिए। ब्यूटीफुल सॉन्ग बाय अजीज कौर, संगीतकार सचिन जिगर के साथ पर। अगला बयान एक अति सुंदर सॉन्ग है, मिलके सुनते हैं जोनिता गांधी और सलीम शैं के आवाजों में। म्यूजिक बाय अभिजीत वाघानी, गलियां एंड दिल में हो तुम।

ब्यूटीफुल सॉन्ग ये सुना दिया आप सभी को, क्या आवाज़ें, जोनिता गांधी और सलीम मेरशांत फ्रॉम द म्यूजिक सीरीज टी सीरीज, म्यूजिक बाय अभिजीत वघानी। तुम हमें मिलो एक और महान गाने वाली जमाने के हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का डिग्रेट नीति मोहन जी के मधुर आवाज में आप सुनेंगे अति सुंदर बयान, म्यूजिक बाय शमीर टंडन और लिखा है विश्वदीप जीस्ट ने अति सुंदर बयान को।

हो गया है कुछ शेयर्स हो जाए ना हमारे शेयर्स के चाहने वालों के लिए। तो अर्ज किया है यारों की आपकी याद ही मेरी जान है, आपकी याद ही मेरी जान है, शायद इस हकीकत से आप भी अनजान है। मुझे खुद नहीं पता कि मैं कौन हूं, मुझे तो खुद नहीं पता कि मैं कौन हूं, आपकी प्यार ही मेरा प्यार का निशानी है।

मोहब्बत क्या नगमा है यारो, और सुना दिया आप सभी को मशहूर गाने वाला म्यूजिक कंपोजर सिंगर द ग्रेट अमाल मलिक जी। प्यार है तो है एक और मशहूर गाने वाली हमारे इस जमाने का द ग्रेट पलक मुशाल जी के मधुर आवाज में आप सुनेंगे, अति सुंदर बयान साथ दे रहे हैं अरमान मलिक जी, मिलके सुनते हैं।

तो है ब्यूटीफुल सॉन्ग बाय अरमान मलिक और पलक अमुशाल जी के मधुर आवाजों में। और ये थी सुंदर बयान कौन किया है अनिक। तो हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, धीरे धीरे वक्त भी करीब आ रहा है आप सभी से विदा लेने के, लेकिन उससे पहले आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में ये आखिरी बयान आप सुनेंगे। और सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को एक महान गाने वाला इस जमाने का, द ग्रेट जुबिन नौटियाल जी के बिल्कुल नया सॉन्ग पहली बारिश में। मिलके सुनते हैं गुरप्रीत सैनी और गौतम शर्मा ने मिलकर लिखा है ये अति सुंदर बयान को, और अरेंज किया है रोचक कोहली ने पहली बारिश में।

0: सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो?
1: करिश्मा बुलाने जा रहा हूँ।
0: बहू को अभी 2 दिन तो हुए उससे मायके गए हुए।
1: 2 दिन 2 साल जैसा नहीं लग रहा, और बारिश भी आने वाली है।

हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। आप चुन है द प्लस रेडियो पर एनाटिलक उक्त बुलेस्ट रिफिया इंटरनेट के लेर द्वारा फाउन fm.nl पर ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। नतीलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स एंड नतीलक बदंत, जहां पर भी हो जी साल में हो, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुंचे। अब हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को एक शुभ दिन प्रकट हो। मैथिल फील लजतर प्लेजर के साथ तो जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाइश हो, जरूरी खबरें, या तो आप एक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में, या तो आप ऑर्गामन हो, इवेंट ऑर्गेनाइजर, ऑर्गा वुमन ऑफ, आप जो ऑर्गेनाइज करते हैं तो जरूर उसके बारे में कॉमर्शियल बनवा कर, या तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कॉमर्शियल बनवा कर और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ऐलान कराना यारो, तो देखना कैसे चमककार पे चमककार हो जाएगा। ये बात मैं आप श्रोताओं को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग फाउन हिंदुस्तानी रेडियो को सुनते रहते हैं वर्ल्ड वाइड इंटरनेट के लहर द्वारा, एंड यूरोप के कुछ शहरों में द प्लस रेडियो द्वारा आप फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का प्रोग्राम सुन सकते हो। तो आपका जो भी इश्तिहार है, या तो हस फरमाइश हो, जरूरी खबर हो, तो तमाम लोग सुनेंगे। किफायत सस्ते दाम, सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश है अब मार्ग पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतनी बार हम लोग ऐलान कर देंगे, और ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से आप सभी से यही कहते आ रहा हूँ कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को हॉलैंडेज भर में नहीं मिलेगा यारो, आप आजमा कर तो देख। सभी जानकारी इसके बारे में आप दायर करें टाइडेंस कंटोर यूरोप नौ 3 5 6 8 9। जो भी रेडियो का काम हो, डेंकन फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और ओ को भी बनाए। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें अब 0 6 2 3 5 6 8 9। तो आप भी जल्द से जल्द फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और ओ को भी साथ ही साथ मेंबर बनाए। इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यार और रिक्लाम बनाते रहना, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू, और इसके लिए हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को तह दिल से धन्यवाद। एक ही नाम लेकर बढ़ते हैं आप सभी को प्रोग्राम की तरफ, और कुछ सरनामी इंडियन पॉप म्यूजिक सेलेक्ट किया हुआ हूँ और आज सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को हॉलैंडिस रोटरडैम शहर का नौजवान कलाकार मशहूर गाने वाली रोशना बालगोविंद जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये अति सुंदर बयान आप सुनेंगे हसरते। एंजॉय द म्यूजिक।

0: ब्यूटीफुल सॉन्ग बाय रोशना बालगोविंद हसरते, उभरता हुआ कलाकार हमारे हॉलैंड देश का। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है यारो सरनामी इंडियन पॉप म्यूजिक आप सुन रहे हैं। अगला बयान सुनने को जा रहे हैं, बिल्कुल नया सॉन्ग है, डेमियन और एशली मिलके सुनाते हैं सेलेक्टा बीट्स के साज पर, प्यार तो एक दिन होना था।
1: Selecta and Jerry Bass Concert, Selecta Beats Showband, Holland's Fire.

Beautiful song, wonderful song, covered song by Damien and Ashley Piarto ik din honata. Music by Maestros King Selecta. अगला बयान है कि तरफ बढ़ते हैं यारो जोर तोर से सरनामी इंडियन पॉप म्यूजिक आप सुन रहे हैं कुछ भड़कता हुआ कुछ सोस मिला कर लाया हूं आप श्रोताओं की सेवा में एक अति सुंदर बयान द चटनी ब्लैम फ्रॉम सुजल उमराव आप सुनेंगे क्या बात है ऑफिशियल वीडियो फ्रॉम 2024 beautiful song special

हायरे हायरे बलमुआ, नया चटनी ब्लैम बाय मशहूर गाने वाला सुरिनाम देश हॉलैंड देश का द ग्रेट सुजल उमरो। सुंदर मजेदार सॉन्ग रख चुका हूँ प्लेयर में आप श्रोताओं की सेवा में, और इस बार लाते हैं प्रोग्राम में किंग सेलेक्टा को, और वो सुनाते हैं भैया की छावड़ी के बबाल।

क्या बात है, ब्यूटीफुल सॉन्ग बाय किंग सेलेक्टा 2024 छाउड़ी के बबाल। पावन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है जोर तोर से सरनामी इंडियन पॉप म्यूजिक आप सुन रहे हैं। अगला बयान मशहूर गाने वाला इस जमाने का शरविन तेजू को लाते हैं प्रोग्राम में और वो सुनाते हैं आप सभी को मिगारो।

شاباش जबरदस्त नगमा नूरी एक्स मैशअप आप श्रोताओं की सेवा में पेश किया गया ऑफिशियल वीडियो आउट 2024 माएस्ट्रो संजय जोधा जी के मधुर आवाज में म्यूजिक बाय एक्सक्लूसिव। अगला बयान एक और जबरदस्त गायक हमारे सूरीनाम देश का मेयर बकैंथाउस मिस्टर के फ्रॉम सूरीनाम कविश कालका जी के मधुर आवाज में आप एक जीवन का नगमा सुनेंगे। लेवन स्लीत एक प्यार का नगमा है ऑप्शन के स्टाइल फ्रॉम सूरीनाम।

ब्यूटीफुल सॉन्ग एक प्यार का नगमा है कॉफरेट बाय मिस्टर के फ्रॉम सुरीनाम कविश कालका जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये चीज सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। स्वाच का इस हसीन सरनामी संगीत का प्रोग्राम पॉप म्यूजिक फ्रॉम सुरीनाम आप सुन रहे हैं। एक आखिरी बयान आप सुनेंगे एक और बहुत ही मशहूर गायक हमारे सुरीनाम देश का मास्टरो प्रशांत राम जतन के ब्यूटीफुल आवाज में संगीत बाय द जूनियर्स फ्रॉम सुरीनाम तेरी ओर।

हाय रब्बा ब्यूटीफुल सॉन्ग म्यूजिक बाय द जूनियर्स और गायक था सुरिनाम देश का मशहूर गायक प्रशांत राम जतन जी। तो हमारे भी प्रिय श्रोताओं ये तक था आज का ये सरनामी संगीत का प्रोग्राम जो समाप्त होने को आया। अभी आप विज्ञापन सुनेंगे देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना। आज से तो मित्रो लोकिस समर भी शुरू हो गया है ना, तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना।

फन हंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतोने के लिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

Kala na jane uchi nich, kala na jane jat, sosa ji mantan di ji, humko apni aashirwaad. तमाम रेडियो फाहुन के सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार प्यार भरी अनाम सत श्री अकाल जी। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम, आज का देश और विदेश का समाचार सुनाना है हमारा काम, यही है हमारा मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम। चून से आम को पता चल चुका होगा कि हम आ गए हैं अपना देश और विदेश की समाचार लेकर।

दोस्तों हम तुरंत चाहते हैं अपना सूरीनाम की ओर। भैया आप लोग को पता है अब पाकिस्तान में या कहीं कोई और देश में या कोई फेस्ट रहे भाई, तो आपने जरूर यूट्यूब पे देखा होगा कि सबन बंदूक लेके लॉसेस खुद दागे हैं। हाँ, फॉर द फेस एंड दैट इज फॉर प्लसीर दून से मैं से, तो उस सबके पास बंदूक रहे तो लॉसेस खुद दागे और फेस तो हुए और नाचे है दत है बवे अंता लंद इस दत वेल मुख लग मा इन सूरीनाम इस दत नीद मैं से नी दार इस स्ट्रेंग फरबोद तो ऐसे भैया एगो फेस रहा ब्रॉन्स वेख ब्रोको पोंदो में और फेस वाला क्रूतु ओसो कोनो क्रूतु ओसो भैया लगे हुआ पे फेस बे क्रूतु ओसो तो हुआ करो जगह के नाम है क्रूतु ओसो हुआ फेस रहा। और ये बात हुए हैगा कि फेस में भैया रात के आदमी दागी से पिस्तौल स्टूल को दागी से भाए तो यहाँ पे बताए गए हैगा। एक बारे में सबन अनखिफ्त कर ऐसे सिपाही आए के पहुँचे ले ब्रॉन्स वेख के और जब गए ले हुआ ते को द्रियन ट्विन तक यारख एक आदमी के पकड़ी से जेकर पास पिस्तौल रहा। हाँ, और बोले है उफ थ्री डी कलर फिर वेत से और बताए गए सिपाही एक पकड़ी से गया और एक लगे पिस्तौल मिलल है लाइयो ही मिलल है एक पास एगो करिया ओतो फोर्थ रेप्टर रहा जो रेस्टिंग क्लास क्रीक में उजात रहा बस वह खरीद चल गया हुआ। और बोले हैगा द गगीफस फन फुरते ओकर बारे में डायरेक्ट सिपाही कंट्रोल कैसे क्लास क्रीक में और फोर्थ रेप्टर वास कंट्रोल पोस्ट अन स्टैंडर्ड हाउ द हुआ पे सेवन कंट्रोल पोस्ट पे के रोकी से और सिर्फ येर करी से कर पास इतना वापन पाई से। और बोले है द इंसिडेंट वेयर द फॉरफोर्स ओवर खतरा नतीलक में से और ये रमिया का बोले बोले हम अपन पिस्तौल वा धल्ले रहली अन आस बोरख कहीं पे या टाइज इज अंडर फॉर क्लार दैट इट अनखतरोफन फिर वापन फन हेमवास ओकर बा और फॉर क्लार करेगा कि आस अंदर पांथ मुके धल्ले रही टाइज अन हॉकन ते अबराब रुकी में हॉक होत रात ओके अंदर पांथ हम धल्ले रही के हम जीत अपन पिस्तौल वा पाया। अब बोले द फरदाख्त बकेंद दन आस दैट है टाइज सर फीस स्कोटन इन लुस हट गलोस नादन एन फीसगांगर हम दैट सो हैवन गफरा। De politie van de Bronswerk zet een onderzoek voor, maar hier na liggen he, kieu illegale raak, kieu legale pistool lavai. Lekin hoe na zomaar Suriname met deze Middellandse Oosten met Pakistan of kahin kahin die stuwen, ze van je face kere he, dan doen ze dat mensen, ha, is he. अब देखो भैया सूरीनाम के सिपाही जो है ना सबके बोली ला बड़ा स्लेक्ट रिपोर्टाज है उस सब कहेगा उस सबके भैया बड़ी बड़ी सिपाही के पकड़ा है। अब देखिए यहाँ फिन तीन सिपाही पकड़ा ने भैया। हाँ, स्कोतू भाई स्कोतू आदमी लोग के पेस्तक कर ले रहा जाने तो कि हमें इतना पैसा दे तो सखुआ हम दाब देवे तो सखुआ हम दाब दे चुकू ले भैया पैसा लेवे हैगा। तो यहाँ पे बोले हैगा तीन सिपाही के सबन पकड़ी रहेगा फॉर अफ पेरसिंग ये बातचीत हुए हैगा। एगो है पुलिसिया खैन एस्ट क्लास से कि दूसरा एगो ब्रिगाडियर है और दर्द एगो अस्पिरान सिपाही श्री नाम देश के है। और बोले हैगा स्ट्रफ रखलक अंडरसुक पहले ना अन आखिफ्त फन ऑटोमोबिलेस एगो अन गाड़ी चला आदमी गली सबके ऊपर नालिश करी से तब ले द स्वार सस्ताक बतरेफ के उसको तो इस क्लास के राव ब्रिगाडियर रहा 6 तारीख यूली के एक पकड़ी से फॉर अफपेरसिंग। तो अफपेरसिंग के पकड़ी से हुई पकड़ी से दोस्तों तो यहाँ बतावे गए हैगा कि अन बताए गए है उद्योग अनमिया के पेस्ट करी से तुई पुलिसिया दी इन बसित वास वा इलिखाल फेस फिर वा ओकर पास एगो इलिखाल पिस्तौल है जेन आंखिफ्तो करी से आ इस कौतून ओकर लगे इलिखाल पिस्तौल वा पकड़ ले से ले ले से और ओके बोली से जे तू हमें दुई एन हाफ दर्जन अमेरिकन डॉलर दी है तब बोले तोर सखवा हम दाब दे बोले कुछ ना हो अब ये रमिया के पैसे ना रहा तुई एन हाफ दर्जन तो ओके ना भरी से तो इस पिस्तौल वा ले ले से भैया सऊदन अखेंड फोकस आंखिफ
$2,500 ऐश करी से द मान हर द खाल्ट नीड में से उजोन के पास भी सोलवा रहा फिर वह परवा से वह बसलाख कली से गया स्कोटोर और स्कोटोर पिस्टोलन दोरो फिर से बेच दी से भाई फरमूदन दाते बसलाख नूमो वापस लातर इस दोर फरकोख द मान दे दारो आनखिफ्त करी पुलिसी विरो में अपि तीनों के पकड़ के बंद करी से गया ओपीसेट उपमार मिनिस्टर beslist over de verder verloop van de zaken te scoutelen via als hij te openlijk chukumange ke to etra paisa deed hem te sakwa daap de weer ab deko ego admi via ego oud sipahik pakri se 27-jarige aspirant agent ke servier kari se go auto chauffeur automobilist ke bole hem 400 srd de te kuch na bata is ke kunch bhai lam ke eke bhi 400 bhari se automobilist wa baki ramia bole na बोले तो हम जब आंखिफ्ता करे तो कि जाए के आंखिफ्ता करी से और एक के भी सीफ ने तुम तक यार के स्कोटू के पकड़ ली से तो जोन आदमी जोन सिपाही तो और कमरात है भैया जिके सोचिए हम का बोले हैं हम विश्वास करीला हमें फैला खैर करी वही तो के इसे भी चीज करी तो सिपाही पे कैसे विश्वास करी भैया हम ना बोले ला मौसी लोन की सब स्कोटू है मां साइड बहुत ढेर हुई गए सूरीनाम दी इसमें सिपाही लोन भाई जोन ये चीज करे अब देख एक आदमी का और बात है आज एगो गाड़ी जा है भैया और ब्रोफिस पे दुई मिला जा है तो दुई मिला ब्रोफिस पे बैठल उतुआ वाला अनमिया रुकल है और शुक्रवार के शुक्रवार सुफ्राइडा 24 के को रिसेंटली दी दी शुक्रवार के ब्रोफिस पे दुई मिला जा है और फोर वेरबेड 21 के को आदमी के नाम बा ब्रिंस लियोनार मर गए भैया 5 के उके लाठी से मारी से भैया और फरकेर में हैली से 7 फिर यूलवेटन दत है 100 तो अब एक स्कोटू खोजे है जो अनमिया लाठी से तो हुआ मचे निकल के मारी ब्रोफिस से वाके तो स्कोटू से बोले है बोले कि हम अब्बे ना आबे बोले हम जाएला पहले अपरे के वासी करवाबे तब आबे तो के मेल द करबे तो एक के कोई ई सिपाही बोले ना बोले हम तो के ना गो अब के कब तू वासी हुई है तब तू हमार लगी है बोले हम लोग आयला तो के लेवे तो एक के गेल खोजे तो एक के ना पाई से भैया ते बिहान बन अपन एडवोकेट लेके और जाए के मेल्ड करी सेगा द फरदाख्त वेर द अख्तर नीट आंगेट्रोफन और बोले हैगा एडवोकेट के लेके बिहान भर गेले वेल तो मेल्ड करी सेगा और बोले है बाय द फोरलेगिंग हियर द फरदाख्त टूगेगिवन दैट हे द ब्रोफिसर एंड द अदर पर्सन मेट अ फोरवेर्प स्लागन हियर टूगेब्रक ऑन द योहानस मुंगरास्ट्रैट तो फरकेर में भैया सब लाठी आठी लेक भी चले हैं अब फरकेर में भी तो कुछ बोलना पाइयो भैया नहीं ऐसन तैसन आदमी लाठी लेक आयो मारी बस मर जाइयो भाई और तू जाने हैगा फरकेर में भी कितना गड़बड़ है देखो दुई प्राणी क्यूबा के लड़ी से दोनों प्राणी भैया घर में वो लड़ाई भइल है इसलो खवेल के कि औरतियां निकार के कुछ चोक चीज से अरेमिया के भोग दी से भोग दे से वो रमिया के जाय के परल अकादमी सिकन है इसमें सिपाही जाय के पहुंचल है तो वो सोचे ऊपर फाल भइल हमदा तू जाने सरनामे बड़ी जोर ऊपर फाल हुए है अबे बता और तो सोचे ऊपर फाल भइल है तो जाय के पहुंचो में ब्लैक भइल हैगा कि औरतिया रमिया में झगड़ा भइल है तो औरतिया ओके भोग रही से औरतिया को तलक ली सेगा कि स्कूटून से बतियाई सिकेला हम तो क्यूबान रहा खैर फ्लैट की सिपाही पहुंचल है तो अनमिया का बोले है अनमिया बोले हम सखुआ बोले त्रक त्रक करेला बोले हम अपन पार्टनर के न मांगेला क्यों बन हुए बोले हम सखुआ त्रक त्रक करेला द मन अन दैट है हिंस तरफ रख लेकर फॉरवर्किंग तीखन से पार्टनर विंस तो बेचारा बहुत अच्छा आदमी देखा है औरतों के छोड़ी भूखी से या कुछ भूखी से और नाना मांगे को कर औरत पकड़ाई के बन हुए तो
ये बात है दोस्तों, आप लोग जानो है पालू का फोर्थ सीटर राम नंदलाल है। राम नंदलाल NDP में संगे हरदम काम करी से अपोही रमिया कृतिस बतिया है। बोले वे हेबन कफूल की ई रखे रिंग जुर्मा ए प्लास फॉर फॉरेट अख्तर रेट जा है। बोले है का प्रेसिडेंट हाथ बोले बलूफ कर ले रहा सीमोन। बोले कि एम सिस्टम वो हीला माल बदला। बोले मोकिंग का सिस्टम मा बोले हैगा। बोले फीस प्रेसिडेंट प्राक आन आन यू पासी ओग द पालू हाथ को होग द देश रखेरिंग फरांदरिंग सो बरेंगें। मा बोले कुछ ना होवे है रामदन लाल। बोले है अंदर फोर्सेटर है पालू के और बोले तेफंस ने खवीसन देना लिदबा। बोले इन प्रोग्राम सिनवेब में बोली से और रामदलाल स्टीफ कृतिक लेफर कर इसे रखेरिंग्स बलाइट के ऊपर पार्लियामेंट के और बोले हैगा कि DNA का बोले जो DNA का नेशनल असेंबली है बोले फरखादत ओवर बखरूतिंगन kunnen we zeggen dat we qua deskundigheid stappen achteruit aan het maken zijn. Bolle hega, John Samepe is op staatsbegroting gebaren betaald, bolle in plaats van vooruit is op achteruit, ja, he. Deskundigheid, ke bolle tjalaken na, he, bolle na janu sep kuntje kreeg, bolle ons dan dat er verandering is beloofd, zien we dat de DNA aan het terugvallen is in een oude manier van kijken hoe we dit land zouden moeten besturen. Ik erbare mee, paluka onder voorstel राम नंदलाल बोले है और बतावे हैगा कि het volk stem continu anders om vergadering te brengen, maar uiteindelijk blijkt dat ze voor de gek zijn gehouden volk. Kritiek hega bole begrotingsbehandeling me. Iman bole hega ondervoorzitter van de PALU aur altijd de NDP ke aur upar de naam me bhi baithel hai. Een belangrijke punt van de kritiek richtte zich op de wijze dat de Nationale Assemblée Ram Nandelaal en parlement volgens hem onvoldoende diepgaande en technische onderbouw te werk gaan. Begroting en tekort in discussie over kritiek op transparantie en verandering oproept tot politieke consequenties. Oriezebaan Nandelaal, bolehe, hamare, piare, janta. तो अब देखा जाए दोस्तों और क्या हो रहा है भैया। फिन रूफ ऊपर फाल भैले 2000 euro 17,000 SRD और जाए के ई भैले कैनेडी वेख में और ऊपर सो मारना जाए के क्वालिफिजेट एरफारिन चोर लोन है डांकू लोन है जाए के लूटी से सनिचर के भैया 8 बजे रात के और अतवार के 5 बजे हैं ओमस्ट्रिक 20 यूर और सोंदा ओमस्ट्रिक 5 यूर के बीच में भैल हैं और एक बारे में सिपाही ओंडर सुख करे हैं और चोरी भैले भैया उतरा पैसा ऊपर से यहाँ बताए गए हैं ऊपर से गए या खबेर भी चल गए हैं बे इन बराक में से तो ये सब बात है भैया। बड़ी मछली मरल है सूरीनाम के रीमा में सरमाका में और ब्रोंसवेग बेनलांड से आयल है ब्रोन रिफीरन से मछली मरमर सब उतरान है गंधात है सूरीनाम देश में भाई। तो बताए गए हैगा कि एकर बारे में जो सूरीनाम सबसे खुरुस्तल लंग तरवीरल थे बैना भैया जहाँ पे बोसन है बियोडिफिजिटाइट है ब्रोन वाटर है ब्रोन रिफीरन है और बोले लीफस आदर है लंग स्ट्रोमन खून है बोमन है और बोले इतना मोई खसम देश में इतना मछली मरे है फेस स्टेरफ तेन सरमा का रिफीर। बोले हैगा ही फील इमोशंस लॉस कलाते मैं से लॉस कमा जनता जो ने बहुत सोचे है एकर बारे में और बताए गए हैं maar om hun voedsel, hoe ze hebben drinkwater, cultuur, itra machri maral, bole kaab heil is op me, te bataye gaye hega, de een noem
कायानाइ दे अंदर क्विक भैया जैसे सोना सबन खोजे क्विक उस सम उरीबा में सबन लूज करी वार्दन उतना मछली मरल है भाई बोले ये इस दारुम इस खुद दत वे बोले एनामा किस फॉर फरफेलेंड ऑन द सुख के बारे में अभी के सबन ऑन द सुख करी तो लो जानो कितना ढेर क्विक भी स्कोतू के द्वारी पसे चोरी भैले एकर बारे में कभी ना पता मिलल कि कोई पकड़ान है कि न पकड़ान है। तो दोस्तों terwijl de discussie zich nu vooral richt op onderzoek van deze ene vissterfte dreigt een veel grotere werkelijkheid buiten beeld te raken ki hum log ke jo riba hai barisan se bol under druk ba ali sharma ka refill mein marwaine refill lava tapan honi ka panama mein water weekend worden al jaren lang beïnvloed door intensieve godwinning sona jon khoda hai jungle kata hai sab hum log ke desh ke barbaad हुए भैया क्विक से सोना से और बोले द हाउथ कोर्स लेवर सेकर इनकमस्टन ऑप सोनवा मिले है इनकमस्ट आवे है बाकी बोगदम जो ने एरस्ट हम लोग के फरफेल हुए है हाउथ का बोले बॉस बस्ताद नीत अलीन एट बोमन ओक द बोगदम लेफ्ट बोले वाने द यार लंग वर्ड ओपन गग्राफ एंड फरफेल राक uiteindelijk hele ecosysteem angasa water vis en dieren uiteindelijk ook de mens mensen तो इतना इतना सबन सोना खातिन पैसा खात हम लोग के मिलियों फरफेल हुए है वारदूर इतना मछली पानी मछली सब मरे है और बताए गए है कि हम लोग के जंगल जो है सब फरफेल हुए है हमारी जनता। तो हम जाए भैया रूसलैंड की ओर हम जाई हैं। तो 6 तारीख जुली के 9:30 बजे के न्यूज से ओली रफीनाद रे जो रूसलैंड में बा उक्रेन ड्रोन से फिन दागी से भैया ड्रोन से फिन दागी से बहुत बड़का स्काद भैले ड्रोन आनखत्रोफन एन फन दी ग्रोस्ट रफीनाद रही है भी भैया और बताई गई है कि इतना बसकादक भैले उधर यानी कि हुआ के जनता के मारे है और इस हुआ के रफीनाद रही दागे है कि इतना होगी कि देश में आ तेल ना रहेगी भैया अनमिलों रही में खड़ा हुई तेल कीने हैं। यह बताए गए हैगा ब्रांस्टोफ क्रिसिस इन रूसलैंड उक्रेन से ड्रोन अनफालन सोर्खन फॉर ब्रांस्टोफ क्रिसिस इन रूसलैंड। तो ऐसे बातचीत है हमारी जनता तेल के बारे में रूसलैंड में इतना हुआ पे प्रॉब्लम है। तो हमारी जनता एगो चिनुआ है अमतनार है ओके दो तरफ मिले चीना देश में दो तरफ वो चीनीस अमतनार जो 285 मिलियन यूरो इन सख्स तक चोरी करके पर जेबीम धरे रहा भैया एगो अमतनार है खमीन तक के करप्सी होके बहुत जबर करी से और बोले फर और दिल फर वी का करप्सी नीखन सस्तक यार एगो अमतनार है फिंचिनारे से अपरे के इतरा फर्रेक कले रफिया मख्त मिसब्रेक से वित वास कर इतरा फर जैस्टर कर ले रहा देर तक यार ओम खरीकन है सो ओवर देर प्रियूर फन देर तक यार कर ले रहा भैया सबन जोरिस 285 मिलियन यूरो हैवन आनखनोमन उत्तर करप्सी उले से फनाफ यार 1993 तो 2023 और ओकर फिंसी रहा वर्कसाम इन द ओस्टलिक स्टार नायिंग में खदीरन दे देसे प्रोजेक्ट बपाले बदरेफ को कॉन्ट्रैक्ट दे वत रहा चुकु लेले कॉन्ट्रैक्ट दे वत रहा और बोले ग्रोंड इन फिनांसियरिंग एंड हैवन फॉरस्काफ्ट इन रॉयल फॉर गेल्ड एंड ड्यूर स्पिलन एकर बारे में चिनवा के
Medialik is er. Tegen 69-jarige man heeft volgens staatskrant China Daily de doodstraf gekregen vanwege de extreme hoge waarde van de steekpenningen, bullen de bijzondere ernstige omstandigheden en de enorme schade die het land heeft toegebracht. Mensen, de Chinoandese met de doodstraf hebben de rechtbank heeft opdracht gegeven tot de inbeslagname van alle persoonlijke eigendommen van de man. President Xi Jinping begon na zijn aantreden in 2013 grote anticorruptiecampagne. Veel onderzoeken eindigen met disciplinaire maatregelen. De Suriname kahina hoise ke hema nani. Suriname is kotulun steekpenning lewe he. Aurona kali skotulun lewe. Bade bade loog lewe he. En dan gaan ze nog vrijlopen. Vrijlopen mensen. Aanje itra steekpenning se blese bakke koike na sunio ke lanti koike go baisi giri baslag kari se bhaiya to sab fraya hande hai jab mange korupsi hai jab mange hai jab mange chori kare hai sab hove hai hamari janta. अब देखो बेल्जियम डोनाल्ड ट्रंप के देश अमेरिका के जीत गए फिर इनसे भैया फुटबॉल में. और जो फुटबॉलर्स बेल्जियम के हैं अब अमेरिका अस्काकल हो गए हैं. वो सब नाचे हैं फेल पे जैसे ट्रंप नाचे भैया यहां बताए गए. बेल्जियम इज इन एक्सैक्ट इन एक्टास एंड ही तो बेल्जियम इज ना द इन फियर op de Amerikaanse achtste finale van de WK voetbal met geel he. Op het eigen België Nazi se bhaiya hua sab spelers voetbal fel ke Amerika mein jaise Trump Nazi he. To bal ke bare mein bahut hai batayenge dosto. Aur ya batai hitte set landbo onder druk, maar Nederlandse oogst houdt voorlopig stand mensen. हेते भैया बहुत हेते हैं तो जो सौदा पानी यहां लगे हैं इन फ्रांकरिक इज स्कैंडल अलसिखबार. नीदरलैंड के आलू प्याज तरव लेकिन द वारम तो न खुद दोस्तान मर द टूकोम्स इज ऑन जी कर मेंस. तो ये बात है हमारी जनता. आप लोग को एक गीत हम सुनाते हैं.

तो दोस्तों एक दो समाचार आपको हम और सुनाएंगे तो अपना प्रोग्राम को हम खत्म कर, तो हम चलते हैं एक दो समाचार और आपको हम सुना दे भैया। सूरीनाम देश की ओर हम फिर जाते हैं और वहां पे भैया सबन जबरदस्त अक्सी करी से गा क्रिमिनलिटेट के बारे में सिपाही और गैल हैगा इस सब काम बोले हैं ढेर सिपाही गैल अक्सी 3 जुली के शुक्रवार के मेरे लोकांशी पर हमारी बो में सब गैले हैं लोकांशी राम गुलाम में गैल है चोरन चपाटी के मिस ब्रोय के बके कोई के ना पाई भैया दो हॉट सॉक्ट फरदाख्तन से तेज से अक्सी नित आंखत्रोफन तो ये चीज भैले सूरीनाम देश में असम बिना बेप के बोले बखरोटिंग स्टॉक एंड इन्फ्लेशन टोनन अंदर द इकोनॉमी नोक आंटे क्वेट्सबार इस ये बात बोले असम बिना माक्रो इकोनॉमी से सिचुएशन ब्लेव सॉर्कलेट फोकस ऑफ होगर स्टास इनकम्स्टेन मार इफेंसेंसी खफरा फर्स्टेरखन फन बलगराई के इंस्टिट्यूट के बारे में और जनता ही बताए गए हैं और सब ताशे हुए तेल सूर के भाई तो जाने हैं का समा खास वेशल नेटवर्क लगाई से तो यहां बतावे हैं का दर्द सब ताशे 4 रोज में भैल है तेल सूर सीट्स का द अंद खास वेशल नेटवर्क अपलोपन बोले हैं फंडालिस्म भैया सूरीनाम देश में तेल सूर दुलवेट को वर्दन फंडालिस्म इंदिरा गांधी वैक में भैल है लिफोर्नो बीक है इसमें भैल है टेलीकम्युनिकेशन जींस टेलीसी स्प्रेक फान सौरख वेकन बोले $3,000 के स्काल भाई उस सबके खास वे इस काबल के बारे में और बतावे वे दून वत इस ओंस मख्त ले बोले है सब ताचे सब कलने माटे बोले है इन सामन वेर के में आउतरेन बफुक थे अक्सी प्लान टेलीसी रूबर्कस ऑफ अलर्ट से फरदाख्त अखवितेक इन ओमकेविंग फान द टेलीकॉम फोर्सिटिंगन ये बात है भैया इस सब का बलवा काट दे हुए है दौर के करीब काबल बताई के नीत अन $1,000 अन हेस्टेल कोस्टर मार ओक ऑन खमाक फॉर क्लांट एंड वर्ट्रैकिंग फॉर ऑन्टविकलिंग फॉर ऑन्स लैंड द इंफ्रास्ट्रक्चर इज नीत अलीन इन्वेस्टिंग फॉर टेलीसूर तो इस सब का बलवा खून काट दे हुए भैया तो कौन चीज तो बराई करियो कुछ बराई ना कर पाइयो तो ये बात है अब देखो एगो 25 का आम्स्टरडम के आदमी vorige week augustus में nationale monument op het dampenklaat ऊपर लिखकर अगेन इज नाउ ऊपर कुछ फेरफीस लिख दे ओके सिपाही पकड़ी से और फॉर द रेक्टर लेगे ओके चाहेंगे €895 कॉस्ट भरे के फेरफिया निकारे के फरवेदर को

मोहब्बत और मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत जो है वो बहुत बड़ा काम का चीज़ है और कभी कभी मोहब्बत में बहुत बहुत गलतियाँ हो जाती है दोस्तों। और गलतियाँ तो हमारे लोग का भी एक हिस्सा है हमारे दोस्तों। तो आज हम आप लोग को कुछ प्यार भरी शायरी सुनाएंगे, कुछ गाना हम सुनाएंगे एक घंटे के लिए, और उसके बाद तो हमारा प्रोग्राम को और आगे को हम बढ़ाएंगे। कहते हैं तेरे ख्याल में जब बेख्याल होता हूँ, तेरे ख्याल में मैं जब बेख्याल होता हूँ, जरा सा देर को ही सही बेमिसाल होता हूँ। थोड़ा से देर होइगे बाकी फिर भी बेमिसाल होता हूँ। तो हम चलते हैं दोस्तों। मुझे नींद न आए, आपको आते हैं, आपको क्या आते हैं, अभी क्या आएंगे दोस्तों, लेकिन आएंगे जरूर। हम चलते हैं एक पुराना नंबर की ओर।

और मुझे नींद न आए, और मुझे नींद न आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का ये फिल्म दिल मूवी का नाम है दोस्तों। अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण ने ये गाना को गाया है। और हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, और यहाँ से हम अपना प्रोग्राम को और आगे को चलाएंगे और सुनाएंगे, और कुछ शायरी एक दो बीच बीच में हम कर देंगे। और हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों, हम चलते हैं और ये दर्द के बात है। और दर्द में क्या होता है दोस्तों, दर्द में आंस गिर जाता है, दिल रोई पड़ता है, दिल धड़क जाता है। और जब दिल धड़क जाता है तो क्या होता है, आप खुद ही सुनिए।

और न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया, और जो अगर छू लिया तो उसके आगे आपको क्या होता है दोस्तों, ये मैं क्या करूं, आप तो खुद ही जानते हैं। और कहते हैं होठों पर मोहब्बत की फसाना नहीं आती, होठों पर मोहब्बत की फसाना नहीं आती, साहिल पर समंदर की खजाना नहीं आती। और आगे को हम चलते हैं दोस्तों कि कहते हैं इश्क मोहब्बत दीवानी ये बस लफ्ज ही थे, जब तू मिला तब इन लफ्जों को मैंने मिले। और दोस्तों ऐसे ऐसे कुछ शेर आज आप लोग को हम जरूर सुनाएंगे, और हमें यही आशा है कि आपको जरूर अच्छा लगेंगे। कहते हैं फूल खिलते हैं बहारों का शमा होता है, फूल खिलते हैं बहारों का शमा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवान होता है। दिल की बातों को होठों से नहीं कहते, ये फहसाना तो निगाहों से बयान होता है। यस मेंस रोगेर, फूल खिलते हैं बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में तो प्यार जवान होता है। दिल के बातों का होठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयान होता है दोस्तों। और इस बयान में हम आप लोग के चलते हैं सुबह से लेकर क्या होता है, खाना तो नहीं होता है दोस्तों, और कुछ होता है, वो क्या होता है आप सुनिए।

हम चाहते हैं सिर्फ प्यार करो दोस्तों, और हम अपना प्रोग्राम को और आगे लेकर चलते हैं। हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों की कहते हैं, प्यार करने वालों कहते हैं कि कब तक वो मेरे होने से इनकार करेगी, कि कब तक वो मेरे होने से इनकार करेगी, खुद तो करके वो एक दिन मुझसे प्यार करेगी। प्यार की आग में हम उसे उसको इतना जलाएंगे कि सारी दिन हमसे प्यार ही करते रहेंगे। यस मेंस, आज हम प्यार के मूड में हैं, इसीलिए प्यार के कुछ शायरी हो जाए। और कहते हैं कि एक पल मैं जो आकर गुजर जाऊं, एक पल में जाकर गुजर जाए, ये हवा का वो झोंका है और कुछ नहीं। प्यार कहते हैं दुनिया जिसे, एक रंगीन धोखा है और कुछ नहीं दोस्तों। तो ये सब बात शायरी में लोग लिख के धर दिया है, और आज अपनी जिंदगी के कुछ बातें हम आप लोग को सुनाएंगे, और वो क्या है दोस्तों, आओ मिलकर

मेरे जिंदगी में जब आप आए हो तो बहार बन के आए हो। और फिल्म राजा हिंदुस्तानी का ये गाना है दोस्तों जो आपके हमने सुनाया है। और हम चलते हैं और आगे को दोस्तों। मुझे उस जगह से भी मोहब्बत हो जाती है, आप तो जानते हैं जब लोग कभी मस्त हो जाते हैं तो वो जगह नहीं छोड़ता है, जगर उसको कुछ सोचना है तो जाकर वहाँ पर बैठ जाता है। और बैठ के और जैसे दोस्तों जब हम कुछ लिखते हैं तो मुझे वो स्पेशल जगह होता है जहाँ पर हम बैठ के कुछ लिखते हैं। ऐसे ऐसे कितने लोग हैं जब जो प्यार के मूड में होता है तो वही जगह वो खोजता है। और कहते हैं मुझे उस जगह से भी मोहब्बत हो जाती है जहां बैठकर एक बार तुम्हें सोच लेता हूं। जी हां दोस्तों। और कहते हैं इस दुनिया में लाखों लोग रहते हैं, इस दुनिया में लाखों लोग रहते हैं, कोई हंसता है दोस्तों तो कोई रोता है, पर सबसे सुखी वो होता है जो शाम को दुई बोरल मार के सोता है। एक शायर हुई के भैया ये हंसते हुए, सिर्फ प्यार भरे नहीं लेकिन हंसते हुए, नजरे करम मुझ पर इतना न कर कि तेरी मोहब्बत के लिए बागी हो जाऊं। नजरे करम मुझे पर इतना न कर, मुझे पर इतना न कर कि तेरी मोहब्बत के लिए बागी हो जाऊं। मुझे इतना न पिला इश्क के जाम कि मैं इसके जहर में आधी हो जाऊं। दोस्तों हम चलते हैं कि अगर आपके दिल ने किसी चुरा लिया है तो ये गाना आपको जरूर सुनना चाहिए।

बसी चुरा लिया है, और चुरा लिया है क्या भैया, दिल के बात होता है, दिल के बात होता है हमारे प्यारे प्यारे और सुनने वालों। और दिल बेसमैन से हम चलते हैं एक रीमिक्स गाना की ओर, यानी कि रीमिक्स भी बजाना चाहिए और तुम दिल के धड़कनों में रहते हो, उस गाना की ओर जाते हैं हम दोस्तों। अभी हम वापस आ जाएंगे।

बस तुम दिल की धड़कन में और रहते हो रहते हैं। अलका का ये गाना है और इस फिल्म में काम किया है अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी और सुनील शेट्टी ने इस फिल्म में काम किया है हमारे दोस्तों। और हमारे प्यारे दोस्तों, ये गाना है जब बारिश आता है तो ये गाना सुनने में और अच्छा लगता है। हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों, फिल्म का नाम है सूर्यवंशी, अक्षय कुमार कैटरीना कैफ के, और इस गाना में, इस फिल्म में यानी गाना को गाया है उदित और अलका ने। आओ मिलकर सुना जाए, तो अभी हम वापस आ जाएंगे।

और दोस्तों टिप टिप करता और क्या करता है टिप टिप भैया, बारिश होता है टिप टिप, और जब बारिश होता है तो क्या करना चाहिए दोस्तों, आपके तो खुद मालूम होगा। हम चलते हैं और आगे को, और बचना ऐ हसीनों, बचना किससे है दोस्तों, उससे बचना है जो दिल के लुटेरा होता है उससे बचना।

कर दे थोड़ा प्यार और थोड़ा प्यार न करियो तो दोनों मर जाएंगे। ये काम ना करना भैया, ना करना, मरने वाला बात क्यों करते हैं, जीने वाला काम करो। जैसे किताबों बहुत है, किताबों बहुत है, शाहरुख खान और शिल्पा कहते हैं, आओ सुना जाए क्या कहते हैं।

किताबों में बहुत से चीज लिखा है दोस्तों, लेकिन सिर्फ किताबों में वही नहीं लिखा है। हाँ, आजकल इंटरनेट पे लोग पढ़ते हैं तो, और उस पे नहीं मिलेगा तो टिकटॉक पे आपको मिल जाएंगे, कारण कि हमारा सोशल मीडिया जो है आज आसमान छू लिया दोस्तों। जवान से बच्चे से लेकर और बूढ़े लोग 24 घंटा हुई टेलीफोन में और फिर सोशल मीडिया पे सब रक्त रहते हैं, और तो कोई टिकटॉक बनाते हैं, तो कोई फेसबुक बनाते हैं, तो कोई इंस्टाग्राम पे जाते, तो कोई फोटोशॉप करते हैं, तो कोई क्या क्या करते भैया। लेकिन सब उस सब को देखो तो अपना आंख जो है अपने टेलीफोन में लगाए रहते हैं, तो कहते हैं कभी कभी दिल भी किसी चुरा लेता है, और जब दिल चुरा लेता है तो आपको क्या करना चाहिए। हम यहां से बताते हैं कि अगर आपके दिल गुम हो गया तो आपको कैसे मालूम होगा कि कैसे गुम हो गया है, और यहां से

जो दिल को लेकिन नजर नहीं चुराना मेरे सनम। तो ये गीत आप लोग को एक ओल्ड सॉन्ग हमने सुना दिया है और हम अपना यानी अगला गीत की ओर जाते हैं। और कभी कभी लोग भूल जाते हैं सपने साजन की में अलका याग्निक और मुकुल अग्रवाल कहते हैं कि कभी कभी भूल जाते हैं लोग। और क्या भूल जाते हैं दोस्तों? यादें भूल जाते हैं।

और मैं भी कभी भूला है और कभी याद करते हैं हमारे जनता, हमारे लिस्टनर्स, हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों, और याद तो करना चाहिए कारण की रेडियो फाउन के माध्यम से इस प्रोग्राम को चलती है, जो हमारा प्रोग्राम दे आप भी प्लस रेडियो पे आप सुन सकते हैं कनाल 5B पे फ्रिक्वेंसी 106.4 मेगाहर्ट्ज पर, और नहीं कनाल 8 पे भी आप लोग सुन सकते हैं हमारा प्रोग्राम जो 24 घंटा चलते हैं। हर एक काम के लिए आप हमें तार कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर जो यहाँ के ही कांतोर का है, अमिस्त्रासी का है, 07-365-2247, और नहीं हमारा स्टूडियो नंबर है 07-36-2207 पर आप लोग हर जानकारी के लिए तार कर सकते हैं। और हम चलते हैं शैलेंद्र सिंह और कंचन की ओर। फिल्म के नाम है रफू चक्कड़ की ओर हम आओ मिलकर इस गीत को सुना जाए।

से प्यार करते हैं तो अपना आवास उसके साथ, उसके आवास में मिलाना चाहिए हमारे दोस्तों। और जब आवास मिल गया तो उसको भुलाना भी नहीं चाहिए। ये कहते हैं द टाइगर ऑफ इंडिया कुमार शानू और अन्नू अग्रवाल, ये कहते हैं।

और आपको हमारा यहाँ से ही है कहते हैं कि दुनिया कभी नहीं भुलाना, कभी कभी चाहत में धोखा हो जाते हैं तो वो दुनिया ही आपके काम आते हैं। हम कल चाहते हैं कि आम की कागज कोरा होगा तो उसका नाम इस पर आपको लिखना चाहिए।

और हमारा दिल भी कोरा कागज का है, और अगर आपको भी होगा तो किसी के नाम उस पे जरूर लिख देना। उसके बाद हम जाते हैं, जो कोई ओढ़नी ओढ़ता तो बोले हमार नानी आजी ओढ़े, लेकिन यहाँ ओढ़नी कुछ और बातचीत हो है, जो अलका याग्नि का उदित नारायण आपको सुनाते हैं हमारी यारो।

और ओढ़नी ओढ़ के नचियो तो और मोई लगेगा नानी, यही बतिया हमारा जी नानी बोले है। और हम जाते हैं गीत के ओर, हवाओं ने कहा और क्या क्या ने कहा, आओ मिलकर सुना जाए।

तुमको देखा तो ये ख्याल आया, आप लोग को हम यानी कि आंशी कुछ गजल सॉन्ग भी सुनाएंगे कि कहते हैं खुशियों को खुशियां तो कब से रूठ गई है, खुशियां तो कब से रूठ गई है,

आज गमों को भी किसी के नजर लग जाए, किसी को नजर लग जाए, बिल्कुल तुम सा और तुम्हारा, बिल्कुल तुम सा और तुम्हारा लगता हूँ, कभी कभी मैं खुद प्यार लगता हूँ। और हम चलते हैं अगला गजल की ओर। ये और बात है, गजल का गीत अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास का ये सॉन्ग है।

ये और बात है, और इस गीत को गाया है अनुराधा पौडवाल मनहर उदास का। ये गाया हुआ गजल सॉन्ग है, ये और बात है, ये और बात है। कौ कहते हैं मुझे देखकर उसने फेर लिया चेहरा, मुझे देखकर उसने फेर लिया चेहरा, तसल्ली हुई चलो पहचानते तो है, अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएंगे जरूर, अगर तलाश करूं तो कोई मिल ही जाएंगे जरूर, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको, कौन मुझको चाहेंगे। हम चलते हैं अगला गजल की ओर। ये गजल है ना, गीत है ना कोई मूवी, अलग अलग का किशोर जी का ये गाया हुआ सॉन्ग है।

और किसी किसी बेबसी ने और मारा। दोस्तों हम और आगे को बढ़ते हैं कि कहते हैं तुझे तू मिल गई होंगी नई साथी, लेकिन तुझे तो मिल गई होगी नई साथी, लेकिन मुझे हर मोड़ पर तेरी कमी महसूस होती है। मुझे हर मोड़ पर तेरी कमी महसूस होती है। मैं अपनी राह में दीवार बनकर बैठा हूँ, मैं अपनी राह में दीवार बनकर बैठा हूँ। अगर वो आया तो किस रास्ते से आएंगे? तो हम चलते हैं तो गजल सॉन्ग।

0: और वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। और कहते हैं बहुत मान था जिन पर, बहुत मान था जिन पर, बड़ी बेमान निकला वो। उसने आंसू भी मेरे देखते थे। उसने फिर भी कहा मुझसे जाना है। तो प्यार भरी शायर भी आप लोग को हम सुनाते हैं दोस्तों, गजल के साथ। तुम्हारी साथ ये मौसम फरिश्ते तेरे, तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है। तुम्हारी बात ये मौसम बहुत सतुखा है, सूख गया है। तो हम चलते हैं जगदीप सिंह का ये सॉन्ग है।
1: आईना देख के बोले ये संवरने वाले, अब तो बेमौत मरेंगे मेरे मरने वाले।

और जगदीप सिंह, आशा भोसले और करोड़ों का दिल चुराने वाली नैतिकी लता जी का ये गया हुआ जोंग था दोस्तों। तेज हवा ने मुझसे पूछा, रथ पे क्या लिखते रहते हो। काश कोई हमसे भी पूछे, रात गई तक क्यों जगते हो। तो दोस्तों ये सब प्यार भरी शायरी आप लोग को हम सुनाते हैं कि कहते हैं वक्त बदलने से कहां दिल बदलते हैं। आपसे मोहब्बत थी, आपसे और मोहब्बत है। तो ये सब गीतों का सॉन्ग आज गजल आप लोग को हम और सुनाते हैं। आओ मिलकर एक और गजल सुना जाए।

0: होठों से झूलो तुम और मेरा गीत अमरी कर दो। मैं दरिया से भी डरता हूँ, मैं दरिया से भी डरता हूँ, तुम दरिया से भी गहरे हो। कौन सी बात है तुम में ऐसी, इतना अच्छे क्यों तुम लगते हो। तो दोस्तों आज कुछ प्यार भरी यानी कि गजल सॉन्ग्स आप लोग को हम सुनाते हैं कि कहते हैं शायर खुशी का दौर, शायर खुशी का दौर भी आएगा एक दिन, गम भी तो मिल गया, गम भी तो मिल गए थे तमन्ना क्या बेगैर। तो एक और सॉन्ग सुना जाए।
1: जहर खा के मरना था इतना नहीं किया, हमने तुम्हारे प्यार में क्या क्या नहीं किया, तुमने वफाएं बेच के खुशियां खरीद ली,

क्या क्या होता है। ये गजल आप लोग को सुनाते हैं कि शायद खुशी का दौर भी आएगा एक दिन, गम भी तो मिल जाएंगी, तमन्ना क्या बगैर अपनी शहर के सब लोग से मेरे खातिर क्यों उछालते हो, कहने को रह गया हो तो दिल में फिर भी कितना दूर कह दो ये भी। और हम चलते हैं और एक सॉन्ग की ओर, और वो गजल का सॉन्ग है।

फन हम हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ये कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतों के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 7 8 फाहून हिंदुस्तानी रा

फन हंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतो निकलिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक सेफ नफेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

समय बताने वाले तो बहुत हैं, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम हैं। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं फिर आप सबके लिए प्रोग्राम लेकर आ गई हूँ, जिसका नाम है स्वप्न विज्ञान, यानी सपने। सपने तो हम सबको ज़रूर आते हैं, कभी अच्छे सपने तो कभी बुरे सपने। अच्छे सपनों में हम खुश होते हैं, बुरे सपनों में हम डर जाते हैं। सपने भी बहुत प्रकार के होते हैं सुनने वालों। आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि कुछ पूर्वाभासी तथा प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्वप्न कि जिन लोगों को सपने आए उसका उनको पूर्वाभ्यास पहले से पता चल गया था और उनके सपने इतने ऐतिहासिक बन गए कि दुनिया भर में मशहूर हो गए। ऐसे ख्वाब यानी सपने उन्हीं व्यक्तियों को आते हैं जिनका जीवन कुछ आध्यात्मिक रहा हो अथवा जिनमें सत्व गुण की प्रधानता रही हो। इनका समाधान फ्रायड के सिद्धांतों से कदापि नहीं हो सकता। उन स्वप्नों में बड़ी विचित्रता होती है जिनके द्वारा बहुत से व्यक्तियों को भावी घटनाओं का पूर्व ज्ञान हो चुका है तथा आज भी हो रहा है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कम से कम एक दो बार ही ऐसे प्रसंग अवश्य आते हैं कि उसके सपने सच होते हैं, जिसके कुछ ही उदाहरण दिए जा रहे हैं। सुनने वालों, ऐसे बहुत कम व्यक्ति हैं कि जिनको सपने आने से पहले ही उसका पता चल जाए कि सपने क्यों आएगा और सपने में क्या क्या चीज़ें उनको दिखाई देंगी।

महाराज हरिश्चंद्र का स्वप्न। भारत के बहुत बड़े राजा हुए हैं जिनका नाम हरिश्चंद्र था और वो सच के देवता कहलाते थे। सुनने वालों, उन्होंने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला। महाराजा हरिश्चंद्र ने सपने में ही महर्षि विश्वामित्र को अपना संपूर्ण साम्राज्य दान कर दिया था और अगले ही दिन उन्होंने वास्तव में अपना राज्य त्याग दिया।

सुनने वालों, महाराजा हरिश्चंद्र जी को ये सपना आया कि इन्होंने अब विश्वामित्र जी को सारा राज्य दान कर दिया और उन्होंने अगले दिन वही सच कर दिखाया और अपना सारा राज्य दान में दे दिया और उसे त्याग दिया। अभिनेता चंद्र मोहन का रेस का घोड़ा। एक प्रसिद्ध अभिनेता स्वर्गीय चंद्र मोहन का घोड़ा रेस में दौड़ने वाला था, परंतु रात को ही चंद्र मोहन को स्वप्न आया कि उनका घोड़ा दौड़ते दौड़ते खड्डे में गिर कर मर गया है और सचमुच उनका घोड़ा ठीक उसी स्थान पर मर गया जहां उन्होंने स्वप्न देखा था। सुनने वालों, अब हम आगे बढ़ते हैं। बाइबल में बुद्धिमान का स्वप्न। बाइबल में बालक यीशु ने जन्म पर उन्हें देखने आ रहे बुद्धिमान लोगों में से एक को सपने में हेरोड की तरफ ना जाने का निर्देश मिलता है और वह दूसरे रास्ते से अपने देश लौट जाते हैं। जोसेफ के सपने में एक देवदूत उसे बच्चे और पत्नी के साथ मिस भाग जाने का निर्देश देते हैं। इन स्वप्नों के कारण यीशु के प्राणों की रक्षा हो सकी।

हिल प्रिक तथा प्राचीन शिलालेख। प्रोफेसर हिल प्रिक ने एक प्राचीन शिलालेख का संपूर्ण एवं स्पष्ट उत्तर स्वप्न में ही एक बेबीलोन के गाइडर से प्राप्त किया था।

वासुदेव का स्वप्न। मथुरा के कारावास से भगवान श्री कृष्ण को बचाकर नंदगांव ब्रिज में पहुंचाने में सपनों का योगदान कुछ कम ना था। उसी रात माया रूपनी देवी वासुदेव के स्वप्न में आकर उन्हें ऐसा करने का आदेश ना देती तो सत्यवादी वासुदेव शायद ऐसा कभी नहीं करते।

लेखकों की रचनाओं की प्रेरणा। रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के कई गीतों के भाव स्वप्न में ही प्राप्त हुए थे और बाण भट्ट की प्रसिद्ध पुस्तक कादंबरी भी उनके स्वप्न की ही देन है। सुनने वालों, आप सब जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर बहुत बड़े कवि लेखक हुए हैं जो बंगाल के थे। तो उनको जितने भी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी कादंबरी, और उनका उन्हें ज्ञान स्वप्न में ही पहले हो गया था।

जूलियस सीजर की पत्नी का स्वप्न। शेक्सपियर ने अपने नाटक जूलियस सीजर में एक स्वप्न का जिक्र किया है। रोमान साम्राज्य के ऐतिहासिक लेखक प्लूटक के अनुसार सीजर की पत्नी कानिलिया ने एक रात स्वप्न देखा कि उसके पति सीजर की हत्या हो गई है तथा विरोधियों का षड्यंत्र सफल हो गया है। अगले दिन उसने अपने पति से अनुरोध किया कि आज वह दरबार ना जाएं। उसी दिन दरबार में उनकी हत्या हो गई।

आज मैं आपको अलग अलग लोगों के वृत्तांत सपनों में सुना रही हूँ, जिनको सपने आए और वह हकीकत में वो सच हुए। अब हम आगे चलते हैं सुनने वालों। JW डने का स्वप्न। JW डने ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में अपने एक स्वप्न का वर्णन किया है। वह एक बार स्वप्न में एक ऊंची पहाड़ी पर खड़ा था, जो एक द्वीप था और जो ज्वालामुखी के खतरे में पड़ने वाला था, क्योंकि उसकी दरारों से भाप उफन कर निकल रहे थे। उसके मन में वहाँ के 4000 निवासियों को बचाने की लालसा जागृत हुई। उसने उसकी यथार्थ संभव चेष्टा की और जितनों को बचाया जा सकता था उसने बचाया। कुछ ही दिनों बाद डने ने डेली टेलीग्राफ नामक पत्रिका में माउंट पीले ज्वालामुखी के विस्फोट की चर्चा पड़ी, जिसमें पश्चिम द्वीप समूह में मार्टिनी के द्वीप के सेंट पियर नगर में 40,000 व्यक्तियों को उनकी प्राण रक्षा के लिए जहाजों द्वारा उन्हें स्थानांतरित करने का जिक्र था।

उप राष्ट्रपति कनेडी की दुर्घटना। कनेडी को अपने साथ होने वाली दुर्घटना का अभ्यास स्वपन द्वारा एक दिन पहले ही हो गया था। वह टेक्सास की यात्रा पर गए और गोली लग जाने के फलस्वरूप उनकी यह लीला समाप्त हो गई।

यह है फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो। आप सब सुन रहे हैं फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो। सुनने वालों, अब हम आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड डफरिन की प्राण रक्षा। यह सन 1885 यानी आख्तिन फाइफन ताख्तक में भारतवर्ष के वायसराय थे। एक बार आयरलैंड में उन्होंने अपने किसी मित्र के घर पर स्वप्न देखा कि जंगल में जाते हुए किसी व्यक्ति के करहाने की आवाज़ सुनी, यानी रोने की आवाज़ सुनी, जो पीठ पर बड़ा सा संदूक लादकर ले जा रहा था, जो इतना विकराल तथा विभक्त था कि वह डरकर जहां के तहां ठहर गया। डफरिन ने जोर से पूछा, इस बॉक्स में क्या है? इतने पर ही वह व्यक्ति अदृश्य हो गया और डर के कारण उनकी नींद खुल गई। कुछ समय पश्चात उनको फ्रांस में राजदूत के रूप में जाना पड़ा। एक दिन ब्रांड होटल में किसी राजनीतिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए जब वह ऊपर की मंजिल में जाने वाली लिफ्ट के पास थे तो वह देखकर चकित रह गए कि स्वप्न में देखा गया विभत्स चेहरे का व्यक्ति ही उस लिफ्ट को चला रहा है। वह होटल के मैनेजर के पास गए और उस लिफ्ट मैन के बारे में पूछताछ करने लगे, तो इतने में ही वह लिफ्ट मकान की पांचवी मंजिल तक पहुंचकर टूट कर गिर पड़ी और उसमें सवार सभी मारे गए। स्वप्न के कारण उनकी प्राण रक्षा हो सकी।

अब हम आगे बढ़ते हैं सुनने वालों। युद्ध भूमि में अर्जुन का स्वप्न। माँ भारत में जब अभिमन्यु मारा गया तो उसके पिता अर्जुन ने आवेश में आकर यानी गुस्से में आकर दूसरे दिन सूर्यास्त से पूर्व जयद्रथ का वध करने की कठोर प्रतिज्ञा की। अपने शयन कक्ष में जाकर यानी अपने स्लाप कामर में जाकर श्री कृष्ण के आदेशानुसार महर्षि व्यास द्वारा बताए गए शिव मंत्र का जाप करता हुआ वह निद्रा देवी के अधीन हो गया। निद्रावस्था में अर्जुन ने एक स्वप्न में देखा। स्वप्न में श्री कृष्ण बोले, अर्जुन तुम पशुपत नामक सहारक अस्त्र से ही कल जयद्रथ को यम सदन पहुंचा सकते हो, इसलिए मन ही मन में शंकर जी का स्मरण करो। भगवान शंकर की कृपा से उनके भक्त होने के नाते यह शस्त्र तुम्हें अवश्य ही प्राप्त होगा। श्री कृष्ण के सुझाव के अनुसार अर्जुन ने स्वप्न में ही आचमन किया और शंकर जी का स्मरण करना प्रारंभ कर दिया। स्वप्न में ही अंतरिक्ष में उड़ते रहे। उत्तर दिशा में एक सफ़ेद पर्वत देखा। कुबेर सरोवर के दर्शन हुए जिसमें खिला कमल पुष्प देखा। गंगा तट पर साटिक मुनियों के पर्वत थे। मंत्रशर पर्वत देखा। ब्रह्मतुंग एवं अन्य काले पहाड़ देखे। रत्नों से भरा समुद्र देखा। फिर एक पर्वत पर भगवान शंकर के दर्शन हुए। प्रणाम सूक्ति उपरांत अर्जुन की अभिलाषा देखकर हंसते हुए बोले, वत्स पास के सरोवर से धनुष बाण ले आओ। वहां पर दो नागों का परिवर्तन देखकर अर्जुन ने उनसे पशुपात अस्त्र देने की प्रार्थना की। शंकर जी ने अभिदान के साथ पशु अस्त्र अर्जुन को प्रदान किया। अर्जुन का वह स्वप्न सिद्ध हुआ।

डूबते जहाज का दृश्य। डॉक्टर मेसन ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि 29 जनवरी यानी कि निघंतेन देर तक को कप्तान समुद्र का एक जहाज सिडनी से कोयला भर कर चला। 9 फरवरी को उसमें पानी भरने लगा और वह एक गांव में जा बैठे और एक सप्ताह इसी प्रकार बहते रहने के बाद 16 फरवरी को किसी जहाज ने उन्हें बचा लिया। 9 फरवरी को ही कप्तान की 13 वर्षीय कन्या को स्वप्न आया कि उसके पिता का जहाज डूब गया और उसका पिता फटे कपड़े पहने घर आया है। उसने अपनी माँ को जगाकर स्वप्न सुनाया।

टिरलेर द्वारा वर्णित स्वप्न। श्री टिरले ने अपनी पुस्तक में एक स्वप्न का वर्णन किया है। इंग्लैंड का प्रसिद्ध जहाज टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर अमेरिका जा रहा था। इंग्लैंड में एक व्यक्ति ने उसका एक टिकट खरीदा। जहाज रवाना होने से 10 दिन पहले उसने एक स्वप्न देखा कि जहाज का एक सिरा ऊंचा उठ गया है और उसके यात्री आसपास तैर रहे हैं। न्यूयॉर्क से कोई तार आने पर उन्हें यह यात्रा स्थगित करनी पड़ गई और टिकट वापस कर दिया। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को रवाना हुआ और 14 या 16 को डूब गया। सुनने वालों, आप सबको तो पता है कि टाइटैनिक के ऊपर फिल्म भी बनी है।

अब हम आगे बढ़ते हैं सुनने वालों। मेरना ने भावी पति को बचाया। पोलैंड की एक लड़की ने मेरना को एक रात स्वप्न आया कि उसका भावी पति जो सेना में काम कर रहा था किसी सुरंग में फंसा है जहाँ मोमबत्ती जल रही है और वह बार बार मेरना का नाम लेकर पत्थर हटवाने की प्रार्थना कर रहा है। डॉक्टरों ने उसे पागल घोषित कर दिया। पर एक दिन वह एक किले के पास से गुजर रही थी कि एकाएक चिल्लाने लगी कि यही वह स्थान है जहां उसका भावी पति फंसा हुआ है। पत्थरों को हटाकर दरवाज़ा निकाला जहां से निर्बल मैली कुचैली हालत में एक व्यक्ति घिसटकर बाहर निकला जो फौजी स्टोर की रखवाली कर रहा था जहां एक गोला गिरा था और वह दब गया तथा खाद्य सामग्री और मोमबत्तियों के सहारे जीवित बना रहा। श्री विष्णु महादेव भट्ट सन 1910 में श्री सावकार के दल में एक क्रांतिकारी थे और सन 1915 में लोकमान्य तिलक केसरी और मराठा पत्रों के सहायक संपादक थे। उन्होंने अपनी पुस्तक में 3 स्वप्नों का वर्णन किया है जो इस प्रकार थे।

अब हम आगे बढ़ते हैं सुनने वालों। गणेश गीता का ठीक स्थान। उनके एक मित्र श्री डी के साठे BA BSc एक अच्छे वैज्ञानिक सोंगली इंजीनियरिंग कॉलेज में गणेश के सच्चे भगत थे। एक दिन उन्होंने देखा कि स्वप्न में कोई अनजान व्यक्ति उन्हें श्री गोध लेकर के घर से गणेश गीता की रेशमी जिल्द खरीदने लाने को कह रहा है, जो ऊपर के कमरे में अलमारी के दूसरे खाने में तीसरे नंबर पर रखी है। चाहे उन्होंने पुस्तक व्यवसाय छोड़ दिया था, फिर भी पुस्तक वहीं मिली। सुनने वालों कि उन्होंने जो पुस्तक उनको चाहिए थी वो उनके घर की अलमारी के ऊपर ही पड़ी थी और उनको वहीं से मिली। सुनने वालों, ये है आप सबका अपना फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो और मैं आपको थोड़ा और आगे बताने की कोशिश करूँगी छींक के बारे में। छींक तो हम सबको आती है और छींक को हम अशुभ भी मानते हैं, वो तो आप सब जानते हैं। एक नाक दो छींक काम बने सब ठीक, छींक प्रायः सभी दिशाओं की खराब होती है। सुनने वालों, हमारा नाक एक है लेकिन अपनी छींक महाअशुभ होती है, वो तो आप सब जानते हो। सुनने वालों, अपनी छींक राम बन गए हूँ, सीता हरण तुरंत ही भय हूँ। गौ की छींक मरण का संकेत देती है, कोशिश करने पर भी यदि छींक ना रुके तो मनुष्य जिस काम के लिए जा रहा है उसमें विघ्न अवश्य होगा। फिर भी सम्मुख छींक लड़ाई भरावे, छींक दहानी द्रव्य विनाशे। पीठ पाछले सुख अभिलाषे, बाई छींक धन सदा प्रकाशे। ऊंची छींक कहे जयकारी, नीची छींक होए भयकारी। शराब संधनी सर्दी से होने वाली छींक, बच्चे और बूढ़े की छींक अथवा हट से छींकना निष्फल होता है। कन्या धोबिन रास वाला विशेष अशुभ होती है। आसन शयन शौच दान भोजन औषधि सेवन विद्यारम्भ और बीज बोने के समय शुद्ध या विवाह में जाते समय छींक हो तो शुभ फलदायक होती है। सुनने वालों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको सुना रही हूँ छींक के बारे में थोड़ी सी, कि जब हम लोगों को छींक आती है तो हम उसे अशुभ मानते हैं। सुनने वालों देखो ना, हम लोग हिंदुस्तानी हिंदू लोग उसे अशुभ मानते हैं और बकरा लोग उसे शुभ मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने जब आई तो देखा जब छींक आती है तो कहते खजोन ताइद। मैंने कहा वो छींक आने पर खजोन ताइद कहते हैं कि तुम ठीक ठाक रहो, तुम्हारी सेहत ठीक हो। और हम जब भारत में थे तो छींक आती थी कहते ओहो कहीं बाहर जा रहे हो, पैर झाड़ के जाओ, जाओ रुक जाओ एक सेकंड के लिए। सुनने वालों, ये सब जो मैं आप सबको बता रही हूँ या सुना रही हूँ ये सब हमने स्वप्न विज्ञान से निकाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं छींक पर कार्य, कि जब हमें छींक आती है हमें कार्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और उसका फल क्या है। छींक पर कार्य, गमन करना कि हम जब कहीं जा रहे हैं घर से निकल के तो कार्य में बाधा, उसका फल मिलता है अगर किसी को छींक आ जाए तो। एक से अधिक छींक, कार्य सरलता से संपन्न। कहते जब एक से ज़्यादा छींक आए तो कार्य शुभ हो जाता है। प्रवासी के बाई ओर अशुभ है, कार्य करने जाना खरीद में लाभ। धार्मिक अनुष्ठान या यज्ञ विधन, अगर छींक आ जाए हम कुछ धार्मिक कार्य करने के लिए जा रहे हैं तो उसमें बाधा आ जाती है। व्यावसायिक कार्य, कि अगर हम वैसे कुछ कार्य करने बाहर जा रहे हैं तो व्यापार में वृद्धि होती है। नए मकान में प्रवेश स्थगित करें।

इस पृथ्वी पर हर व्यक्ति को कोई ना कोई समस्या है ही, पर व्यक्ति की हर समस्या का समाधान भी उसके पास ही है। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूँ आपकी सेविका बबली आसरा।

समय बताने वाले तो बहुत हैं, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम हैं। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूँ आपकी सेविका बबली आसरा। मैं आप सबके लिए फिर से प्रोग्राम लेकर आ गई हूँ, जिसका विषय है स्वप्न विज्ञान यानी सपने। सपने तो हम सबको ज़रूर आते हैं सुनने वालों, कभी अच्छे सपने तो कभी बुरे सपने। अच्छे सपनों में हम बहुत खुश होते हैं, बुरे सपनों में हम डर जाते हैं। सपने भी बहुत प्रकार के होते हैं सुनने वालों।

सुनने वालों, समय के अनुसार शुभ शकुन के सपने भी होते हैं और अशुभ शकुन के सपने भी होते हैं। शुभ शकुन के सपन, दिन में हिरण वानर को देखना, दोपहर में नीलकंठ मुर्गे को देखना, रात्रि में उल्लू और पिंगला को देखना, परंतु स्त्रियों के लिए इसकी विपरीत है। यात्रा शगुन ही शुभ, राजा के दर्शन के लिए गृह प्रवेश के समय, पर्वत पर चढ़ते समय, वन प्रवेश समय, नदी पार करते समय। क्रिया दीप शगुन शुभ शकुन है यदि वाम या दक्षिण दिशा में जाएं, विनाश है यदि आगे या पीछे जाएं। द्वार नामक शेष शकुन यदि बाएं भाग वाला शकुन, बाएं और दाएं भाग वाले शकुन दाएं स्थित होकर शांत भाव से शब्द या चेष्टा करें। अनेक क्रिया करते शकुन अतिक्रमण करके चला जाए बंधन और घात से भय।

0: वेंकटुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विधिनं कुरुमदेवा सर्वकार्यशु सर्वदा रुब्ररू मिलने का मौका नहीं मिल पा रहा। अतः शब्दों से अपनों को नमन कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसलिए आपकी श्रेष्ठता को हृदय से नमस्कार करता हूँ। फाउन रेडियो के सभी सुनने वालों को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए आज हम सब फिर एक बार उपस्थित हो गए स्टूडियो में। और अभी तो शांता जी और राजेंद्र जी जो अभी तो स्टूडियो में नहीं पहुंच पाए हैं, पर शांता जी अपना कुछ कहते हैं, फिर उसके बाद में हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।
1: हाँ सुनने वालों, संजय जी हमने तो अपनी हाजिरी दे चुकी हूँ और आप मेरी को सुन रहे हैं, तो यहाँ से मेरी भी शांता की प्यार भरी राम राम प्रणाम और सभी को शास्त्रीय काल है इस ज्योति का प्रकाश प्रोग्राम में।
0: शांता जी ऐसा करते हैं कि पहले जो हमारे सुनने वालों जिस गीत का इंतजार करते हैं हर सप्ताह की तरह, जो अभी उदास बैठे हुए हैं, तो क्यों ना उस गीत को पहले चला देते हैं, फिर कार्यक्रम का और आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि आज का कार्यक्रम बड़े मज़ेदार कार्यक्रम है, तो क्यों ना पहले वो गीत चला दिया जाए।
1: हाँ जरूर से यहाँ से चला देंगे कि तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार।

0: तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार उदासी मन काहे को करे। राम जी तो सबका बेड़ा पार करते हैं। सुनने वालों मेरा नमस्कार, फाउंड हिंदुस्तान रेडियो के सभी श्रोताओं को यानी राजेंद्र सिंह का नमस्कार। आज हम अपना विषय लेके आए हैं एक बेटी का पिता, और इसके बाद कुछ और भी रहेगा कार्यक्रम, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए संजय जी चाहे कुछ अपना,
1: संजय कुछ अपना बोलना चाहते हैं। दोस्तों आज का विषय जैसे कि अभी आपने सुन ही चुके हैं कि एक बेटी का पिता, पर अभी तो उसे और हम सब छलांग लगाने वाले हैं, पर आज का ऑफिशियल जो विषय रखा गया है, जो हमारे खोजी सेना द्वारा आज के लिए हम सबके पास रखा गया यहाँ है, तो वो है कि एक ब्राह्मण का महत्व, और उस ओर अभी हम सब काफ़ी जानकारी लेकर आए हैं कि ब्राह्मण का महत्व, उसके बारे में हम सब अभी आपको जरूर सुनाने वाले हैं। पर राजेंद्र जी, पहले तो ये गीत जो हम सब अभी सुने कि तेरा राम जी कड़े बेड़ा पार, तो ये गीत सुन के आपको कुछ होता है या नहीं? आपको ये नहीं लगता कि अब ज्योति का प्रकाश प्रारंभ हो गया?
0: हाँ, ज्योति का प्रकाश प्रारंभ हो गया, और जो बहुत ही सुंदर सा जो गाना है वो है कि बेटियां तो बाबुल की रानियां हैं।
1: बेटियां तो बाबुल के रानियां हैं।
0: हाँ,
1: क्यों ना हम कुछ उसके बारे में सुनते हैं, तो फिर गीतों के और जो हमारे शांता जी अपने पिटारा से भर के लाए हैं उस ओर बढ़ेंगे।
0: हाँ, क्यों ना गीत से पहले कुछ ना बेटी के बारे में सुना जाए, इसके बाद ही आगे कार्यक्रम रहेगा। एक बेटी ने अपनी बेटी की, एक पिता ने क्या किया कि अपनी बेटी की सगाई कराई, और लड़का बड़े अच्छे घर से था तो पिता बहुत खुश हुए। लड़के और लड़के के माता पिता का स्वभाव देख के बहुत अच्छा लगा, तो पिता के सिर से बड़ा बोझ उतर गया। एक दिन शादी से पहले लड़के वालों ने लड़की के पिता को खाने पे बुलाया। पिता की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी वह ना कह सके। लड़के वालों ने बड़े ही आदर सत्कार से उनका स्वागत किया। फिर लड़की के पिता के लिए चाय आई। शुगर की वजह से लड़की के पिता को चीनी वाली चाय से दूर रहने को कहा गया था,
1: यानी कि चीनी वाले चाय से दूर।
0: हाँ, क्योंकि
1: ऐसा क्यों?
0: डायबिटीज था, शुगर।
1: डायबिटीज किसको कहते हैं शांता जी? तो उसके यानी कि बेटी का पिता का वो मुसीबत था।
0: हाँ, लेकिन लड़की के होने वाले ससुराल में थे तो चुप रहकर चाय हाथ में ले ली। उन्होंने नहीं बोला कि मेरे को डायबिटीज है, क्योंकि बेटी के ससुराल में थे इसलिए चुपचाप चाय ले ली। चाय की पहली चुस्की लेते ही वो चौंक से गए। चाय में चीनी बिल्कुल नहीं थी और इलायची भी डली हुई थी, लेकिन उन्होंने देखा कि चाय में तो चीनी थी नहीं, तो उनके लिए तो अच्छा रहा।
1: हाँ, क्योंकि वो उसे डायबिटीज के मुसीबत था।
0: हाँ, और उनको इलायची भी चाय में थी तो स्वादिष्ट रहा
1: ऐसा तो।
0: हाँ, तो सोच में पड़ गए कि ये लोग हमारी जैसी चाय पीते हैं। उन्होंने सोचा कि ये लोग हमारी जैसी चाय पीते डायबिटीज वाली,
1: हाँ जी,
0: चल जाएगा। दोपहर में खाना खाया, वो भी बिल्कुल उनके घर जैसा। दोपहर में आराम करने के लिए दो तकिया पतली चादर उठा दे ही सोफे पर पानी पीने को दिया गया। फिर उनको क्या किया कि दोपहर में दो तकिया दी पतली वाली, और चादर उठते ही जैसे वो सौंफ का पानी रखा था वो दिया गया पीने के लिए। वहाँ से विदा लेते समय,
1: राजेंद्र जी ये सौंफ का पानी क्या चीज़ है?
0: सौंफ का पानी होता है, एक सौंफ रहा उसका पानी पियो या सौंफ खाओ खाना खाने के बाद तो डाइजेस्ट हो जाए।
1: फूड में आप इंडियन रेस्टोरेंट में सब जगह रहता है,
0: और चीनी थोड़ा रहा,
1: ओ
0: डाइजेशन सिस्टम के लिए अच्छा रहा, तो चाहे पिए खाए।
1: ये एक चीज है वो मुफ्त में देता है कि उसमें मुफ्त में
0: वो बाहर रखा रहता है, वो जाते समय थोड़ा खा के।
1: पर शांता जी इसके बारे में कुछ और कहने वाला, क्योंकि इन्होंने चुप चुप करके और लिया था मेरे ख्याल से वहाँ होटल से। शांता जी ऐसा हुआ कि नहीं?
2: और यहाँ पे भी मिलता है, यहाँ हमने खरीद कर भी रखी है
1: घर से।
2: हाँ, दुकान से खरीद कर घर पे रखी हूँ।
1: यहाँ पर
0: मिलता है।
2: यहाँ मिलता है। हाँ,
1: वही तो बात है राजेंद्र जी, यहाँ क्या नहीं मिलता है?
0: यहाँ सब कुछ मिलता है,
1: क्योंकि ये एक देश है जहाँ पर सब कुछ मिल सकता है। ये एक देश, हर बार हमें तो लोग कहते रहते कि ये एक स्वर्ग के समान है ना। यहाँ पर 12 मंजिल पे आप नल खोलो तो पानी गिरता है, कभी बिजली का कमताई नहीं, और जब चाहे तब यहाँ तक कि सौफ भी, सौफ कहते हैं ना,
2: सौफ, सौफ,
1: तो जो हम छुप छुप करके वहाँ और होटल में लेते थे, यहाँ पर हमारे पास भी हो सकता था।
2: नहीं, वो छुप कर नहीं, वो ऐसा रखा है कि आप ले सकते हो। हाँ, पचौनी,
1: पचौनी उसे कहते हैं। तो
2: वो दिखते हैं जैसे कोमेन, कोमेन का दिखते हैं
1: ऐसे, कोमेन,
2: कोमेन,
1: कोमेन,
2: जीरा, जीरा,
1: जीरा को कहते हैं।
2: जीरा ब्राउन है और सौंफ हरा,
1: हरा होता है। तो ऐसा हुआ राजेंद्र जी, आगे का वृतांत बढ़ने से पहले क्यों ना हम सब शांता के पिटारा से
0: सुंदर से नगमा की ओर बढ़ा जाए।

0: ये बाबुल तो बेटियाँ की रानियाँ हैं, बहुत ही सुंदर नगमा रहा। और बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्यों ना बेटी के बारे में पूर्ण रूप से वहाँ से विदा लेते समय उनसे पिता से रहा नहीं गया तो पूछ बैठे, मुझे क्या खाना है, क्या पीना है, मेरी सेहत के लिए क्या अच्छा है, ये परफेक्टली आपको कैसे पता चला? तो बेटी की सास ने धीरे से कहा कि कल रात को ही आपकी बेटी का फ़ोन आया था।
1: किसका फोन आया राजेंद्र जी?
0: उनकी बेटी का फोन आया था कि मेरे
1: बेटी ने सास को लगा दिया था।
0: हाँ, पहले लगा दिया।
1: अच्छा।
0: हाँ, और उनसे कहा कि मेरे पापा के स्वभाव से बड़े सरल हैं, बोलेंगे कुछ नहीं, प्लीज अगर हो सके तो आप उनका ध्यान रखिएगा। पिता की आंखों में वही पानी आ गया। लड़की के पिता जब अपने घर पहुंचे तो घर के हाल में लगी अपनी स्वर्गवासी माँ की फोटो से हार निकाल दिया। जब पत्नी ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो तो लड़की का पिता बोली, मेरा ध्यान रखने वाली मेरी माँ इस घर में कहीं नहीं गई, बल्कि वो तो मेरी बेटी के रूप में इस घर में रहती है। और फिर पिता की आंखों में आंसू झलक गई और वे फपक फपक के रोने लगी।
1: ऐसा फपक फपक के
0: रोने लगी।
1: शांता जी, आपको आता है ऐसा रोना?
2: खुशी से
1: हम लोग कहते हैं सुसुक सुसुक के, पर सुसुक सुसुक के ये नहीं, फपक फपक के रोने लगे।
0: फपक फपक के रोने लगी।
3: खुशी से पापा ने मुझ पर अपनी ख्वाहिशें लुटा दी, ऐसा ना राजेंद्र जी? खुशी से पापा ने मुझ पर अपनी ख्वाहिशें लुटा दी, मैंने बस मुस्कुराया और पापा ने पूरी दुनिया दिला दी।
0: अरे वाह,
1: या क्या बात है शांता जी। राजेंद्र जी, इस पे तो मेरा दिल कहता कुछ कहने को।
0: हाँ, जरूर
1: ना, पर ये तो कोई कही नहीं कि संजय आप कह दो। तो दोस्तों जरूर इस पे मैं, जैसे शांता जी ने अपना संदेश सुना है, एक पिता अपने बेटी के जो संबंध होता है ना, जब एक कन्या के जन्म होता है तो पिता तभी से अपना बेटी को एक बसखैरमंद रूप से और उसे ध्यान देते रहते हैं ना,
3: फूल की तरह,
1: फूल की तरह।
3: हाँ,
1: और ऐसा हुआ राजेंद्र जी,
0: जी
1: चलो एक वृतांत की ओर बढ़ जाते थोड़ा से, पर अभी तो आपको और सुनाना है।
0: हाँ, थोड़ा सा है, इसके बाद आप वृतांत में बढ़। और जब वो फपक फपक के रोने लग पड़े तो दुनिया में सब कहते हैं ना कि बेटी है इस दिन इस घर को छोड़कर चली जाएगी, मगर मैं दुनिया के सभी माँ बाप से ये कहना चाहता हूँ कि बेटी कभी भी अपने माँ बाप के घर से नहीं जाती, बल्कि वो हमेशा उनके दिलों में रहती है।
1: ऐसा
0: ऐसा,
3: क्योंकि बेटी पहचान होती है माँ बाप की,
1: बाप की पहचान होती है। राजेंद्र जी, ऐसा हुआ कि मैंने देखो ये कार्यक्रम धार्मिक नहीं तो उसी कारण नाम नहीं लिया जाता है
0: जी।
1: पर ग्रंथों में लिखा गया है कि घर पे जब कन्या जन्म लेती है ना, कन्या जब जन्म लेती है तो जो पितरों होते हैं ना, पितरों कहते हैं जो अपना जीवित है
3: जी।
1: जिनका और काम क्रिया किया गया है तो वो पितर और योनि में चले जाते हैं, तो वो बहुत खुश होते हैं कि उसके परिवार में एक कन्या ने जन्म लिया
3: जी।
1: ऐसा क्यों? क्योंकि वो इसलिए खुश होते हैं कि उसकी परिवार से और जा करके बाद में जब बेटी कन्या जो जा करके बेटी का रूप धारण करके और एक दिन उसका विवाह होगा, कन्या दान होगा, औरों का परिवार को बढ़ाएगा, ऐसा है ना,
3: वो मध्यम होता है,
1: तो वो है उसी कारण वो अति प्रसन्न होता है।
3: ये एक कुल ने दो कुल का नाम बढ़ाता।
1: एक परिवार में जब 100 बेटा ने जन्म लिया
3: जी,
1: तो 100 बेटा होने पे परिवार आगे और आगे नहीं बढ़ सकता जब तक एक
3: बेटी ना हो।
1: हाँ राजेंद्र जी, हम सब एक और सुंदर सा गीत की ओर बढ़ेंगे, तो फिर हम इसके बारे में भी कुछ और बातचीत होगा।
0: जरूर जरूर, जरूर।

0: जी संजय जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे?
1: नहीं, कहना यही रहा राजेंद्र जी कि ये सुंदर गीत जो बाबुल प्यारे और शांता जी इस पे तैयार हो गया है कुछ करने कहने के लिए, तो उसकी
2: फेडर ऑन कर दे,
1: फेडर ऑन कर दो। तो शांता जी, आप इस पे क्या कहने वाले?
2: पहला तो मैं कहती हूँ कि गीत जो है, आवाज़ जो है, जो अब दुनिया में नहीं है और फिर भी अपना मीठी ये सुरीली आवाज़ अपना छोड़ गए है।
1: सही बात, ये सुरीली आवाज़ जो दुनिया की एक स्पेशल आवाज है, जो जिंदगी भर जब तक दुनिया रहेगा तब तक ये सुना जाएगा ना।
2: बिल्कुल बिल्कुल हाँ। और ये गीत जब भी मैं सुनती हूँ तो मुझे बहुत से सारे ऐसे बातें याद आ जाती है।
1: बहुत से सारे
2: और इतने गाने हैं जी, जो एक्टी है ना हेमा मालिनी जी,
1: जी
2: वो कितनी खूबसूरत है।
0: और आपसे कम।
2: और फिर ये गीत जो पहले कोई विवाह करते थे सुरीनाम में ना,
1: तो रेडियो से चला,
2: रेडियो से बहुत चलता था ये गीत।
1: हाँ, क्योंकि ये गीत जो पहले एलपी ही होते थे ना, वैसे जैसे आजकल रेडियो चलता है, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले और तरीका था। और मेरे ख्याल से कितने खींच गए होंगे
2: वो तो है
1: ये गीत सुनाते सुनाते।
2: ये फिल्म हमने देखी है मेरे अपने बाबूजी के साथ, परिवार के साथ। मेरे पापा जी हम सभी को गाड़ी में बैठाए कर ले जाते थे फ्लैम्बोयंट वीडियोटेक में,
1: ड्राइव इन सिनेमा में।
2: हाँ,
1: वो वहाँ पर जा करके देखे,
2: वहाँ पर हमने देखी
1: ये पिक्चर वहाँ पर जा करके देखे। राजेंद्र जी, इस पे मैं कुछ और कहना चाहूँगा।
0: जरूर,
1: क्योंकि ये आज जैसे कि अभी आपने वृतांत बताया कि एक बेटी अपने पिता के लिए कितना और ध्यान देते हैं, कितना उसे और ख्याल करते हैं ना, ऐसा होता है। अभी पिता भी अपने बेटी के भी और जब से जन्म से उनके ध्यान देते रहते हैं। और एक बार ऐसा हुआ कि एक लड़का और एक लड़की से प्रेम हो गया।
2: अच्छा,
1: प्रेम हो गया और प्रेम से प्रेम के बाद में आ जाता है प्यार। तो लड़का लड़की में प्यार हो गया और एक दूसरे के बिना जीना अब मुश्किल हो गया।
2: हमने दो शब्द सुने आपके मुखारबिन से, वो है प्रेम और प्यार, इसमें अंतर है?
1: अभी तो अंतर इसमें बहुत है, पर अंतर की ओर बढ़ेंगे तो आज हमारे कार्यक्रम नहीं है।
2: अच्छा,
1: पूरा होगा
2: तो इसमें हम इस बात पे हम गौर करेंगे अगले बार।
1: गौर जरूर हम लोग करेंगे, पर अभी देखेंगे। अच्छा, अभी प्रोग्राम बाकी है शांता जी। तो राजेंद्र जी, ऐसा हुआ लड़का लड़की से जब प्यार हो गया तो एक दूसरे बिना जीना भी मुश्किल हो जाता है। लड़का और जा करके लड़की के पिता से कहते कि मुझे शादी करना है।
2: अच्छा जी।
1: पर एक पिता हर बार देखते हैं कि किसे अपना बेटी का और हाथ दे
2: जी,
1: क्योंकि शादी करना तो शायद आसान होगा पर निभाना कोई भी नहीं चाहते है कि अपना बेटी के हाथ ऐसा व्यक्ति के पास दे जो थोड़ा से निभाने में शायद ना कर पाए। तो ऐसा हुआ, लड़का ने गया और पिता ने बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इससे तो मैं अपना बेटी का हाथ दूंगा नहीं। तो आप समझ गए होंगे कि उसमें कुछ बात होगा। और लड़की प्रेम में पागल था, अपने पिता को फोर्स करते हैं, पिता को फोर्स करते हैं कि पापा मेरा शादी करा दो
2: जी।
1: पिताजी जो बेटी को ना भी नहीं कह पा रहा है
2: जी।
1: और लड़का जो आकर के कहते हैं कि हमारा शादी करा दो, तो दोनों से पिता ये कहते हैं कि शादी करा दूंगा पर एक शर्त पे।
2: जी।
1: शर्त लगाया। उन्होंने कहा शादी कराना है एक शर्त पे, आप जाकर के बारात लेकर आओ, पर बारात लेकर आएंगे तो कोई बूढ़ा साथ में नहीं रहना चाहिए। बूढ़ा साथ में नहीं रहना चाहिए,
2: ये पापा का शर्त है।
1: पापा का शर्त
2: जी।
1: लड़का जाते हैं अपने घर से और कहते हैं कि मान गए और शादी के चलो सब तैयारियां करते हैं और अपने पूरा परिवार बैठा करके और वहां पर वृतांत को बताते हैं, पर करते हैं कि लड़की के पापा ने, लड़की के पिता ने एक ऐसा शर्त रखे है कि शादी करना है बारात लेकर आना पर कोई बूढ़ा साथ में नहीं रहेंगे। जब इस बात को लड़की के पिता कह रहे थे लड़का से, तो लड़का कह दिए कोई ना, सभी बूढ़ों को घर पे रहना है, मौसम ठंडी है, क्यों इधर उधर जाना। और जब यही बात वो जाकर के अपने घर से कहते हैं तो वहां पर पूरा परिवार और थे, और उसमें एक था नाना। नाना पता आपको कौन है?
0: हाँ।
1: मम्मी वाला पापा।
0: हाँ।
1: तो नाना कहते नाना चाहे जोन हो जाए पर हमें तो जाना है।
2: हाँ, ये नाना कहते हैं।
1: ये नाना, नाना कहते। जी। तो लड़का ने कहा नाना जी मान जाओ, अभी कुछ गड़बड़ ना हो जाए, बड़ा मुश्किल से माने हैं, आप घरे रुक जाइए। नाना कहते चाहे मुझे बोरी में भर के ले जाओ पर मुझे तो जाना है। लड़का बहुत समझाए पर नाना माना ही नहीं,
2: बोरी
1: हर बार ना ना
2: ना ना
1: ना। तो उन्हें लड़का कहते भाई भरो इसे, बोरी में भरो और डिग्गी में डालो,
0: डिक्की में डालो गाड़ी की,
1: डिक्की में। और चले गए बारात लेकर खूब सा धज के जाकर वहां पहुंचे। वहां पर जब पहुंचे बारात लेकर, अब वहां दुल्हन के द्वार बिल्कुल पहुंच गए, तो दुल्हन का पिता किसी को भेजते हैं, बोलते हैं एक शर्त और। वो कहते हैं कि जाकर बोलो ये गांव के पीछे में जो नदी बह रहा है वहां दूध बहेगा तभी ये शादी होगा।
2: ये बड़ा कठिन है,
1: जो गांव के पीछे नदी बह रहा है उसमें दूध बहेगा तभी ये शादी होगा। लड़का को इस बात को सुन के वो बिल्कुल बस स्थिर हो गया, क्योंकि ऐसा बात तो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि नदी में जो बह रहा है और जो गांव के पीछे में है जल से और उसमें दूध बहेगा तब शादी होगा। लड़का सोचते चलो खत्म, विवाह नहीं होगा, सभी तैयारियां कर चुके, अब बारात लौट रहा है। तभी किसी ने कहा कि अरे बारात तो लौट रहा है, क्यों नाना के मार रहे हो, नाना के तो गाड़ी के डिग्गी से निकालो। तो जा करके नाना को निकालते हैं, और नाना का निकालते हैं तो नाना पूछते हैं क्या हुआ भाई, तो लोग कहते हैं वहां पर कि बारात लौट रहे। नाना पूछे क्यों, उन्होंने कहा कि अब दुल्हन का पिता ने दूसरा शर्त रख दिया है कि जो गांव के पीछे नदी बह रहा है उसमें दूध बहेगा तभी शादी होगा,
0: उसमें दूध बहना चाहिए।
1: हाँ जी, नाना ने कहा कि इतना छोटे छोटे चीजों पे और ये बारात लौट रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। नाना ने पूछा किसने ये संदेश लेकर आया, लोग दिखाए कि ये ही लेकर आए, तो नाना ने कहा कि इधर आओ, जा करके दुल्हन के पिता से कह दो कि दूध का व्यवस्था हो गया है, नदी खाली करा दो।
0: बस
1: यही चीज, दूध का व्यवस्था हो गया, नदी खाली करा दो। वो जा करके व्यक्ति जा करके दुल्हन के पिता को कहते हैं कि वहां किसी ने कहा कि दूध का व्यवस्था हो गया है, नदी खाली करा दो। लड़की का पिता ने कहा कि पक्का कोई बूढ़ा आया है बारात में। तो दोस्तों ये एक वृतांत हो जाता है कि हम सब सोचते हैं कि हम सब पढ़ लिख लिए हैं, हम सब अब जान गए, सब कुछ अब अपना पार हो जाएंगे, पर खास करके हम अपने पुरखों अपने बूढ़ों के साथ में जब नहीं लेकर जाते हैं ना। आजकल ऐसा होता है शांता जी कि हम लोग जैसे विवाह संस्कार कोई भी कार्य करे और जाकर के बातचीत करने को, तो हम सब सोचते हैं कि हाँ आजा, कौन जाएगा लेने के फर्सोर्किंग्स तो है इससे, और फिर पहुंचानी पड़ेगा, कौन जाएंगे वृद्धालय से लाने को और पहुंचाने के। तो हमें इन बातों पे ध्यान देना, क्योंकि अभी हम सब के कहावत है कि महिमा हमारे पुरखों के है, तो हम सब उससे बहुत से सीखना है। राजेंद्र जी क्यों ना हम सब एक गीत की ओर बढ़ते हैं, और दोस्तों इस वृतांत के माध्यम से हम जरूर अपने पुरखों के और ध्यान दे, और उन्हें हर कार्यक्रम जो कोई भी कार्यक्रम अपना करे तो उसे लेकर के और साथ में करे। राजेंद्र जी कौन सा गीत पिटारा से आप निकालने वाले हैं?
0: मेरा आसमान है पापा,
1: तो चला देते हैं।

0: मेरा आसमान है पापा।
1: दोस्तों जैसे कि अभी आप सुने, एक बेटी अपने पिता के लिए कैसे सोचते हैं और पिता जो अपने बेटी के लिए कैसे सोचते हैं। शांता जी, इस पे आपको क्या कहना है, कुछ और संदेश रखना है या हम सब न्यूज की ओर बढ़ सकते हैं?
2: एक तो ये जरूर कहूंगी कि बेटी की हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती, फिर भी बेटियां कभी अधूरी नहीं होती, फिर भी बेटियां कभी अधूरी नहीं होती। हर बेटी की पहचान होती है पिता, हर बेटी की पहचान होती है पिता, हर बेटी का अरमान होता है पिता, हर बेटी का अरमान होता है पिता, बेटियों के लिए पूरा आसमान होता है पिता। तर वैसे ही गीत हमने यहाँ फान हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से अभी आपके लिए पेश किया। तो बेटियों के लिए होता है आसमान पिता,
1: बेटियों के लिए होता है आसमान पिता। दोस्तों अभी जैसे कि आप सुन ही चुके हैं कि हम सब हमारे आज का विषय के ओर छलांग लगाना है, पर राजेंद्र जी जो इस समय कंप्यूटर पे लगा रहे हैं न्यूज और कमर्शियल, और उसके बाद में हम सब जो आज का विषय है उस ओर बढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ तक था हमारे कमर्शियल्स और जो हमारे न्यूज़ और कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश, जो इस समय हम सब यहाँ स्टूडियो में उपस्थित है, शांता जी, राजेंद्र जी और मैं भी, जो आपके साथ ये कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश इस समय जो रखा जा रहा है। तो राजेंद्र जी, जैसे कि पता है कि आज का विषय ब्राह्मण का महत्व, उसके बारे में हम सब कुछ बातचीत करने वाले है, तो क्यों ना हम उस पे उस ओर यानी कि तेईमा के ओर छलांग लगा लेते हैं, फिर उसके बाद में कुछ गीतों के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा।
3: जरूर, तो पहले छलांग लगाया जाए ब्राह्मण का महत्व। एक बार की बात रहा, अकबर ने एक ब्राह्मण को दयनीय हालत में जब भिक्षाटन करने के लिए देखा तो बीरबल की ओर व्यंग कसकर बोले, बीरबल ये है तुम्हारे ब्राह्मण जिन्हें ब्रह्म देवता के रूप में जाना जाता है, ये तो भिखारी है।
1: भिखारी?
3: हाँ,
1: ऐसा
3: ऐसा अकबर बोला।
1: अकबर ने बीरबल से कहा?
3: ऐसा बीरबल ने कहा, अकबर ने बीरबल से कहा
1: जी।
3: तो बीरबल ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब अकबर महान महल में चला गया तो बीरबल वापिस आया और ब्राह्मण से पूछा वह भिक्षाटन क्यों करता है।
1: तो राजेंद्र जी ये इस पे थोड़ा से हमारे सरनामी में कह दो कि भिक्षांतन मतलब क्या?
3: मतलब भीख मांगना।
1: ऐसा?
3: तो बीरबल वो पूछ ही ला ब्राह्मण से कि
1: हाँ जी
3: काहे का भीख मांगे,
1: एकदम
3: भीख मांगा काहे रहे,
1: एकदम सरनामी,
3: एकदम सरनामी रहा। तो ब्राह्मण ने कहा मेरे पास धन पैसा आभूषण भूमि कुछ नहीं है और मैं ज्यादा शिक्षित भी नहीं हूँ, यानी मैं ज्यादा पढ़े लिखल न रहा, इसलिए परिवार के पोषण हेतु भिक्षाटन मेरी मजबूरी है। इसलिए कहला के परिवार का जो पोषण भरण करे उसके लिए मेरे लिए भिक्षा मांगना जरूरी है।
1: अच्छा।
3: तो बीरबल ने पूछा भिक्षाटन से दिन में कितना कमा लेते हो, प्राप्त हो जाता है? तो ब्राह्मण ने जवाब दिया 6 से 8 असरफियाँ। उस समय असरफिया रहे रुपया जैसे रहा, तो उस समय असरफी रहा,
1: असरफी रहा,
3: असरफी उसको असरफी बोले गिन्नी।
1: राजेंद्र जी इस पे मैं कुछ और कहना चाहूंगा, क्योंकि असरफी जब ताजमहल बन रहा था ना, तो उसे भी असरफियों से भरा, यानी कि वर्कर्स के भरा जाता था,
3: उसी समय का बात है।
1: और एक होता कौड़ी,
3: कौड़ी तो और नीचे रहा,
1: और नीचे रहा, असरफी से नीचे,
3: असरफी तो उसके बाद कौड़ी रुपया चरन्ना दुवन्ना अटन्ना
1: ऐसे फिर आने लगा,
3: फिर 1 रुपया हुआ। अब 1 रुपया के नीचे कुछ ना चले, और जमाना बहुत ऊपर हो गया,
1: अब तो जमाना बदल गया,
3: 1 रुपये में कुछ ना मिले,
1: नहीं मिलता,
3: तो अब 10 रुपया 100 रुपया हो गया, तो धीरे धीरे 1 रुपये भी बंद हो जाएगा, लेकिन 1 रुपये अभी भी चले,
1: अभी भी चलता है वहाँ इंडिया,
3: हाँ अभी तो चले, खूब चले। तो बीरबल ने कहा आपको यदि कुछ काम मिले तो क्या भिक्षा मांगना छोड़ देंगे? ब्राह्मण ने पूछा मुझे क्या करना होगा? बीरबल ने कहा आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करके प्रतिदिन 101 गायत्री माला मंत्र का जाप करना होगा, और इसके लिए अच्छी प्रतिदिन भेंट स्वरूप 10 असरफियाँ प्राप्त होंगी। कि
0: आपको केवल माला जप करना है और अच्छे वस्त्र पहनना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। जो 6-7 असर पे मिलती है हम 10 असर पे देंगे आपको, और आपको केवल ये काम करना।
1: तो राजेंद्र जी इस पे क्यों ना एक पिटारा से निकाला हुआ गीत सुना देते हैं।
0: जरूर।
4: असरफी बोले है बताल मेडल।
1: राजेंद्र जी शांता जी का माइक ऑन नहीं है।
0: हाँ बोलिए शांता।
2: हाँ असरफी आपने कह रहे थे ना, तो असरफी जैसे हम जानते हैं आज के दौर में बताल मेडल, तो उस जमाने में असरफी था पहला। हाँ हमने खोजबीन के लगाई, हम पकड़ अपन सुनने वालों को नहीं दिखा पाएंगे, पर हम यहाँ पे संजय जी को और राजेंद्र को तो मालूम है
1: बस,
2: तो ऐसे बताल मेदल।
1: ये गूगल बाबा भी कमाल करता है राजेंद्र जी, बस दबाओ बटन और गूगल से निकाल लो
0: बस।
1: दोस्तों जैसे कि अभी हम सब आज के कार्यक्रम में कुछ सुंदर सुंदर गीतों को लेकर आए, तो आशा यही रखते हैं हम सब कि वही गीतों को चलाया जाए।

0: बरदे बीणा वादिनी बरदी, जो सरस्वती का बीणा वादिनी बरदी जो भजन आपने सुना, बहुत ही अच्छा मनमोहक भजन रहा। तो क्यों ना हम ब्राह्मण की बात पे आगे बढ़ा दिया जाए।
1: अच्छा, ये ब्राह्मण किसको कहते हैं, क्यों?
0: हाँ, और ब्राह्मण किसको कहते हैं, जो जिसपे जिसके अंदर ज्ञान हो वही ब्राह्मण है।
1: उतना दूर नहीं पहुंचाइए
0: ना,
1: अभी धीरे धीरे चल
0: रहा, धीरे धीरे चल रहा है।
1: तो दोस्तों आप सुनते रहना, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। कभी लोग और ऐसा ऐसा बात बोलते रहते हैं कि ब्राह्मण क्या है और उसके अंतर्गत में कभी ऊंचा नीचा हो जाता है, पर इसमें एक विशेषता है और जो हम सब लेकर आपके साथ और बांट रहे हैं। तो देखते हैं राजेंद्र जी, आगे का वृतांत में क्या कहा गया।
0: हाँ, तक आगे के वृतांत में कहा गया है कि अब तो गायत्री मंत्र की ये बात ब्राह्मण मान गए और उन्होंने स्वीकार कर ली। तो गायत्री मंत्र की शक्ति के प्रभाव से ये बात एकदम फिट बैठ गई। बीरबल का जो प्रस्ताव रहा, अगले दिन ब्राह्मण ने भिक्षाटन करना बंद कर दिया, भिक्षा मांगना बंद कर दिया और बड़ी श्रद्धा भाव से गायत्री मंत्र जाप करना प्रारंभ कर दिया और शाम को 10 सर्पियां भेंट स्वरूप लेकर अपने घर लौट आता। सरनामी में चाहे हमें समझाए
1: नहीं, सरनामी में, क्योंकि आपके सरनामी जो, क्योंकि हम लोगों ने तो कोशिश करते इंडिया में जा करके और हिंदी कोशिश किया जाता है बात करने को।
0: हाँ।
1: पर वहाँ ज्यादा नहीं बात कर पाते, पर आप जब सरनामी में समझाते हैं ना तो मजा कुछ और हो जाता है।
0: हाँ, तो अगले दिन ब्राह्मण ने भिक्षाटन, जो भिक्षा लेते थे वो बंद कर दिए और फिर वो अपने पूजा जो गायत्री मंत्र है वो उसमें लग गया। और जब गायत्री मंत्र में लगे तो ब्राह्मण का ध्यान आकर्षित होने लगा, दर्शनाभिलाषी उसके दर्शन करके मिठाई दर्शन उसका जो दर्शन करे तो लोगों को मिठाई फल पैसा कपड़ा चढ़ाने लगे ब्राह्मण को। अब तो उसे बीरबल से प्राप्त होने वाली असर्पियाँ का भी आवश्यकता न रही। तो जो 10 असर्पियाँ मिलती थी उसने बोला उसकी भी जरूरत नहीं, लोग उसका दर्शन के लिए ऐसे ही आने लग गए क्योंकि वो गायत्री मंत्र का जाप का प्रभाव रहा।
1: हाँ।
0: यहाँ तक कि अब तो ब्राह्मण का श्रद्धा पूर्वक चढ़ाई गई वस्तुओं को भी कोई आकर्षक न रहा, बस वह सदैव मन से गायत्री जाप में लीन रह गया और गायत्री मंत्र की जाप की संख्या असर्पियों की संख्या दोनों ही बढ़ा दी। जब बीरबल ने देखा कि इतना प्रभाव रहा तो उन्होंने बीरबल ने गायत्री मंत्र की संख्या भी बोली बढ़ा दो, पर हम तुम्हारा 10 का 20 कर देते हैं।
1: अच्छा। और बढ़ा दिया,
0: डबल कर दिया। तो लोग सब कपड़ा पैसा चढ़ाए, असर्पी भी मिले। तो फिर ब्राह्मणों को धीरे धीरे ब्राह्मण ने वो 20 रुपये बोला कोई जरूरत नहीं 20 असर्पी की, ऐसा हो गया। तो ब्राह्मण की संत की नित्य गायत्री जप की खबर चारों ओर फैलने लगी
2: जी।
0: दूर दराज से श्रद्धालु दर्शन करने आने लगे
2: जी।
0: भक्तों ने ब्राह्मण की तपस्थली में मंदिर व आश्रम का निर्माण करा दिया।
1: तो राजेंद्र जी, ऐसा होता है कि कहावत है जैसे कि तीरथ।
0: हाँ।
1: तो तीरथ जैसे हम सब जाते हैं तीरथ स्थानों पे ना, तो तीरथ सिर्फ वो नहीं होते, कहावत है कि जैसे कि जो चलते फिरते तीरथ हो जाता है। तो ये ऐसा वृतांत हो गया ये ब्राह्मण।
0: हाँ, ब्राह्मण क्योंकि ब्राह्मण गायत्री मंत्र का जब सिद्ध हो गया
1: जी। सिद्ध हो गया।
0: हाँ, तो ब्राह्मण सिद्ध हो गया और फिर लोगों का ब्राह्मण का प्रभाव इतना हुआ कि लोग आकर्षित होके वहाँ खींच के आने लग गए।
2: अच्छा।
1: क्योंकि यह सभी को नहीं हो सकता, पर जो जिसके पास वो सिद्ध ना होता है, सिद्धि हो जाए तभी हो पाएगा।
0: फिर ब्राह्मण के तप की प्रसिद्धि की खबर अखबार को भी मिली। बादशाह ने भी दर्शन हेतु जाने का फैसला किया।
1: आगे से तो बादशाह ने तो इसे कुछ गड़बड़ कहे थे।
0: हाँ, तो बादशाह को क्या पता रहा कि वो ये वही ब्राह्मण रहा
1: जो नहीं पता था।
0: आगे से साधारण रहा ब्राह्मण,
1: भिक्षुक।
0: हाँ, भिक्षुक रहा, ये अब सिद्ध हो गया ना।
1: अब सिद्ध हो गया।
0: तो अकबर को भी जब खबर लगी बादशाह को, तो उसने सोचा कि मैं भी चले जाऊँ, कैसा ब्राह्मण रहा
1: देखते है।
0: जाने का फैसला लिया
2: जी।
0: तो वह शाही तोहफे लेकर राजसी ठाट बाट में बीरबल के साथ संत से मिलने चल पड़े। वहां पहुंचकर साई भेंटे अर्पण कर ब्राह्मण को प्रणाम किया। ऐसे तेजोमय संत के दर्शनों से हर्षित साई हृदय सहित बादशाह बीरबल के साथ बाहर आ गए। फिर जब बीरबल ने अकबर ने दर्शन किए तो सोचा कि यार, उसको लगा कि हाँ कुछ है, कोई ताकत है, कोई शक्ति है। तो वह जब दर्शन करा ब्राह्मण का, फिर बाहर आया। तब बीरबल ने पूछा क्या आप इस संत को जानते हो, फिर बीरबल पूछिला
1: बीरबल ने
0: संत को न जाने
1: तो क्यों ना एक गीत चला देते हैं राजेंद्र जी।
0: हाँ, इसी
1: क्योंकि शांता ने पिटारा भर करके लाए हैं और हम सब गीतों बस तीन चार ही चला पाते हैं दो घंटा के अंदर अंदर।
0: हाँ,
1: में उसे असलियत में तो वो ब्राह्मण को पहचाना नहीं मेरे ख्याल से
0: ना।
1: क्योंकि अभी प्रश्न रखा उसके पास ना।
0: हाँ।
1: तो अभी दोस्तों हम सब एक शांता जी आप कुछ कहने वाले।
2: हाँ, तो देखो ना अगर कोई के ऐसे ऐसे हमने कहा बीरबल बादशाह के ना, तो बादशाह ने उस भिक्षु के ऐसे कह दिए कि भिक्षु वो बात से अपन सीढ़ी बनाकर और उतना ऊपर पहुंच गए कि जहाँ पर अब बादशाह गए हैं उनका दर्शन करने के लिए और उनको पता नहीं है कि वही है भिक्षुक है। हाँ, अच्छा पर इतना तो यहाँ तक हमको पता है। अभी एक गीत के बाद में हम उकर और आगे में सुनेंगे कि व्यर्थ्या कैसे हो और आगे में कैसे इसका बढ़े।

जय भोले है तो गजबी कहानी, बहुत ही सुंदर सुप्रसिद्ध साईं भजन जो सुना है, बड़ा ही मनमोहक रहा। बढ़ते हैं आगे की ओर, अकबर और बीरबल की कहानी की तरफ बढ़ते हैं और ब्राह्मण देवता की तरफ बढ़ते हैं। तो अकबर ने कहा, नहीं बीरबल, मैं तो इससे आज पहली बार मिला हूँ। फिर बीरबल ने कहा, महाराज आप इसे अच्छी तरह से जानते हो, यह वही भिखारी ब्राह्मण है जिस पर आपने व्यंग कसकर कहा था कि ये है तुम्हारी ब्राह्मण जिन्हें ब्रह्म देवता कहा जाता है। आज आप स्वयं उसी ब्राह्मण के पैरों में शीश नवा कर आए हैं। अकबर के आश्चर्य की सीमा न रही, बीरबल से पूछा, लेकिन यह इतना बड़ा बदलाव हुआ कैसे? तो जब अकबर में देखा कि उस दिन तो भिखारी ब्राह्मण रहा और आज इतना बड़ा कि मुझे भी दर्शन करने का जाना पड़ा और वहाँ लाइन में खड़ा होना पड़ा, तो ये सब कैसे न रहा ला? तो अकबर बीरबल से पूछे आगे। तो बीरबल कहेला कि महाराज वह मूल रूप से मैं ब्राह्मण ही है, परिस्थिति बस वह अपने धर्म की सच्चाई व शक्तियों से दूर था। वो कहा कि उधर रहा तो ब्राह्मण, लेकिन कुछ स्थिति ऐसी हो गई कि वो उसका जो धर्म है उस पर ना उधर पाए पूरा, इसलिए वो थोड़ा दूर हो गए। पर धर्म के एक गायत्री मंत्र ने ब्राह्मण को साक्षात ब्रह्म बना दिया और कैसे बादशाह को चरणों में गिरने के लिए विवश कर दिया, यही ब्राह्मण अधीन मंत्रों का प्रभाव है। वो बोले कि देख लो, एक मंत्र ने ही इतना उसको महान बना दिया कि अकबर भी उसके चरणों में जाके गिर गया। तो यह नियम सभी ब्राह्मणों के समान रूप से लागू होता है, सभी ब्राह्मणों के लिए यही नियम लागू होता है, क्योंकि ब्राह्मण आसान और तप से दूर रहकर जी रहे हैं। ब्राह्मण के जो दशा है इस समय, वो अगर किसी की खराब है तो वो अपने तप से दूर रह रहे हैं, नहीं तो सब ब्राह्मण अच्छे से मोई से रह ला इधर, इसलिए पीड़ित हैं वर्तमान।

0: में आवश्यकता है कि सभी ब्राह्मण पुनः अपने कर्म में जुड़े, अपने संस्कारों को जाने और माने। मूल ब्रह्म रूप में जो विलीन होने की क्षमता रखता है वही ब्राह्मण है। यदि ब्राह्मण अपने कर्म पथ पर दृढ़ता से चले तो देव शक्तियाँ उसका साथ चल पड़ती है। तो ब्राह्मण की ऐसी शक्ति है कि अगर वो अपने कर्म में चले तो देव शक्ति भी उसके साथ साथ चलती है। और इस प्रकार का जो अकबर को एहसास हुआ कि ब्राह्मण कितना महान है, तब जाके उसको हुआ।
1: तो राजेंद्र जी, इस पे जब देखा जाए कि सभी को अपना अपना और स्वाभाविक रूप से अपना अपना तरीका रहना चाहिए
0: जी,
1: तभी उसमें और तरक्की हो पाएगा।
0: हाँ,
1: और जो अपना तरीका से नहीं रहेंगे लोग, क्योंकि हर बार ये कार्यक्रम में रखते हुए रखते समय ये तो हमारे विशेषज्ञ लोग हम लोग के लिए सब खोज खोज कर रख देते हैं, पर हर बार ऐसा होता है कि लोग इस पे ऊंच नीच बड़े छोटे करने लगते हैं। पर इसमें महत्व ये है कि सभी को अपना स्वाभाविक रूप में और रहना और अपना रहन सहन करना, तो कोई प्रकार से और इसमें तकलीफ नहीं होने वाला। इस पे भी एक राजेंद्र जी, कभी हम लोगों ऐसे होते कि हम लोगों ने अपना मातृभाषा जो हिंदी है उसे तो हम कोशिश करते रहते हैं सीखने के, पर देखा जाए कि ये एक देश है जहाँ पर हम लोग के सिखाने के लिए कितने लोग तैयार हैं।
0: हाँ,
1: और तैयार है सिखाने के लिए, पर हम सब इतना भीड़ भाड़ में जी रहे हैं और जीते जीते बस समय विपरीत हो जाता है, अब बूढ़ा हो जाते हैं, सीख नहीं पाए कभी काल के। और ऐसा है कि हम लोग के लिए इतना सो फिर मोखलक है इधर फॉर ऑन्स ऑम द लेरन, ऐसा है कि ना शांता जी?
2: एकदम से सहमत है।
1: इसमें एक है जैसे कि हमारे ICC होते हैं ना।
0: हाँ।
1: तो हम लोग के लिए हिंदी का और संस्कृत का आदि सीखने के लिए जिसे इच्छा है तो सब चीज वहाँ मुफ्त में, और न सिर्फ वहाँ पर भी कितने और ब्यूर्थ हाउस और भी स्थाने हैं जहाँ पर हम सब के लिए लोग तैयार रहते हैं सिखाने के लिए। तो इसमें जब देखा जाए कि जो आज का विशेष और विषय रखा गया कि ब्राह्मण का महत्व, तो हमारे पुरुषोत्तर में एक मंत्र होता है ना, कि वो मंत्र से हमें इस बात को ज्ञान होता है कि हमारे जो शरीर को अंग है ना, तो उसमें कहाँ और कहाँ कौन बसा हुआ है। जैसे कि ब्रह्मनश्य मुखमा सिद्ध बाहुरा जन्य कृत उरु तदस्य यद्वस्य पाद्भ्यम सूद्रो अजायत। तो इसमें हमारे शरीर के अंग में, हमारे शरीर में सब कुछ बसा हुआ
2: है,
1: सब कुछ बसा हुआ है। और मैं देख रहा हूँ राजेंद्र जी, इस समय आप जोर तोर से गाना का तैयारी में भिड़े हुए हैं। हाँ। शांता जी,
2: पर अपने राह से आप भटक गए, आप कुछ और कह रहे थे।
1: राह से भटकना तो लाइव प्रोग्राम में तो ऐसे हो ही जाता है। नहीं, बस वही वृतांत के बारे में रहा शांता जी, कि हम सब इसे कोशिश करें पढ़ने के लिखने के। हाँ। और ताकि हम सब अपने जो कभी उल्टा और ऊंच नीच बना देते हैं इस पे ध्यान दे सकें। राजेंद्र जी, अगला गीत जो हमारे पिटारा से निकाला गया है, कौन सा गीत है?
0: और पिटारा से निकला हुआ गीत जो है, एक ज्योति बहुत सुहानी।
1: तो ज्योति बहुत सुहानी, और हमारे कार्यक्रम के नाम है
0: ज्योति का
1: प्रकाश। तो लक्ष्य यही रहता है कि हमारे जो जीवन के ज्योति जो जल रहा है इसमें थोड़ा और प्रकाश आ सके।
0: हाँ, यही लक्ष्य रहा है।
1: तो क्यों ना गीत को चला देते हैं।
0: जरूर।

0: बनी।
1: एक ज्योति है बहुत सुहानी, जिनसे शक्ति बहुत मिल जाए। तो संजय जी, आप शक्ति के बारे में कुछ चाहे बोले?
2: नहीं, शक्ति के नहीं, पर कुछ और चाहता हूं बोलने।
1: बोले, कह दे।
2: कह दूं कि हर कोई सुख की चाबी ढूंढ रहा है, लेकिन सवाल यह है कि सुख की ताला किसने लगाया है। तो राजेंद्र जी, यही बात हो जाता कि सुख को ताला किसने लगाया है। तो आज का विषय में तो हमारे विशेषज्ञों ने, मैंने सोचा था ये तो हो ही नहीं पाएगा आज, पर इसे तो हम लोग के तो पर रखना पड़ेगा। तो क्यों ना हम थोड़ा से इसके बारे में कि कपूर और सुखियों में है, क्या इसके बारे में हम सुना सकते हैं अपने सुनने वालों को कि नहीं?
1: जरूर, हाँ, कपूर सुर्खियों में है, इसके बारे में तो हमें लोगों को सुनाना चाहिए।
2: सुनाना ही पड़ेगा क्योंकि हम जैसे कि हमारे खोजी सेना है ना, तो उन्होंने हम सब के लिए सब कुछ खोज करके रख दिए। मेरे ख्याल से इसी कारण ये वृतांत भी इसी में रख दिए गए हैं।
1: जरूर।
2: तो दोस्तों, आप सुनते रहना और राजेंद्र जी हम सबको और उस ओर ले जा रहे हैं। तो सुना दीजिए राजेंद्र जी।
1: डॉक्टर भी कपूर इस्तेमाल करने की सलाह दे रहे हैं। कल तक जिस कपूर के धुएं को पर्यावरण विधि ने प्रदूषित कहकर खारिज कर दिया था, आज वही धुआं संकट में प्राणवायु बन गया है।
2: कपूर?
1: हाँ, कपूर। कैसे प्राणवायु बन गया है? प्राण का संकट जिसमें रहा प्राणवायु, कहे कि जिस धुआं को लोग कल तक प्रदूषण कहते थे, उसी धुआं को प्राण की वायु मतलब अच्छा मानने लगे। तो कैसे मानने लगे, इस पे विचार विषय है। एक समय था जब प्रत्येक घरों में सुबह शाम कपूर की आरती गाई जाती थी। संपूर्ण घर में कोने कोने में कपूर का धुआं किया जाता था। तत्पश्चात घर के सभी सदस्यों को कपूर की आरती दी जाती थी, जिसमें जलती लौ का धुआं दोनों हाथों से लेकर चेहरे से लेकर सीने तक हथेलियां फेरी जाती थी।
2: ऐसा?
1: हाँ,
2: पहले।
1: किंतु
2: राजेंद्र जी, ऐसा अब क्यों नहीं होता?
1: अब क्यों नहीं होता, वही तो विषय है। वही क्यों होने वो लगेगा, उसी की बात चल रही है।
2: वैज्ञानिक के माध्यम से
1: विज्ञान के माध्यम से लोग सब समझने अच्छे से समझ जाते हैं, तो वही विषय आगे का है। किंतु आधुनिकता मतलब अभी की जो बात है, अंधी दौड़ और चंद किताबें पढ़कर पाई डिग्रियां की आंखट घमंड में हम इतने चूर हो गए हैं कि इन्हें अंधविश्वास मान लिया। कर्पूर गौरम करुणा अवतारम आरती हमें ढोंग और समय बर्बाद करने लगी। अब का जो किताब डिग्री डॉक्टर हो गए हैं, वो सोचते हैं कि ये सब बेकार की चीज़ें, कर्पूर गौरम करुणा अवतारम को भी नहीं मानते हैं। तो इसी पे आगे का जो मेन विषय अब आने वाला है, वो इसी की बात कर रहे हैं। प्राणवायु कर्पूर आरती धुआं लगने लगी। खुद को वैज्ञानिक समझने वाले हमने ये नहीं जानते, को जानने की कोशिश भी न करे कि आखिर हवन कर्पूर रीति रिवाज हमारी जीवन शैली का हिस्सा क्यों थे।
2: राजेंद्र जी, ये लोग कहते थे कि कपूर से धुआं होता है वो घर काला होता है।
1: हाँ,
2: तो वो उसमें तो बात सही है।
1: हाँ,
2: कि थोड़ा काला होता था। वास्तव में ये उसमें कोई ऐसा चीज नहीं जो हमारे सेहत के लिए खराब है।
1: ऐसा कुछ नहीं। तो हमारे पूर्वज विज्ञान से भली भांति परिचित थे। सनातन स्वयं एक विज्ञान है, लेकिन उस वक्त कोई वैज्ञानिक शब्दावली तो थी नहीं, अतः उन्होंने विज्ञान को धर्म से जोड़कर दिनचर्या का अहम हिस्सा बना दिया। आज वैज्ञानिक प्रयोग कर मान रहे हैं, आज के वैज्ञानिकों ने प्रयोग कर माना है।
2: वैज्ञानिक माने तो
1: रिसर्चर।
2: हाँ, खलेरदन है।
1: खलेरदन कि जहाँ नित्य हवन होता है, वहाँ कोविड का खतरा सबसे कम है।
2: अरे राजेंद्र जी, थोड़ा से इस पे थोड़ा से ठहर जाओ, क्योंकि यहाँ से गीत चला देते हैं।
1: हाँ जरूर, एक पहले गीत,
2: क्योंकि अभी इसके बारे में कुछ मन करता है कहने को।
1: हाँ जरूर।

0: या मार सके ना कोई, जिसके ऊपर भगवान की कृपा है और अटल विश्वास है तो उसका कोई मार ना सके, कोई एक रोवण बिगाड़ ना सके।
1: ये तो बड़े बात कह दिया शांता जी,
0: बड़े बात नहीं है ये, सही बात
1: है, बहुत बढ़िया, सही बात, सही बात, बहुत मोई, बहुत।
0: और कहते हैं कि मानना ना, जानना नहीं, मानना चाहिए भगवान को।
1: सही बात,
0: जाना तो चाहिए पर मानना चाहिए।
1: और ये जरूर कहना चाहूंगा राजेंद्र जी कि जल, जो जल होता है ना, शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से और बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से। तो हम अभी कपूर के बारे में कुछ हमारे विशेषज्ञ लोग जो हमारी खोजी सेना हैं हम सब के लिए रखे हुए हैं, तो क्यों ना हम अपने सुनने वालों को उसके बारे में सुना देते हैं कि कपूर का महत्व जो आज हमारे पास है उसके बारे में और जानकारी रखते हैं।
2: हाँ, आज वैज्ञानिक प्रयोग कर मान गए हैं कि जहाँ नित्य हवन होता है वहाँ कोविड का खतरा सबसे कम है।
1: कोविड का खतरा,
2: यानी कि कोरोना,
1: कोरोना का।
2: मात्र 3-4 दशक पूर्व तक प्रत्येक घरों में हवन होते थे, किंतु आधुनिकता का सर्वश्रेष्ठ और सनातन का पिछड़ा मानने की मानसिकता के चलते हमने सब कुछ भुला दिया। आधुनिकता का मतलब होता है कि आजकल के जमाना नया, नवा चले रहा सब यंगरा।
1: हाँ जी,
2: तो वो पिछले जैसे बूढ़ो लेगा वो न माने ले कोई
1: नहीं।
2: तो
1: जैसे कि आज पहला, जैसे आज पहला वृतांत में हम सब रखे गए थे। पहला वृतांत में रखे गए थे कि बूढ़ा बूढ़ा नाना वाला ना, कोई मानता ही नहीं आ जाओ नाना को, पर काम किसने निकाला?
2: नाना ने।
1: हाँ, क्योंकि ऐसा बात सुन के सभी पिछड़ जाएंगे, क्योंकि नदी में कैसे कहाँ दूध बह सकता है ना। और बस कहने वाला बात था, और उन्हें समझने के लिए बस हमारे जो पुरखों है उन्हें, उनके हम सब, उनसे हम सबको बहुत सीखना है।
0: और ये भी जो राजेंद्र जी ने पढ़ के और बताए ना कि पुराना के सभ्यता जो है तो आप आज के दौर में वो सब नहीं मानते हैं,
1: जैसे समय नहीं लोग देश में है।
0: और जैसे ये कोरोना आ गए तो वही सभ्यता हमको आज प्रयोग करना पड़ेगा कि हाथ जोड़ के नमस्ते करो, हाथ जोड़ के प्रणाम करो, हाथ ना मिलाने के अब वो मिनहाई है ना
1: जी,
0: तो वो नमस्कार हाथ जोड़ के सभी को।
1: सही बात, सही बात।
0: तो वो भी सभ्यता पुराना के है और मानते नहीं थे लोग, और आज के दौर में वो भी। तो जैसे भी राजेंद्र जी कह रहे कि कपूर के उसका वायु
1: प्रयोग करने से कौन कौन सा और जा करके उसमें हमारे लिए कितना प्रयोग करने से हमारे लिए कितना लाभदायक है। सही बात आप कह रहे हैं।
2: तो इसका दोष भी हमने अपने बड़े बुजुर्गों पर मर दिया, यानी उन पे कह गए भी दोष है, किंतु आपके बड़े बुजुर्ग तो पढ़े लिखे नहीं थे।
1: तो राजेंद्र जी, इस ये टुकड़ा बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसे कम से कम आपको हमारे सरनामी,
2: इसके जो दोष रहिला वो सब बूढ़ों लोगों पे मर दिया जाए उन्होंने सोचा, लेकिन आपके लिए आपके बड़े बुजुर्ग तो बड़े बूढ़े लोग पढ़े लिखे नहीं थे उस समय, परंतु आप तो थे, वो न पढ़े लिखे थे तो आप तो थे, आपने क्यों नहीं रीति रिवाजों के पीछे छुपे विज्ञान की जानने की कोशिश की, जो हमारे रीति रिवाज चले आ रहे थे,
1: पर रीति रिवाज को
2: उसका विज्ञान क्या था,
1: विज्ञान के कैसे पाछे चलेंगे, कैसे खोज पाएंगे, कैसे जांच कर पाएंगे, तो उसके लिए तो कम से कम कुछ पढ़ना लिखना जरूरी है।
2: पुराने लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो भी वो विज्ञान था
1: उसके पास, था
2: तो वो विज्ञान हमें चाहे कंटिन्यू करे और उसको खोजे कि ऐसा क्यों है। तो जो आज के पढ़े लिखे लोग हैं वो उसी को खोज के अभी भी अपना विज्ञान बना रहे हैं। तो कहने वाले हम ये भूल गए कि विज्ञान बिना प्रमाण के किसी को विश्वास अंधविश्वास नहीं मानता, फिर आपने कैसे बिना प्रमाण के मात्र दुष्प्रचार में बहकर सर्वश्रेष्ठ सनातन परंपराओं को अंधविश्वास ठहरा दिया। कहे कि आपने कैसे बगैर प्रमाण के हमारा जो सनातन का विश्वास है उसको, उनकी परंपराओं को अंधविश्वास, मतलब आंखी बंद करके विश्वास करे अंधविश्वास।
1: हाँ जी,
2: तो कैसे विश्वास करे, तो ये चाहे हमें ढूंढे कि इसके पीछे क्या विज्ञान रहा। आज दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी के वक्त, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो रहा दुनिया का उसके वक्त, मानवता पर संकट के वक्त, आधुनिक दुनिया पुनः सनातन की शरण में है। सनातन हो गए सब, दोबारा से
1: सब हो गए,
2: सब हो गए।
1: जैसे शांता कह रहे थे कि हाथ जोड़ लो,
2: हाथ जोड़। तो हवन, कर्पूर, अजवाइन, हल्दी, हस्त प्रक्षालन, नमस्ते लड़ाई जीतने के मुख्य अस्त्र बन गए। हवन करे, कर्पूर से आरती करे, अजवाइन खाए पानी में उबाल के, हल्दी खाए, हाथ हस्त प्रक्षालन हाथ धोए और नमस्ते करे, ये चीज करे, नमस्ते करे, तो ये जो लड़ाई रहे कोरोना से जीतने की, इसी से जीत जा सके,
1: इसी से जीत जा सके। तो ये बात हो जाता है कि हमें कैसे उसे बच सकते हैं।
2: तो मजबूत, हाँ मजबूत
1: एक तरीका है।
2: तो मजबूत जड़ों वाला वृक्ष ही आंधी तूफान झंझावतों में टिक पाता है। जो कल तूफान आएगा, आंधी तूफान आएगी,
1: हाँ।
2: जिसके वृक्ष मजबूत रहे, जो वृक्ष मजबूत रहे, जिनका जड़ लंबा रहे, उनको कोई फर्क ना पड़े,
1: कोई फर्क।
2: लेकिन जो हल्का रहे उनको फर्क पड़े कल, देखना। अतः अपनी जड़ों सनातन से जुड़े रहिए, सनातन जो धर्म है उससे जुड़े रहिए। हम सबके लिए यही लड़ाई अवश्य जीतेंगे और इसी के बाद सब लोग जीत जा सके। तो क्यों ना हम आज अपना सूरीनाम, हमारा प्यारा देश।
1: राजेंद्र जी बस यही प्रतीक्षा था कि सूरीनाम, हमारा प्यारा देश, कम से कम सुना दो।
2: सुना देते हैं जरूर।

0: सूर्य नाम हमारा प्यारा देश, इससे मिलने को कोई इनकार नहीं। तो संजय जी, आपका सूर्य नाम इतना प्यारा देश है, आप कुछ बोले?
1: नहीं राजेंद्र जी, बोलू क्या, इच्छा कर रहा हूँ सूर्य नाम जाने को।
0: ओ, तो चला
1: और सूर्य नाम जाने को, तो वहां पर आपको पता लिफोर्नो का है ना?
2: राजेंद्र
1: जी,
0: जी
1: लिफोर्नो आपको नहीं पता का?
0: लिफोर्नो हम ना जाने लमान।
1: ये कार्यक्रम को सुनने वाले एक हमारे हर सप्ताह वो कार्यक्रम को सुनते हैं भाई सुग्रीम जी, जो क्या एक अर्थ और सरमक्का के रहने वाले।
2: अर्थ क्या एक जी, क्या एक अर्थ। हाँ, वहाँ पे गाड़ी वो नदी में गिर गया था ना उस समय पे, तो इसलिए वहाँ पे प्लस वन क्या एक अर्थ, अर्थ क्या एक धरती
1: ऐसे रख दिया।
2: हाँ,
1: तो यानी कि राजेंद्र जी अर्थक्वेक के मतलब आपको भी नहीं पता क्या? ना,
0: ना हमने जान ला।
1: उसका मतलब ध्यान से देखना है। और ये कार्यक्रम जो हर सप्ताह वो श्रीमान जी ये कार्यक्रम को सुनते रहते हैं, और उसके लिए भी हम सब किस दिन एक गीत भी रखने वाले हैं कार्यक्रम में। पर जी समय पे ध्यान देना है, और समय के माध्यम से हम सब अब वो सीमा पर पहुंच गए हैं जहां पर हमें
0: पहुंचना चाहिए,
1: कहीं वो गीत को और रखना है।
0: जरूर,
1: तो चला देते हैं और फिर उसके बाद में देखा जाए कि कैसे कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाएगा।
0: जरूर।

0: पुकारे।
1: हाँ जी सुनने वालों, जैसे आपको पता है तो यहाँ पर समय भी हो गए हैं, तो समय से पहले तो मैं भी ये कहूँगी कि पापा के होने से बचपन खुशियों के साथ में होते हैं, कि पापा के होने से बचपन खुशियों साथ में होते हैं, होते हैं हर राह आसान, होते हैं हर राह आसान जब मेरे हाथ पापा के हाथ में होते हुए। सुनने वालों, आपको हम यहाँ से दिल से धन्यवाद कहती हूँ प्रोग्राम को सुनने के लिए। आपको शांता की प्यार भरे राम राम प्रणाम।

दूर है फिर भी दिल के करीब निशाना है तेरा, लागी छूटे ना अब तो सनम। जैसे ही ये गाना के बोल आते हैं, सब सुनने वाले यही समझते होंगे और समझ रहे होंगे कि हमारा जो समय है 2 घंटे का, वो यहाँ पे विराम लेने वाला होता है। और फाउन हिंदुस्तान रेडियो के सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्रेम भरा यानी राजेंद्र सिंह का नमस्कार। फिर मिलेंगे अगली बार इसी समय कार्यक्रम को लेके ज्योति का प्रकाश। तब तक के लिए सबको

जिंदगी छोटे नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करती है। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है दोस्तों। मैं यहाँ से अपने विशेषज्ञों जैसे कि संजय शर्मा पहाड़गंज न्यू दिल्ली से, प्रवेश कालिया जो प्रधान बजरंगी सेना का है, और श्रीमती रत्ना जी जो दनहाख से है, हम सबके लिए कई मास खोज खोज कर रखते हैं, बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे साथी शांता खिमई, राजेंद्र सिंह और मैं हूँ आपका सेवक संजय। बस यही कहना चाहूँगा कि लोग अक्सर कहते हैं कि जिंदगी रहेगा तो मिलेंगे, मगर एक सच्चे दोस्त ने कहा कि मिलते रहेंगे तो जिंदगी रहेगा। सभी को नमस्कार।

और आप लोग जानते हैं हमारे यारो पुराने गीते की मजा कुछ और है। हम चलते हैं परमा श्री मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में।